0: ने भी विचार तो किया कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान गरीब हो गए हों। वैसे भगवान तो कभी गरीब नहीं हो सकते ना। संपूर्णता में जिनको सब कुछ मिल गया हो उन्हें ही तो भगवान कहा जाता है। भग का मतलब होता है पूरा ऐश्वर्य, पूरी अमीरी, धर्म संपूर्ण, वैराग्य संपूर्ण, ज्ञान संपूर्ण, सभी कुछ तो होता है भग का मतलब। भगवान को गरीबी कैसे आएगी, वो तो समग्र धर्मशाली धनशाली हैं। क्यों, ऐसा तो नहीं कि कंजूस हो गए भगवान। फिर सुदामा जी ने सोचा कि ऐसा क्यों सोचें, भगवान तो परम उदार भी हैं, कल्याणकारी गुणों के समुद्र हैं, प्रेम लगाव और शक्ति के समुद्र हैं। भगवान कभी पाप तो करते नहीं। जितने दुर्भाव हमारे मन में आते हैं दोस्तों, उनका मूल कारण पाप ही है। चाहे गुस्सा हो, लालच हो, द्वेष हो, सबके मूल में बैठा है क्या, पाप। सुदामा जी ने समाधान निकाला। अद्भुत भगवान की कृपा है। भगवान ने हमारे परित्याग को, हमारे को जो दिया, रोम रोम से बाहर से भीतर तक हमारा समुदाय की सेवा के लिए जीवन दिया, उससे कहीं हम अलग ना हो जाएं, यही विचार किया होगा। कहीं हम भोगी ना हो जाएं, कहीं हम संतुष्ट ना हो जाएं, कहीं हमारा भजन छूट ना जाए, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। कहीं हमारी विशिष्टता लुप्त ना हो जाए, गायब ना हो जाए, कहीं हम समाज के लिए जीना छोड़कर अपने लिए जीना शुरू कर दें, इसलिए भगवान ने हमें कोई भौतिक संसाधन नहीं दिया। अब ये विचारों की महान अवस्था है मित्रों, इससे बड़ा व्यवहार भला क्या होगा। सुदामा जी ने कितना बड़ा समाधान निकाल लिया। अब तो लोग कर्जा लेकर व्यक्तिगत संपत्ति बना लेते हैं, फिर दिवालिया घोषित करके गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में हजारों लोग पूर्ण संपत्तिवान होकर भी अपना दिवाला निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों को कब और कैसे सुकून मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी।
1: जरूरी नहीं कि हर समय लबों पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति से कम नहीं जब इंसान इंसान के काम आए।

रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम पर मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं दिव्य दर्शन के ये प्यारे प्यारे भजन। शायद मेरे पास सब कुछ नहीं, पर ईश्वर ने मुझे वो सब दिया है जिसकी मुझे जरूरत है। मैं इसके लिए ईश्वर का आभारी हूं। सपने वो नहीं होते दोस्तों जो नींद में देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। ये प्रसिद्ध कथन भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का है, जो आज दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता ही रहता है। ये केवल एक कथन नहीं है बल्कि एक विचार है जिसने लोगों को जिंदगी में नए सपने बुनने के लिए नई ऊंची उड़ान दी। इस कथन का सीधा सा मतलब यही है कि जीवन को लेकर आपके ऐसे सपने होने चाहिए जिन्हें पाने के लिए आप पूरी जी जान से लग जाएं और तब तक ना रुकें जब तक आप उन्हें पा न लें। दोस्तों, सपने देखिए और उन्हें पूरा करने में जुटिए। बस यही तो बात मजेदार है।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।

0: एक समय था जब बेईमानी शब्द गाली जैसा लगता था। वक्त बदल गया और लोग किसी भी तरह से सफलता पाने की चाह रखने लगे, और बेईमानी भी बस एक योग्यता बनकर रह गई, यानी कि एक एलिजिबिलिटी, एक कला बन गई बेईमानी। बेईमान लोगों को मुखड़ा बना दिया जाता है और वो कैसा भी काम निकालकर ले आते हैं। ऐसे में दूसरे लोग मानने लगते हैं कि बेईमानी भी दरअसल एक कला है, एक योग्यता है। आप बेईमानी के साथ क्या करेंगे, मैं आपसे पूछता हूं। एक बेईमान को हटाओ तो दो नए आ जाएंगे, आप कहेंगे। इसलिए विचार ये करिए कि उसकी बेईमानी आपको प्रभावित ना कर जाए, आपको इन्फ्लुएंस ना कर जाए, आपको अफेक्ट न डाल दे। और थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहिए कि हम उसकी बेईमानी को सुधारें, बढ़ाएं नहीं। एक गलत व्यवस्था में से अच्छे व्यक्ति को तो निकलना ही पड़ता है। ये काम हनुमान जी ने विभीषण के साथ भी किया था। विभीषण लुटेरों और बेईमानों की नगरी लंका में रहते थे, रावण के भाई थे, लेकिन हनुमान जी ने उस बेईमानी में से एक ईमानदार को बाहर निकाला। आज भले ही लोग अज्ञानता के कारण विभीषण को घर का भेदी कहें, पर विभीषण इस बात का भी तो प्रतीक है कि बुराई के बीच में से अच्छाई की संभावना हमेशा बनी रहती है।
1: प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं।

मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं दिव्य दर्शन के ये भजन। भगवान की प्राप्ति पूजा हवन से नहीं की जाती, बल्कि विनम्रता, दया भाव और लोगों के प्रति

0: कन्फ्यूशियस के जीवन के अंतिम दिनों में अनेक शिष्य उनके दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने अपने सबसे प्यारे शिष्य को पास बुलाया और कहा, मुंह खोलकर दिखाते हुए कहने लगे, गौर से देखो तो जरा, मुंह में जीभ है या नहीं? शिष्य ने उत्तर दिया, जी गुरुजी, मुंह में जीभ तो है। उन्होंने दूसरा सवाल किया, दांत हैं कि नहीं? शिष्य ने पोपला मुंह देखकर कहा, गुरुजी, दांत तो एक भी नहीं है। कन्फ्यूशियस ने कहा, जीभ मेरे पैदा होने के समय भी थी और आज भी है। दांत मेरे बाद में आए थे और आज एक भी दांत मेरे मुंह में नहीं है। इसका कारण जानते हो? कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने खुद ही कहा, जीभ कोमल और मीठी वाणी बोलने वाली है, इसलिए वो जीवन के अंतिम क्षणों तक भोजन पानी से शरीर को पुष्ट करती रहती है और शरीर का अभिन्न अंग बनी रहती है। दांत कठोर पदार्थ के होते हैं, इसलिए वो 36 होते हुए भी शरीर के अभिन्न अंग नहीं बन पाते। इससे यही शिक्षा लो कि तुम सभी जीभ की तरह कोमल और सरस बनकर अंतिम समय तक अपने देश और समाज की सेवा करते रहना। इतना कहकर कन्फ्यूशियस ने अपनी आंखें मूंद ली। उनके शिष्यों ने गुरु के बताए हुए उपदेशों का पालन करने का संकल्प लिया।
1: कोई इंसान जब बुरी भावना से कोई काम करता है तो दुख उसका वैसे ही पीछा करते हैं जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के कदमों का पीछा करते हैं।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी।

भगवान से ये प्रार्थना करें कि हमारे ऊपर कोई खतरा ना आए, बल्कि उनका सामना करने की हिम्मत हमारे अंदर आए। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ। जीवन में कुछ पाना है तो झुकना सीखिए। कुएं में उतरने वाली बाल्टी झुकती है तभी पानी लेकर आती है।

चलिए दोस्तों, इन्हीं भजनों के साथ हम सभी का दिन शुभ हो। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा, आज के सुखदायक दिन के बाद कल सुबह मैं फिर प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के भजनों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप हैं आप ही के झाबुआ की आवाज रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।

0: Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। आज की बात थोड़ी पुरानी है, इतनी पुरानी कि जब ये वाकया हुआ था तब मोबाइल फोन्स नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टाग्राम DM नहीं था, और फिर भी एक लड़का रोज एक घर के सामने खड़ा रहता था, और एक बालकनी से मिलने वाला सिर्फ एक छोटा सा इशारा उसकी पूरी शाम बदल देता था। आज हम 1977 के एक मैगजीन पेज पर छपी एक याद पढ़ रहे हैं, रूपन देसाई की लिखी हुई एक छोटी सी कहानी जिसका टाइटल था अ ब्यूटिफुली पेनफुल एक्सपीरियंस। लेकिन मुझे लगता है इस कहानी को एक और नाम दिया जा सकता है, जब एक बालकनी पूरी बात कह देती है। कहानी में एक नाम बार बार आता है, मुकेश, और एक गुजराती लड़की जिसके साथ मुकेश जी को मोहब्बत थी। लेकिन यहां ट्विस्ट कोई फिल्मी विलन का नहीं था, ट्विस्ट था परिवार का फैसला। लड़की के पेरेंट्स को जब पता चला कि उनकी बेटी एक नॉन गुजराती लड़के से प्यार करती है और वो लड़का फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने दोनों की मुलाकात बंद करा दी। आज हम इस बात को सुनकर शायद कहेंगे, तो क्या हुआ, फोन कर लेते, मैसेज भेज देते, वीडियो कॉल कर लेते। लेकिन 1977 में ब्लॉक करने के लिए भी फोन नहीं और कांटेक्ट करने के लिए भी व्हाट्सएप नहीं था। तो मुकेश ने क्या किया, वो उस लड़की के घर के सामने फुटपाथ पर बैठने लगे। दिन फिर दिन और आसपास के लोगों के लिए वो फुटपाथ एक नया नेबरहुड टॉपिक बन गया। एक दिन रूपन देसाई अपने एक दोस्त के घर गई हुई थी, तब उनकी दोस्त ने उन्हें बालकनी पर बुलाया, और नीचे बारिश हो रही थी। फुटपाथ पर मुकेश खड़ा था, ना उसके पास छाता था, ना कोई ड्रामा था, बस रेलिंग पकड़कर खड़ा था इंतजार में भीगा हुआ। और बालकनी से नीचे देखती हुई वो लड़की, हर बार जब वो बाहर आती मुकेश अपना सर थोड़ा सा ऊपर करता, और वो बहुत हल्का सा सर हिलाकर उसे नीचे आने का इशारा करती। बस इतना ही, ना फोन, ना मैसेज, ना बार बार का ये आई लव यू बाबू, आई लव यू सोना, ना कोई लंबी स्पीचेस, मैं मर जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा। एक नजर, एक छोटा सा इशारा, और सामने वाला समझ गया। और यहीं पर मुझे लगता है पुरानी दुनिया और आज की दुनिया में एक अजीब सा फर्क है। आज हमारे पास कहने के लिए हजार तरीके हैं, हजार बातें हैं, लेकिन कभी कभी सुनने वाला ही नहीं होता। उस जमाने में शायद लव्स बहुत कम थे, शर्म बहुत थी, लेकिन इंतजार बहुत था। और दोस्तों, इस कहानी का एक बहुत खूबसूरत एंगल है। इस पूरे सीन को देख रही थी रूपन देसाई और उनकी एक 12 साल की सहेली। दो छोटी लड़कियां बालकनी में खड़ी हुई नीचे बारिश में खड़े एक जवान को देख रही हैं और उनके बचपन के दिमाग में एक ही थॉट है, यार ये मोहब्बत होती क्या है। उन दोनों को वो इंतजार इतना ड्रामेटिक और रोमांटिक लगा कि उन्होंने मन ही मन में सोचा, काश हम भी जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं और हमें भी ऐसी कोई कहानी मिल जाए। कितनी गुदगुदाने वाली बात है ना, बचपन में हम बड़े होने की जल्दी में होते हैं और बड़े होकर कभी कभी सोचते हैं, यार बचपन ही ठीक था। लाइफ का ये भी बहुत अजीब सा मेन्यू है, जो टेबल पर नहीं होता हमें वही चाहिए। लेकिन इस कहानी में एक बहुत खास बात है, मोहब्बत का शोर नहीं है, उसकी खामोशी है। मुकेश ने कोई बड़े डायलॉग्स कभी नहीं बोले, लड़की ने कोई फिल्मी प्रॉमिसेस नहीं किए, बस एक बालकनी थी, एक फुटपाथ था, बारिश थी और दो लोगों के बीच का वो छोटा सा संकेत। कभी कभी कम्युनिकेशन का मतलब बहुत सारे शब्द नहीं होते, एक आंख का कोना, हाथ का इशारा, सर का एक हल्का सा झुकना और कभी मैं यहीं हूं, बस बात पूरी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ के जाती हूं, अगर आपको किसी को अपनी बात कहनी हो और आपके पास सिर्फ एक जेस्चर हो, ना फोन, ना मैसेज, ना वॉइस नोट, तो आप क्या करेंगे? हाथ हिलाएंगे, मुस्कुराएंगे या बस एक नजर ही काफी है? और दूसरा सवाल, क्या आज के जमाने में हम बहुत ज्यादा बोलने लगे हैं? मैसेजेस से, इमोजीज से, आलसी लोग, वॉइस नोट से, कॉल से, वीडियो कॉल से, स्टोरीज से, स्टेटस से, फिर भी कभी कभी सामने वाले को समझ ही नहीं आता, आखिर आप कहना क्या चाहते हो? शायद प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की नहीं है, हमारी आदत की है। हम हर बात एक्सप्लेन करना चाहते हैं, हर फीलिंग को कैप्शन चाहिए, हर पल को फोटोग्राफ चाहिए और हर रिश्ते को एक स्टेटस अपडेट चाहिए। लेकिन 1977 की उस बालकनी में एक छोटा सा सर हिलाना ही पूरा मैसेज था। तो दोस्तों, आज की बातें इधर की उधर की किसी बड़े डायलॉग पर खत्म नहीं होती, वो वहीं रुकती है, एक बारिश भरी शाम में, एक फुटपाथ पे, एक बालकनी के नीचे, जहां एक लड़का चुपचाप खड़ा था और एक लड़की ने बस हल्का सा सर हिलाया और दो 12 साल की लड़कियों ने बालकनी से वो मंजर देखा और शायद पहली बार जाना मोहब्बत की डिक्शनरी में हर वर्ड लिखा हुआ नहीं होता, कुछ मीनिंग्स सिर्फ इशारे समझने वाले जानते हैं, वो उनकी आपस की बात है। मैं हूं आरजे तनुषा और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन एसएम रेडियो एंड रेडियो तांत्या भील 90.8 FM। आपके पास भी अगर कोई ऐसी पुरानी याद है ना, जिसमें बात कम हुई हो लेकिन इशारा बहुत कुछ कह गया हो, तो संभाल के रखिए, क्योंकि वो कहानियां लिखी नहीं जाती, बस एक याद में रह जाती हैं। मिलूंगी फिर एक और नई कहानी के साथ, तब तक बातें करते रहिए, इशारे समझते रहिए और बातें इधर की उधर की सुनते रहिए। नमस्कार।
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: टीचर ने पूछा, तुम पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते? छात्र ने कहा, सर क्योंकि पढ़ाई सिर्फ दो वजहों से की जाती है। टीचर ने कहा, अच्छा जनाब, तो कौन सी हैं ये दो वजहें, जरा बताना। तो छात्र ने कहा, या तो डर से या शौक से। मैं बिना वजह कोई शौक रखता नहीं और डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं।
2: What the

अब बातें इधर की उधर की में वक्त आ गया है एक खास कहानी का। हर कहानी अपने आप में बहुत खास होती है, लेकिन लेकिन दोस्तों कुछ कहानियां इसलिए भी और स्पेशल बन जाती हैं क्योंकि उन्हें कहने वाला दिल से उनसे जुड़ा होता है। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान जो लेकर आए हैं अपनी जिंदगी का एक हिस्सा, एक किस्सा, एक एहसास, एक याद, एक कहानी, बिल्कुल अपनी आवाज में। तो चलिए खामोशी से सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी, सिर्फ एसएन रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 एफएम पे।

This doha is from Shlok Nava Mahla from the Guru Granth Sahib. Many, many years ago, in our Vedanta class, we were reflecting upon this Japji Sahib alongside with Adi Shankara's Bhaja Govindam. Because more or less they speak the same language, of the same facts, of the same things you should do in life, not do in life, vagera vagera. तो उसके बाद मुझे सबसे पहला अवसर मिला अमृतसर जाने का. For a long time I have been waiting for this opportunity, और जैसे ही मैंने ये गाया सेशंस में, उसके ख़त्म होते ही बुलावा आ गया मेरे लिए. तो दिवाली की छुट्टियां थी और हम पूरा ही परिवार दिल्ली गए, वहां कुछ दिन बिताए और फिर वहां से अमृतसर गए. अब दिवाली की शाम हम लोग हरमंदर साहब में थे. And at every point, you know, I was getting so mesmerized by the whole atmosphere. इतनी सारी आतिशबाजी हो रही थी और लोगों की भीड़ तो ना पूछो. अगल बगल के गांव से भी लोग आ रहे थे दर्शन के लिए, मत्था टेकने के लिए. I thought, और कौन इतना fortunate हो सकता है. And as soon as I entered the inner premises, वो जो पॉन्ड है उधर, वो देखा, उसके दर्शन. एंड आई सॉ सो मेनी ऑफ देम टेकिंग अ डिप इन दैट. एंड देन एज सून एज वी केम टू द साइड ऑफ द मेन गेट, इट वॉज पैक्ड. दैट होल आइल वॉज पैक्ड विथ पीपल. एंड सो एंड वी हैड टू टेक अ ट्रेन एट 9 PM to come back to Delhi and then to Mumbai. So my husband was getting restless. He said, इस भीड़ में हम कैसे जा पाएंगे, और दर्शन करके निकलने तक का समय नहीं है, अभी already 7:30 बज गए हैं. We have to go back to the hotel, pack our bags and then go to the station. Train नहीं मिलेगी, so we have to go back. And I just looked at the pinnacle, you know, that Ekomkar sign jo wahan pe hota hai, it was fully lit up. And then I said, you called me here and now you are saying I cannot even see you. How fair is this? Ye to sahi nahi hai. Phir maine idhar udhar dekha bheed mein. यूं ही लाचार होके देख रही थी कि मिल जाए दर्शन तो अच्छा है. ऐसे में मेरे बगल में एक औरत खड़ी थी, उसने कहा कि क्या बात है बहन जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो. मैंने कहा नहीं, हमें ट्रेन लेनी है और यहाँ इतनी भीड़ है, मैं कैसे दर्शन कर पाऊँगी या नहीं, मुझे बड़ी चिंता हो रही है. तो उन्होंने कहा आगे वालों ने दसो, वो रास्ता दे देंगे आपको, आप बताओ कि आपको गाड़ी लेनी है, कोई हर्ज नहीं. तो मैंने एक दो को बोल के देखा तो वो टस से मस भी नहीं हुए. एंड सम ऑफ देम गेव मी अ डर्टी लुक कि भाई कौन है तू, कहाँ से आई है, क्यों जाएगी आगे. और यही सब कुछ चल रहा था कि अचानक, यू नो, वन टॉल मैन, 6 footer मस्ट बी, विथ अ ग्रे बियर्ड और वो माथे पे साफा बंधा हुआ, जस्ट लाइक बाबा जी लुक्स, एंड विथ अ पाइल ऑफ वुडन ट्विग्स ऑन हिज हेड, ही केम इन फ्रॉम नोवेयर, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर. ही सेड, क्या बात है बहन जी, आप मेरे पीछे आओ. एंड आई डिडंट बॉदर अबाउट हस्बैंड, चिल्ड्रन, एनीथिंग. आई जस्ट वेंट बिहाइंड दैट गाय एंड आई वॉज स्ट्रेट इन साइड द ऑल्टर, bowing down to the samadhi there. And andar kirtan chal raha tha aur
I was like in seventh heaven. फिर 5 मिनट मैं वहाँ खड़ी रही, सारा वो जो वाइब था वो एब्जॉर्ब किया और बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया बाबा जी को कि मुझे दर्शन दे दिए. एंड जैसे ही मैं बाहर निकली तो ऐसी डांट पड़ी कि टाइम का अंदाज़ा नहीं है, 8 बज गए हैं, अब कब होटल जाएंगे, लगेज लेंगे, चेकआउट करेंगे, फिर स्टेशन पहुंचेंगे, गाड़ी तो आज मिलने से रही. आई सेड बाबा जी इतना संभाल लिया आपने, आगे भी संभाल लो. एंड देन मेरी बच्ची ने, बड़ी वाली ने कहा कि अब आप जवाब ही मत दो, चुपचाप चलो हमारे साथ. तो मैं चुप्पी साध के उनके साथ चली. फिर हम लोग होटल गए, सब जो भी होना था हो गया. हम ट्रेन में अंदर, आखिरी मेरे हस्बैंड ने सीढ़ी पे पैर रखा अंदर और ट्रेन चल पड़ी. तो ऐसा होता है, यू नो, इफ यू हैव फेथ इन हिम, ही हिमसेल्फ विल कम एंड हेल्प यू आउट. दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू कन्वे. ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं मेरे पास, दिस वॉज जस्ट वन ऑफ देम दैट केम टू माई माइंड. विश यू अ गुड डे. थैंक यू वेरी मच.

0: Vai crujita khalsa, vai crujiti fateh.
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
2: पति बोला, जज साहब मुझे अपनी बीवी से तलाक चाहिए। जज ने पूछा, पर क्यों? पति बोला, जज साहब जब से मेरी शादी हुई है, बीवी आई है, तब से वो कुछ भी बात नहीं कर रही है। जज बोला, एक बार फिर सोच लो, ऐसी बीवी बड़ी किस्मत वालों को मिलती है।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। आज की बात शुरू करते हैं एक और सवाल से। क्या हर वो आवाज जिसका डिक्शनरी में कोई मतलब ना मिले सच में बेमतलब होती है? जरा याद कीजिए, धीम ता धीम ताना देरे ना दराना। सुनने में लगता है जैसे कोई बहुत ही खूबसूरत म्यूजिकल पासवर्ड बोल रहा हो, और शायद आपने भी यही आवाज ऋषभ रिखीराम शर्मा के वायरल ट्रैक चाणक्य में सुनी हो। शुरू में सुनने वाले को लग सकता है कि वाह क्या रिदम है, लेकिन अगर मैं कहूं कि इन सिलेबल्स को एक नजरिए से देखें तो इनके पीछे एक पूरी आध्यात्मिक कहानी बताई जाती है। तो आज चलिए खोलते हैं उन तरानों का राज। तराना हिंदुस्तानी संगीत की एक ऐसी रचना है जहां एक आम कविता के शब्दों की जगह रिदमिक सिलेबल्स का इस्तेमाल होता है। जैसे तरदीम ताना उड़ानी दारे नादिरदानी। सुनने में ये शब्द नहीं, जैसे सुरों के टुकड़े लगते हैं, और यहीं से सवाल उठता है कि आखिर इनका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ ताल और लय के लिए हैं, या इनके पीछे भी कोई कहानी है? और यहां पहुंचते हैं हम दो अमीरों की कहानी पर। पहला नाम है अमीर खुसरो साहब का, 13वीं सदी के मशहूर कवि, संगीतकार और कलाकार। तराना की उत्पत्ति को लेकर एक मशहूर रिवायत अमीर खुसरो से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि उन्होंने हिंदू पंडितों को संस्कृत में कठिन रचनाएं गाते हुए कभी सुना। उन्हें भाषा समझ नहीं आ रही थी, लेकिन संगीत की लय और सुर उन्हें बहुत पसंद आए। रिवायत के मुताबिक इसी से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी रिदमिक सिलेबल्स का प्रयोग किया। मतलब भाषा समझ न आए, लेकिन सुर सीधा कान तक पहुंच जाए। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये। कभी कभी हम किसी भाषा का एक भी शब्द नहीं समझते, लेकिन गाना खत्म होने के बाद भी उसकी धुन हमारे दिमाग में घूमती रहती है। यानी सुर को डिक्शनरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। और यहां कहानी में एक और इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। दूसरे अमीर थे उस्ताद अमीर खान। उन्होंने सिलेबल्स को एक दूसरे ही नजरिए से देखा। उनका मानना था कि ये आवाजें सिर्फ बेमतलब साउंड्स नहीं हैं। उनके अनुसार इनमें पर्शियन अरेबिक अल्फाज और सूफी अर्थ छुपे हुए हैं। और फिर शुरू होता है तराना का डिकोडिंग गेम। जैसे डर का अर्थ बताया गया अंदर, दरा का अंदर आओ, तन का शरीर, तनंदरा को एक वाक्य में पढ़ा गया और उसका मतलब बताया गया कि मेरे तन के अंदर आओ। और यहां तराना सिर्फ ताल नहीं रहता, ये एक प्रार्थना बन जाता है, एक पुकार, एक स्पिरिचुअल जर्नी। दिव्य शक्ति मेरे अंदर समा जाओ। अब जरा वापस चलते हैं, ऋषभ रिखीराम शर्मा के चाणक्य पर आते हैं, जहां आप सुनते हैं धीम ता धीम ता धीम। इस वाक्य के अनुसार ये डिवाइन को इन्वोक करने की पुकार है। और फिर ताना धीम धीम तानूम, इसका अर्थ लिया जाता है तन के अंदर आओ और मुझे अपना बना लो। अब वही आवाज दोबारा सुनिएगा। पहले क्या लग रहा था कि बस एक रिदम है, और अब एक पूरा अर्थ। यही तो तराना की खूबसूरती है। पहले कान सुनता है, फिर दिमाग सवाल करता है, और फिर अर्थ का एक नया दरवाजा खुलता है।
एआर रहमान की फिल्म थक्षक का मशहूर पीस इसी तराने के अंदाज में है। उसमें आप सुन सकते हैं कि धीम तधारे धानी धीम, धीम को डिवाइन गिवर से, तधारे को नॉलेज से और धानी को जानने वाले से जोड़ा जाता है। फिर आता है ताना दे रेना, जिसकी व्याख्या की जाती है मेरे तन और मेरे अंदर आओ, और पूरा भाव कुछ इस तरह बनता है, हे वो जो ज्ञान देने वाला है मेरे अंदर आओ, आओ मेरे अंदर समाओ, मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूँ क्योंकि तुम सब जानते हो। अब सोचिए एक कॉम्पोजिशन जिसे हम सिर्फ धीम ताना समझकर सुन रहे थे आज तक, उसके अंदर किसी ने पूरी प्रार्थना पढ़ दी। और दोस्तों यही आज की बातें इधर की उधर की का सबसे मजेदार सवाल है, क्या म्यूजिक को समझने के लिए उसका हर शब्द समझना जरूरी है? आप किसी ऐसे गाने के बारे में सोचिए जिसका मीनिंग आपको पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी धुन सुनते ही आपके हाथ ताल देने लगते हैं, पैर थिरकने लगते हैं। क्यों? शायद क्योंकि म्यूजिक की एक अपनी ही भाषा है और तराना हमें एक और पॉसिबिलिटी दिखाता है। कभी आवाज पहले आती है और अर्थ सालों बाद आता है, और कभी अर्थ सुनने के बाद आवाज पहले से बिल्कुल अलग लगती है। तो अगली बार जब आप सुने धीम ताना दे रे ना, तो तुरंत ये मत कहिए अरे ये तो बस कुछ साउंड्स हैं, थोड़ा रुकिए, सुनिए, ताल पकड़िए और फिर पूछिए इसके पीछे कोई कहानी भी है क्या। तराना हमें शायद यही सिखाना चाहता है, हर आवाज को शब्द की जरूरत नहीं और हर शब्द का अर्थ सिर्फ डिक्शनरी में नहीं मिलता। हमारे एसएन रेडियो के सभी सिंगर्स के लिए और म्यूजिक लवर्स के लिए आज की ये तराना भरी स्टोरी। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर। आज समझ आया ना तराना क्या होता है? तो और ध्यान से सुनिएगा मुझे अगली बार। आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, सिर्फ एसएन रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 एफएम पर। आज की बात यहीं रखते हैं, यहीं रुकते हैं, लेकिन अगली बार जब कोई कहे ये तो बस बेमतलब के बोल हैं, तो जरा मुस्कुरा कर पूछेगा पक्का? क्योंकि हो सकता है बोल वही हो, बस उनका राज अभी खुलना बाकी है। नमस्कार।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ। रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।

सदियों पुरानी बात है। चीन के थिंगजा इलाके के एक राजकुमार की सम्राट के रूप में ताजपोशी होनी थी, लेकिन कानून के मुताबिक उसे इसके लिए पहले शादी करनी थी। एक अक्लमंद मंत्री की सलाह पर उसने प्रांत की विवाह योग्य युवतियों को बुलाकर उनमें से सबसे उपयुक्त को चुनने का निर्णय लिया। राजकुमार के महल में एक बूढ़ी महिला वर्षों से नौकरी कर रही थी। उसकी बेटी भी राजकुमार से मनी मन बड़ा प्रेम करती थी। घर पहुंचकर जब नौकरानी ने राजकुमार की योजना का समाचार बताया तो वो ये जानकर चौंक गई कि उसकी बेटी भी कन्या चयन प्रतियोगिता में शामिल होने का इरादा रखती थी। उसने बेटी से कहा, मेरी बच्ची, दरबार में सब सुंदर और धनाढ्य परिवार की बेटियां होंगी, तुम वहां क्या करने जा रही हो? तुमको तकलीफ होगी। बेटी ने मां को जवाब दिया, मां, मुझे पता है कि मुझको कभी भी चुना नहीं जाएगा, पर मुझे राजकुमार के करीब रहने के लिए कुछ और पल मिल जाएंगे ना, मैं बस इसी में खुश हूं। रात में जब बूढ़ी नौकरानी की बेटी महल पहुंची तो वहां रेशमी कपड़ों और गहनों में सजी धजी तमाम युवतियां इकट्ठी थीं। दरबारियों से घिरे हुए राजकुमार ने घोषणा की कि मैं आप में से प्रत्येक को एक बीज दूंगा। जो युवती 6 महीने में मेरे लिए सबसे सुंदर फूल लाएगी वही चीन की भावी महारानी होगी। उस लड़की ने भी अपना बीज लिया और घर चली आई। उसने बीज को एक फूलदान में लगाया। वो बागवानी ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन बड़े धैर्य और कोमलता से उसने फूलदान की मिट्टी की देखभाल की। उसने सोचा कि अगर फूलों की सुंदरता उसके प्यार जितनी गहरी होती है तो उसे परिणाम के बारे में चिंता करने की भला क्या जरूरत है। मगर कुछ नहीं हुआ। उस युवती ने कई मालियों से सलाह ली, लेकिन सारे के सारे प्रयास बेकार हो गए। 6 महीने हो गए, गुलदान में कुछ भी नहीं निकला। ये जानते हुए कि उसके पास दिखाने को कुछ भी नहीं है, उस युवती ने यह सोचकर महल जाने का फैसला किया कि प्रेमी के दीदार का ही एक मौका ले लूं। महल पहुंचकर उसने देखा, सबके हाथों में गुलदान में एक से बढ़कर एक फूल थे। आखिरकार वो पल आया जब राजकुमार ने सभी फूलों को देखा और आखिरकार नौकरानी की बेटी की ओर इशारा करते हुए उसे अपनी पत्नी बनाने का ऐलान कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने शिकायतें की कि जो एक लड़की इस परीक्षा में नाकाम रही, आपने उसे ही चुन लिया। तब राजकुमार ने बहुत शांति से जवाब दिया, आप सभी में से एकमात्र यही है जिसने उस फूल को विकसित किया, जिसने उसे महारानी बनने के लिए योग्य बनाया। यह है ईमानदारी का फूल, क्योंकि आपको बांटे गए सारे बीज बांझ थे।

लीजिए दोस्तों, मिलिए डॉक्टर प्रदीप सेठी जी से। आजादी के 7.5 दशक में हिंदुस्तान ने कितनी तरक्की की है, इसे देखना है तो गांव में जाइए और किसी स्मृति समृद्ध बुजुर्ग के पास बैठिए, किसी ऐसे बुजुर्ग के पास बैठिए जिनकी याददाश्त अच्छी हो, मजबूत हो। तब आपको सन 1947 से लेकर 2024 तक का देश साफ साफ दिखाई पड़ेगा। हिंदुस्तान महानगरों और शहरों में नहीं है, अपने 6.5 लाख से ज्यादा गांवों में है, मगर इन गांवों की एक टीस बहुत पुरानी है। महानगर और बड़े शहरों ने उनकी अनगिनत संतानों को अपने मोहपाश में ऐसा फंसाया है कि वे अपनी माटी का कर्ज उतारना भी भूल गए हैं। लेकिन डॉक्टर प्रदीप सेठी ने जिस तरह से अपनी माटी का कर्ज अदा किया, उनका गांव पुष्ट दर पुष्ट इसके लिए उन पर नाज करेगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक गांव है, बेरुनपदी। करीब 44 साल पहले इसी गांव के एक बेहद गरीब परिवार में प्रदीप पैदा हुए। तब ओडिशा देश के अति पिछड़े राज्यों में शामिल था। जाहिर है बेरुनपदी भी सड़क, बिजली, अस्पताल, साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से तो बहुत दूर था। प्रदीप के परिवार की माली हालत इतनी खराब थी कि कई बार तो उन्हें फाका कशी से ही गुजरना पड़ता था। एक जोड़े कपड़े में कई कई हफ्ते निकल जाते थे। मगर ये नियति अकेले उन्हीं के परिवार की तो नहीं थी ना। ऐसे में सभी अभावग्रस्त परिवार

एक दूसरे को सब्र और उम्मीद की डोर थमाते रहते थे। राहत की बात बस इतनी सी थी कि 1955 से गांव में बच्चों के लिए एक स्कूल की सुविधा थी और प्रदीप के पिता घनघोर गरीबी के बावजूद बेटे को कभी पढ़ने लिखने से नहीं रोकते थे। हालांकि उन्हें कई बार स्कूल से छुट्टी करनी पड़ती क्योंकि मजदूर पिता कभी गाय चराने तो कभी खेतों में घास छीलने की जिम्मेदारी उन्हें दे देते थे। इन सब मुसीबतों के बावजूद प्रदीप की पढ़ाई में रुचि गहरी होती ही गई। करीब 12 साल की उम्र में वो जिस सरकारी स्कूल में पढ़ने गए वहां अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती थी। इससे पहले तो वो सिर्फ उड़िया सुनते थे और बोलते थे। पहली बार यहां उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी सीखी। शुरू शुरू में वो कुछ हिचके, थोड़े झेपे, लेकिन सीखने और आगे बढ़ने की चाह ने उनका रास्ता आसान कर दिया। बहुत जल्द ही शिक्षकों की निगाह में प्रदीप की मेधा आ गई, उन्हें भरपूर प्रोत्साहन दिया। फिर क्या था, छात्र की लगन और शिक्षकों के सहयोग ने एक गरीब बच्चे के दिन बदल दिए। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में प्रदीप बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। 10वीं के बाद से ही उनके मन में डॉक्टर बनने की इच्छा आ गई थी, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई का खर्च उठाना उनके परिवार के लिए आसान नहीं था। प्रदीप ने अपनी पढ़ाई लिखाई से पिता को गौरव के कई पल दिए, इसलिए जो भी थोड़ी बहुत जमीन उनके पास थी बेटे की मेडिकल फीस जुटाने के लिए दांव पर लगा दी। परिवार के इस त्याग से प्रदीप बहुत दुखी हुए, लेकिन अपने भविष्य को लेकर वो आशान्वित थे। वो परिवार की तकलीफ और संघर्ष में बराबर के शरीक रहे। उनके पास जो भी खाली वक्त होता वो उसमें किसी ना किसी तरह की दैनिक मजदूरी कर लेते। एक ऐसा मोड़ भी आया जब सारी कोशिशों के बावजूद चीजें मुश्किल होने लगी और बात उनकी झोपड़ी से निकलकर गांव के चबूतरे पर आ गई। तब गांव के कुछ समर्थ लोगों ने बड़प्पन दिखाया और वजीफे के तौर पर उन्होंने प्रदीप की लगातार मदद की। प्रदीप को हर महीने एक तय राशि मिलने लगी जिनसे वो अपनी किताबें खरीदते और हॉस्टल मेस की फीस चुकाते। अब लक्ष्य सिर्फ MBBS की डिग्री थी। वो जी जान से जुट गए। साल 2004 में MBBS की डिग्री लेने के बाद उन्होंने मास्टर्स कोर्स के लिए देश के प्रतिष्ठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के गुर सीखे। जाहिर है ये ऐसा चिकित्सा क्षेत्र है जो पढ़ाई लिखाई और खूबसूरती को लेकर सजग दौलतमंदों से ज्यादा जुड़ा हुआ है, लिहाजा प्रदीप के पास प्रस्तावों और मरीजों की कोई कमी नहीं रही। पैसे तो खैर आने ही थे, उनके पास दुबई में क्लिनिक खोलने के लिए रोचक प्रस्ताव आया। लेकिन उसी समय उन्हें आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद की वो लाइन याद आ गई, हर मनुष्य के जीवन का एक बड़ा मकसद होता है। नौजवान प्रदीप के जीवन का मकसद सिर्फ दौलत कमाना तो नहीं था, वो अपनी जड़ों की ओर मुड़े। कैंसर से पीड़ित पिता की दिली तमन्ना थी कि गांव में उनका एक घर होना था। प्रदीप ने घर की तामीर करवाई, मगर उनके बनने के चंद महीनों बाद ही वो इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद प्रदीप ने साल 2016 में उस घर को एक कोचिंग सेंटर में बदल दिया, ताकि गांव और आसपास के बच्चे वहां आकर गणित और अंग्रेजी सीख सके। इसके बाद बकायदा प्रशिक्षित शिक्षक रख दिए गए वहां। सैकड़ों बच्चों की जिंदगी में इस एक कोचिंग सेंटर से आई तब्दीली देखकर डॉक्टर प्रदीप को गहरा सुकून मिला। अब उन्होंने गांव में एक ऐसा स्कूल खोलने का फैसला किया जो गरीब बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा दिलवा सके। उन्होंने गांव की उसी जमीन पर स्कूल बनाने की शुरुआत की जहां कभी दैनिक मजदूरी किया करते थे वो। गांव वालों ने अपने सपूत का बढ़ चढ़कर साथ दिया। कई लोगों ने स्कूल के लिए अपनी अपनी जमीनें दान में दे दी। करीब 10 एकड़ में पिछले साल ही उत्कल गौरव इंटरनेशनल स्कूल वजूद में आ गया। फिलहाल इसमें 450 बच्चे पढ़ रहे हैं, मगर इसकी क्षमता 2500 बच्चों को 12वीं तक शिक्षा देने की है,
डॉक्टर प्रदीप सेठी आगे अन्य इलाकों में भी स्कूल खोलेंगे, मगर बैरून पदी का कर्ज तो उन्होंने अदा कर दिया।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: टीचर ने कहा, होमवर्क क्यों नहीं किया? स्टूडेंट, सर लाइट नहीं थी। टीचर ने कहा, तो मोमबत्ती जला लेते। स्टूडेंट, सर माचिस नहीं थी। टीचर ने कहा, अबे माचिस क्यों नहीं थी? स्टूडेंट, पूजा घर में रखी थी। टीचर, तो वहां से ले आते। स्टूडेंट, नहाया हुआ नहीं था ना। टीचर, नहाए हुए क्यों नहीं थे? स्टूडेंट, पानी नहीं था ना सर। टीचर, पानी क्यों नहीं था? स्टूडेंट, सर मोटर नहीं चल रही थी। टीचर, अब मोटर क्यों नहीं चल रही थी? स्टूडेंट, बताया तो सर, लाइट नहीं थी ना।

वो अभी अभी लौटा है अपने फरिश्तों के साथ, अपनी व्यस्तताओं से अभी अभी आया है बाहर और देख रहा है ये दुनिया। अब देख रहा है वो बेटे की शरारत पहले पहल, वो मुस्किया रहा है हौले हौले।

सम्मान किसे मिलता है? इसका एक सरल सा जवाब है, जो दुर्लभ हो। इसलिए बदलती हुई परिस्थितियों में भी सोने का सम्मान बचा हुआ है। व्यक्तियों के साथ भी ऐसा ही है। यदि आप लगातार नजर आएं, हमेशा इर्द गिर्द रहें, तो तमाम उपयोगिताओं के बावजूद आपकी पूछ कम होती जाएगी। ऊंचाई पर पहुंचने वाला हर व्यक्ति इस नियम पर चलता है, भले ही वह ओढ़ी गई व्यस्तता के आड़ में ऐसा करे। यह बात जीवन के हर एक पहलू में देखी जा सकती है। किसी के घर बार बार जाने पर सम्मान घटने की आशंका होती है ना? प्रेमी प्रेमिका का मिलना जब तक कम होता है, आकर्षण बना रहता है, लेकिन बहुत मिलने जुलने पर आकर्षण कम होने लगता है। इसलिए कभी कभी गायब हो जाना भी आवश्यक है। बाजार में किसी चीज की कमी पड़ जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, बशर्ते वह वस्तु काम की हो। घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी कहावतें सुलभता के संदर्भ में ही बनी हैं। विख्यात चित्रकार पाब्लो पिकासो लोगों से मिलने जुलने से परहेज करते थे। वो कहते थे कि जितनी अधिक खोज के बाद सामने वाला मिले, समझिए वह उतना ही मूल्यवान है। लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि कब गायब होना है और कितनी देर के लिए गायब होना है। सितारों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि ज्यादा दिन तक दूर रहे तो जनता उन्हें भूलने लगती है। इसलिए सोशल मीडिया हो या असल जिंदगी, अति करने से बचें, बीच बीच में अवकाश लेते रहें, अपनी कमी महसूस होने दें और फिर नई ऊर्जा के साथ वापसी करें। पाब्लो पिकासो ही नहीं, कई महान लोग ऐसा करते थे।

आइए दोस्तों आपको मिलवाते हैं जॉर्ज फर्नांडीज जी से, जो हमारे पूर्व रक्षा मंत्री रहे और राजनेता थे। वो 6 लड़कों से भरा पूरा कैथोलिक परिवार था। जॉर्ज, लॉरेंस, माइकल, पॉल एलियासिस और रिचर्ड, सब एक से बढ़कर एक। तब दौर ऐसा था कि दक्षिण भारत में ईसाई परिवारों का बड़ा बेटा धर्म के नाम पर भेंट कर दिया जाता था। वो प्रीस्ट या फादर बनता था। साथ ही हरेक परिवार में एक बेटी नन बनने के लिए भी भेज दी जाती थी। खैर, इस परिवार में तय था कि बड़ा लड़का, जिसे सब गैरी बुलाते थे, धर्म की राह पर ही जाएगा। गैरी ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की तो पिता में तमन्ना जागी कि उसे आगे पढ़ाया जाए। किशोर गैरी भी जान गए थे कि पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे। पेशे से बीमा अधिकारी पिता को एक वकील पुत्र की जरूरत थी, जो उनके लिए मुकदमे लड़ सके। पिता के पास शहर से बाहर एक जमीन थी, जिससे वो किराएदारों को अक्सर बेदखल किया करते थे। आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे और वकील की जरूरत पड़ती थी। बेटे ने साफ मना कर दिया कि वो वकील नहीं बनना चाहता, वो किसी का दिल नहीं दुखाएगा। पिता नाराज हुए, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि कुछ और नहीं तो बेटा फादर तो बन ही जाएगा, धर्म की सेवा में जाएगा, तो भला उससे नाराजगी क्या। फिर एक दिन आया जब बड़ा बेटा मंगलूर से बैंगलोर रवाना हो गया। बैंगलोर में प्रीस्ट और फादर बनने की शिक्षा दी जाती थी। बड़े बेटे की उम्र 16 साल थी। उसके मन में धर्म को लेकर बड़े ऊंचे विचार, स्वप्न और आदर्श थे। बैंगलोर के सेंट पीटर सेमिनरी में एक से बढ़कर एक ईसाई गुरु थे। शुरू में सब अच्छा लगा। समय से जागना, सोना, खाना पीना, पढ़ाई करना, अभ्यास करना। प्रशिक्षक मुस्तैदी से बताते थे कि धर्म की निगाह में सब बराबर हैं, ईश्वर भेद नहीं करता। लेकिन एक दिन अचानक उस किशोर का इस बात पर ध्यान गया कि जब सब बराबर हैं, तो ये श्रीमान टीचर हम सभी से ऊंची जगह पर क्यों बैठते हैं? उन्हें भी हमारे समान बैठना चाहिए ना? क्या वो बहुत ऊंचे हैं और हम छोटे? थोड़ा अंतर तो चाहिए, पर वो अर्श पर हैं और हम फर्श पर, क्या मतलब? सोच की ऐसी एक शुरुआत हुई कि किशोर ने टीचरों की कथनी को उनकी करनी से परखना शुरू कर दिया। सब समान हैं तो प्रशिक्षकों के लिए अलग भोजन क्यों बनता है? धर्म को समर्पित संस्था से ज्यादा समानता तो आम लोगों के घरों में मिल जाती है। हर घर में रसोई में समान भोजन पकता है और सब समान भाव से खाते हैं। ये कैसा धार्मिक कायदा कि गुरु 56 भोग उड़ाए और चेला सूखी रोटी चबाए? कथनी और करनी में बहुत जबरदस्त फर्क। बाकी भी विद्यार्थी थे, भेड़ चाल से चले जा रहे थे। सोच रहे थे कि एक दिन उनका भी समय आएगा तो वो भी अच्छा पहनेंगे, अच्छा खाएंगे। इस किशोर का मन उचटने लगा। उम्र के 18 साल पार करते करते वो युवा ईसाई पुरोहित बनने वाले संस्थान से भाग निकला। घर लौटना आसान तो नहीं था, तो मंगलूर में ही मजदूर बनकर आजाद जिंदगी जीने लगा। धर्म का पवित्र आदेश स्वीकारने और फिर पाखंडी करार दिए जाने के डर से घुटन महसूस करने के बजाय उन्होंने दुनिया का डट कर सामना किया। पास में न बिस्तर था न सर पर छत, सड़कों पर जिंदगी बसर होने लगी। यही वो समय था जब उनकी समाजवादी नेताओं से मुलाकातें हुई, तो जो समता से भरे समाज का सपना देख रहे थे, वो मन ही मन शुरू से ही स्पष्ट हो गए कि शोषितों के हित में उद्योग मालिकों से लड़ना पड़ेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। वो मंगलूर से मुंबई आ गए। वहां भी मजदूरों के लिए झंडा उठा लिया। कुछ ही समय में मुंबई में उन्हें लोग श्रमिक नेता के रूप में जानने लगे। एक समय नारे लगते थे, टैक्सी चालकों का नेता कौन? जॉर्ज फर्नांडिस, जॉर्ज फर्नांडिस। दक्षिण मुंबई जैसे लोकसभा सीट पर उन्होंने कांग्रेस के एक दिग्गज नेता को ऐसी पटकनी दी कि वो फिर उबर नहीं पाया। भारत में रेलवे की पहली और अंतिम हड़ताल का नेतृत्व उन्होंने किया। कई बार जेल गए, आपातकाल के समय भी जेल गए, और जेल में ही उन्हें सूचना मिली कि वो मुजफ्फरपुर से लोकसभा चुनाव जीत गए। पूरे देश को अपना क्षेत्र समझने वाले जॉर्ज फर्नांडिस
तमाम उम्र कुर्ता पजामा और चप्पल में ही रहे। वो देश के रक्षा मंत्री बने, पर कपड़ों पर सिलवटे हों तो कोई बात नहीं, इस देश के आम लोगों और मजदूरों के कपड़ों पर भी सिलवटे हैं। लोगों का नेता लोगों जैसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भूखी जनता के बीच खुद ऊंची कुर्सी पर बैठ जाए और मालपुआ खाए। बेंगलुरु से मुंबई और बिहार तक बार बार याद किए जाने वाले 3 जून को जन्मे जॉर्ज फर्नांडिस कहते थे, इतिहास में रहने के बजाय हमें इतिहास से सीखना चाहिए। रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: देखो भैया,

0: छोटी छोटी बातों में खुशियां तलाश लेता हूं। साइकिल पर चलता हूं फिर भी फोन को फ्लाइट मोड पर डालता हूं।
1: मिट्टी में खेलते उस बच्चे को देखकर याद आया, पैरों और जमीन को मिले एक अरसा हो गया। मैं आजाद घूमता हूं इधर उधर, रिश्ते अब मोबाइल में कैद है, चुप रहता हूं, दूसरा कोई और शौक नहीं मुझे।
2: तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।

0: तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: अजय मुक्केबाज, MC मेरी कॉम।
2: भारत की MC मैरी कॉम ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने रोमानिया की स्वेलुटा कुटा को 7-1 से हराया है।

0: अरे भाई कमाल हो गया, लगातार चौथी बार गोल्ड मेडल, कुल 5 प्रतियोगिताओं में 4 बार गोल्ड मेडल।
1: वो छोटी सी बामुश्किल 5 फुट ऊंचाई वाली मैरी कॉम,
0: हाँ?
1: अरे उसने तो अभी सितंबर 2007 में प्यारे से जुड़वा बेटों को जन्म दिया था। अरे भाई 27 साल की उम्र में 1 साल के 2-2 बच्चों के साथ लगातार चौथी बार, अरे वो कमाल है, मैरी कॉम कमाल है,
2: बहुत कमाल।
3: नवंबर 2008 के आखिरी सप्ताह में जब पूरी दुनिया मुंबई में आतंकवादी हमलों को लेकर भारत के प्रति दुख और चिंता व्यक्त कर रही थी, तभी देश के सुदूर उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की एक छोटे से कद की छरहरी महिला ने दुनिया को भारत की ताकत की वानगी पेश कर दी।
4: 2 साल तक घर गृहस्थी में व्यस्त रहने के कारण, मुक्केबाजी से दूर रहने और महज 4 महीने के अभ्यास के बाद एमसी मैरी कॉम ने 46 किलो संवर्ग में एक बार फिर अपना लोहा मनवा लिया। चीन की मिंगबो सिटी में संपन्न प्रतियोगिता में मैरी कॉम के मुक्कों के आगे कोई नहीं टिक पाया।
5: Interesting. I can see a great cheering crowd. Mario of the United States has punched to the right. Mary Kom of India defended very well and punched back. And now showers of punches from Mary.
3: आश्चर्य की बात है कि मैरी कॉम पहले 400 मीटर दौड़ और भाला फेंक में हिस्सा लेती थी और राज्य की चैंपियन भी थी। 1999 के बैंकॉक एशियाई खेलों में मणिपुर के डिंको सिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था और उसी से प्रेरित होकर मैरी कॉम ने मुक्केबाजी सीखने का फैसला किया। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। मैरी कॉम मुक्केबाजी सीख रही है ये बात जब पिता को मालूम हुई तो

0: बेटा मैरी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना?
1: पापा, मैंने मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैंने क्या किया है?
0: अरे गांव वाले कह रहे थे कि तुम स्कूल में मुक्केबाजी सीख रही हो। ये मारा पीटी लड़कों के खेल है बेटा, तुम्हें उसमें कूदने की कोई जरूरत नहीं है।
1: पापा, मेरे प्यारे पापा, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि ये खेल लड़कों का और ये लड़कियों का है? पापू, ये कोई मारा पीटी थोड़ा ही है, खास तो अपना बचाव है, सब कुछ कायदे कानून में होता है।
0: अरे बेटा, कहीं किसी के घूंसे से तुम्हारी नाक टूट गई या तुम्हारा जबड़ा टूट गया तो फिर टूटी नाक वाली लड़की से कौन शादी करेगा?
1: पापा, आप चिंता ना करें, मैं जो करूंगी उससे आपका नाम ऊंचा ही होगा।
0: मेरा नाम ऊंचा होगा? क्या कह रही है ये?
2: और हुआ भी ऐसा ही। सन 2000 में ही पहली राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीत लिया। मैरी कॉम ने भाला फेंकने की अपनी ताकत और दौड़ने के अपने कौशल को अपनी मुक्केबाजी में शामिल कर लिया था।
3: ये खबर अखबारों में छपी, मैरी का फोटो भी था और घर वालों को एहसास होने लगा कि उनकी बेटी अपने परिवार, अपने गांव और अपने राज्य और देश का नाम रोशन करने की राह पर बढ़ रही है। मणिपुर, सात बहनें कहलाने वाले राज्यों में से एक सुंदर पहाड़ी राज्य। राज्य की राजधानी से सटा चूड़ा चंद्रपुर जिले का गांव कंगहुई। एम टोनिया कॉम मेहनत मजदूरी करने वाले एक गरीब व्यक्ति। घर के चूल्हे चौके में दिन भर खट्टी उनकी पत्नी एम अका कॉम और उनकी बेटी मैरी कॉम। दौड़ती खेलती दुनिया की दिक्कतों के बावजूद

0: सामाजिक संस्थाएं बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित करने के इरादे से उनके परिवारों को कुछ आर्थिक मदद दिया करती थी।
1: और इसी प्रक्रिया में मेनगेट जंग नेजंग मैरीकॉम यानी एमसी मैरीकॉम, पहले लोकतक क्रिश्चियन मॉडल स्कूल और फिर सेंट जेवियर मोरांग में पढ़ाई करने लगी।
0: पढ़ाई से अधिक वो खेल कूद में आगे रहती। आदिम जाति लई स्कूल इम्फाल में वो हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकी, लेकिन मैरीकॉम के खिलाड़ी मन ने हार नहीं मानी और ओपन स्कूल के माध्यम से वो परीक्षा में फिर बैठी।
1: गरीब परिवार होने के कारण मैरीकॉम को समुचित पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता था, लेकिन मैरी का खेलों के प्रति समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने महज 14 दिनों में मुक्केबाजी के आधारभूत गुर सीख लिए थे। उनके मुक्के में इतना दम था कि कई सालों से बॉक्सिंग सीख रही लड़कियां उनके शुरुआती दिनों में भी उनके सामने नहीं टिक पाईं।

0: गरीबी ने उनके आत्मसम्मान को सदैव ताकत दी।
1: ये घटना उनके स्कूली दिनों की है जब वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कॉलोनी से बाहर निकली।

0: अरे लगता है कोई सवारी आ रही है।
1: रिक्शा वाले भैया, एम्बेसी चर्च चलोगे?
0: अरे आपको ले जाने से कौन मना कर सकता है। बैठिए बैठिए बैठिए।
1: पैसे कितने लोगे?
0: अरे मैडम जी जो देना हो दे देना, आपको तो रेट मालूम ही है ना।
1: ठीक है चलो फिर।

0: मैडम जी, एक बात बोलूं आपसे?
1: बोलो।
0: अगर आप लाल रंग पहने तो बहुत सुंदर लगेंगे।
1: सुनो, ज्यादा बकबक नहीं, अपने काम से काम रखो।
0: बात क्या है कि आप तो दिखती ही ऐसी हैं, कुछ बोले बिना मन नहीं मानता ना।
1: ए, जरा रोको रिक्शा। अरे रिक्शा रोको, सुन रहे हो तुम? रोको ना।
0: अरे गुस्सा क्यों हो रही है? रोकता हूँ, रोकता हूँ।
1: आइंदा किसी लड़की को अकेला देखकर कमजोर मत समझ लेना, समझे?
2: विषम परिस्थितियों में संयम से काम लेना, उनसे डट कर मुकाबला करना एक अच्छे खिलाड़ी का गुण होता है। इन्हीं गुणों के कारण एमसी मैरीकॉम सन 2000 से 2005 तक लगातार 5 बार महिला हॉकी की राष्ट्रीय चैंपियन रही। ऐसा नहीं है कि मैरीकॉम के साथ प्रत्येक कदम पर सफलताएं ही थीं।
3: उन्हें बैंकॉक में होने वाली थाईलैंड एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सिलेक्शन कैंप में शामिल होने के लिए जाना था। सफर के दौरान ट्रेन में उनका पूरा सामान चोरी हो गया। उसमें उनके कपड़े, दस्ताने, पैसे, यहाँ तक के पासपोर्ट भी था।
2: इतने नाजुक हालात का मैरी कॉम ने डटकर मुकाबला किया। उनके एक परिचित अंकल ने भरोसा दिया कि यदि मैरी का सिलेक्शन हो जाता है तो वो सारी व्यवस्थाएं कर देंगे।
3: उन हालात में मैरी कॉम ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की टीम में अपना स्थान बना लिया, लेकिन इस बार मैरी को खाली हाथ वापस आना पड़ा।
2: लेकिन मैरी कॉम ने हार नहीं मानी। अमेरिका में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। सन 2002 में तुर्की में उन्होंने द्वितीय महिला विश्व स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। एशियाई प्रतियोगिताएं तो लगातार मैरी कॉम के नाम रही हैं।
3: लेकिन इतने सारे सोने के तमगे मैरी कॉम के घर का चूल्हा जलाने और लगातार प्रशिक्षण व पौष्टिक आहार के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे थे। सन 2005 तक उनके पास न तो नौकरी थी और न ही कोई स्पॉन्सर।
2: शादी के बाद जब मैरी गर्भवती हुई तो लोगों को लगा कि अब इस चमत्कारी मुक्केबाज का करियर खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गर्भ के 7वें महीने तक मैरी कॉम मुक्केबाजी की रिंग में जाती रही। वो अपने पास पड़ोस के बच्चों को मुक्केबाजी का प्रशिक्षण देने लगी। इससे उनका अभ्यास बरकरार रहा।
3: 2 साल तक बॉक्सिंग रिंग से दूर रहने के बाद जब मैरी कॉम ने फिर से मुक्केबाजी के ग्लव्स पहने तो एक नया संकट उनके सामने था।
1: कोच सर, मैं फिर से रिंग में आना चाहती हूँ।
4: फिर से? देखो मैरी, तुमने खेल को बहुत कुछ दिया, लेकिन अब तुम्हारी हालत ऐसी नहीं लगती कि फिर से।
1: कोच सर, मेरा शरीर जब तक चलेगा तब तक मैं खेलूंगी। अब बताइए मेरी फिटनेस में क्या कमी है?
4: मैरी, तुम खेलती हो 46 किलोग्राम में, ठीक है ना?
1: जी सर।
4: जब तुम गर्भवती थी तब तुम्हारा वजन क्या था?
1: 67 किलो।
4: और अब?
1: 61 किलोग्राम।
4: देखो मेरी, 61 किलो वजन में तो कोई जगह खाली है ही नहीं। अब तुम 46 किलो कैसे बनोगी? यानी समझ गई ना?
1: कोई बात नहीं सर, मैं आपसे कुछ दिनों बाद मिलती हूँ।
4: कुछ दिनों बाद मिलती हूँ?

0: वजन कम करने की चुनौती को मैरी कॉम ने सहर्ष स्वीकार किया। उनके पति के ऑनलर ने इस घड़ी में उनका साथ दिया। ऑनलर मोटरसाइकिल पर होते और मैरी कॉम दौड़ लगाती।
1: Yeah.

0: 15 किलो वजन कम करना लेकिन अपनी ऊर्जा को बचाए रखना कोई साधारण काम नहीं था। साथ में दो बच्चों को भी पालना था। बच्चे केवल 2 महीने के थे और मैरी कॉम को गुवाहाटी में हुई एशियाई चैंपियनशिप के लिए कैंप में जाना पड़ा।
1: उनकी गैर मौजूदगी में उनके दोनों बच्चों की देखभाल उनके पति ने की।
0: तभी तो जब चीन में संपन्न 5वीं महिला अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी कॉम को गोल्ड मेडल मिला तो उन्होंने इस पदक को अपने पति और बच्चों को समर्पित किया। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास से वो यहाँ तक पहुंची थी। अपने बच्चों के प्रति भावुक पलों में उन्होंने कहा,
2: उन्हें छोड़कर आना बहुत मुश्किल था। वो अभी बोलते नहीं लेकिन रवानगी के समय मुझे हैरानी से देख रहे थे कि मम्मी उन्हें छोड़कर कहाँ जा रही हैं। उनसे दूर रहना मुश्किल था लेकिन मैं मुक्केबाजी को उतना ही प्यार करती हूँ।
0: मैरी कॉम को पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार सहित कई सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। इम्फाल के खेल गांव की ओर जाने वाली सड़क का नाम MC मैरी कॉम मार्ग रखकर मणिपुर सरकार ने इस जीवट वाली मुक्केबाज महिला को

0: किसी ने पूछा, यदि आप मुक्केबाज नहीं होती तो?
1: तो मैं गायिका होती, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: अब मैरी कॉम का लक्ष्य है ओलंपिक में हिस्सा लेना।
1: मेरा सबसे बड़ा सपना है ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करना, और उम्मीद करती हूँ कि सन 2012 में लंदन ओलंपिक में मेरा ये सपना जरूर पूरा होगा। खेल जिंदगी।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 10 के अभिल 90.8 FM जाबुआ की आवाज़।

मार्च का महीना है। होली के रंगों के साथ ही स्वेटर रजाई बक्सों में बंद होने लगे हैं। पिछले यही तो दिन थे जब अचानक सुबैया सुबह सुबह आया था, चाय की चुस्की के साथ बोल पड़ा था, यहां के हल्ले गुल्ले भीड़ भाड़ से परेशान हो गए हैं, कहीं ऐसी जगह चलो जहां कुछ पल सुकून के मिले। ढेर सारे नक्शे किताबें पलटी थी हमने। अरे हाँ सुबैया मेरा दोस्त, इससे तो मिलने, मेरा मित्र, मेरा सहकर्मी, शांत गंभीर संकोची लेकिन जिज्ञासु,

पहुंच गया वहां जहां लगा कि शायद स्वर्ग की कल्पना यही होगी। वहां देखे सुने महसूस किए हर पल हर घटना को मैंने अपनी डायरी में दर्ज किया है। तो मेरी डायरी के सहयात्री बनेंगे

0: यमुनोत्री, यमुना का उद्गम स्थान। यमुनोत्री तक की यात्रा आसान नहीं थी। एक ओर ऊंचे पहाड़, चढ़ाई, उस पर तेज ढलान, उन पर चढ़ना मेरे लिए मुश्किल था। जैसे तैसे उठते बैठते हांफते हुए चढ़ तो गए। साथ में कुछ लोग और भी थे, उन्होंने हिम्मत बंधाए रखी।
1: अब मुश्किल लग रही है भाई।
2: चलो भाई, बस बस थोड़ी दूरी तो है।
0: अरे तुम तो अभी कम उम्र के हो सुबैया, मैं थोड़ा सुस्ता लूं।
2: ठीक है,

चढ़ते वक्त गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन पसीना नहीं आ रहा था। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़, एक ओर गहरे खड्ड और घाटियां जो हरे भरे पेड़ पौधों से ढकी हुई थी, दूसरी ओर ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी दूर दिखाई दे रही थी। तेज हवा अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही थी, लेकिन पहाड़ियों का सिलसिला चलता ही जा रहा था।

0: अरे लगता है हम यमुनोत्री पहुंचने वाले हैं।
1: अरे चलो चलो, वो उस सामने ही यमुनोत्री है।
0: हाँ सामने? सच सुनिए।
1: हाँ हाँ,
0: इतना पास
1: सामने। चलो संभल कर।
0: अब मुश्किल लगेगी भाई।
2: फिर चढ़ना शुरू किया। सस्ताने से थोड़ी ताकत व हिम्मत बन गई। बर्फ की सफेदी इतनी थी कि आसमान का नीलापन भी कम दिखाई दे रहा था। मेरे लिए ये एक नया अनुभव था। कुछ देर की चढ़ाई के बाद हम यमुनोत्री पहुंच गए।
1: अरे बस पहुंच ही गए। आ जाओ आ जाओ।

0: देखो सूर्य की किरणों का कमाल।
1: वाह रे कुदरत, बर्फ के इतने रंग। अरे मैंने कभी सोचा भी नहीं था सूर्य की किरणें बर्फ में रंग भर सकती हैं।
0: वाह, हम यही कोई समुद्र तल से 3,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर हैं। और यमुनोत्री उत्तराखंड राज्य के टिहरी और उत्तर काशी जिले में पड़ता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है बदरपुच, जानते हो ये सुमेर भी कहलाती है।
1: अच्छा,
0: इसका एक भाग है कलिंद, यही यमुना का उद्गम है।
1: वाह सुभैया, खूब जानकारी इकट्ठा की है। लगता है बहुत सारे नक्शे देखे हैं, तभी यमुना को कालिंदी कहते हैं। सर्दी बहुत थी, पहने हुए गर्म कपड़े सर्दी नहीं रोक पा रहे थे। पास में चाय का एक खोखा था, हमने चाय पी, कुछ गर्मी आई। कभी कभी सांस लेने में कठिनाई सी जरूर होती थी, हम हांफने लगते थे क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यमुनोत्री एक हिमनद यानी बर्फ का चलता हुआ ग्लेशियर है, इसी से यमुना नदी निकलती है। यमुनोत्री पीर पंजाल की पहाड़ियों का ऊपरी भाग है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। पीर पंजाल की पहाड़ियां छोटे और बड़े हिमालय के बीच का भाग है। यहां पर वायुमंडल की निचली परत ट्रोपोस्फीयर में तापमान ऊंचाई के अनुसार घटता जाता है, इसीलिए पहाड़ों पर तापमान कम होता है, सर्दी मैदान से अधिक पड़ती है। यमुनोत्री पर चारों ओर सन्नाटा था, हम केवल चंद ही लोग थे वहां, एकदम जीवन रहित, यहां तक कि परिंदे भी दिखाई नहीं पड़ते थे, केवल बर्फ ही बर्फ, वो भी दूर दूर तक। बर्फ पर चलने से पैर नीचे की ओर धस रहे थे। तापमान शून्य से कम होने के कारण पेड़ पौधे घास फूस कुछ भी नहीं उग पाते।

दोनों टहलते हुए पहाड़ की दूसरी ढलान की ओर गए। वहां कुछ और ही देखने को मिला। बर्फ के नीचे से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था और वो भी शून्य से कम तापमान पर, जहां सब कुछ जमा हुआ था।

0: सब कुछ जमा हुआ है, वहां पानी कैसे?
1: जब करीब जाकर देखा, बर्फ का निचला भाग खोखला था। अंदर हाथ डालने से पता चला कि बर्फ का खोखलापन दूर तक है। इसका कारण क्या है, मैं सोचता रहा और अंत में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बर्फ जमीन की गर्मी से पिघल रही है। एक पतली सी पानी की धार ढलान से नीचे की ओर बह रही थी।

पानी की धारा का रुख उत्तर की ओर था। इसके साथ साथ हमने नीचे उतरना शुरू किया। यहां छोटी छोटी कई और धाराएं भी मिल रही थी। पानी को हाथ में लेकर देखा, बहुत ठंडा था। ठंड से हाथ में ठिठुरन चढ़ गई। उतरते हुए देखा नीचे की ओर बर्फ कम हो रही थी। केवल दो पहाड़ों के बीच की घाटियों में काफी बर्फ थी। हिमालय पर्वत परतदार चट्टानों से बना है। परतों के बीच बीच में मिट्टी, कंकड़, पत्थर देखे जा सकते हैं। ऐसी बनावट कमजोर होती है, खास तौर से बरसात के समय। पानी जब मिट्टी, कंकड़, पत्थर के बीच से गुजरता है तो चट्टानें कमजोर होकर खिसकने लगती हैं। बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड का खतरा रहता है।

कुछ दूर चलने पर हमें मलबा दिखाई दिया। अब पहाड़ एवं ढलानों पर कहीं कहीं घास दिखाई देने लगी। मैंने एक चोटी से खड़े होकर देखा, कुछ दूर भेड़ बकरियां चरती दिखाई दे रही थीं।

पानी की धारा भी अब बड़ी हो गई थी। इसी के साथ हम नीचे की ओर उतर रहे थे। पानी की इस धारा को यमुना नदी मानने में कुछ झिझक हो रही थी। सो चरवाहों के पास जा पहुंचे।

0: अरे भैया जरा सुनना।
1: कहो बाबू जी।
0: क्या यही यमुना है?
1: यमुना नदी देख रहे थे?
0: हाँ
1: यही यमुना है।
0: क्या इतनी छोटी सी?
1: हाँ आगे चलकर बड़ी हो जाएगी।
0: अच्छा अच्छा हमने चारों ओर देखा कि घाटियों में बड़े बड़े पेड़ थे, ढलानों पर घास थी, चट्टानें काई से ढकी थी, कहीं कहीं नई घास निकल रही थी। चरवाहों के साथ साथ हम भी आगे बढ़ने लगे। यहां पर चरवाहों को बकरवाल कहते हैं। हमने स्थानीय बोली में उम्र में छोटे दिखाई देने वाले एक चरवाहे को रोका और भुला कहकर संबोधित किया। भुला का मतलब है छोटा भाई।

0: अरे सुनो भाई।
1: जी साहब।
0: भोला, इतनी ऊंचाई पर इतनी ठंड में भेड़ों के साथ क्यों आते हो?
2: साहब ऐसा है, गर्मियों के समय मैदानों में पानी और घास सूख जाती है। हिमालय के पहाड़ों में पानी घास फूस खूब मिलता है साहब।
0: अच्छा, अच्छा ये बताओ कि कब तक रहते हो यहाँ?
2: हम यहाँ आना शुरू करते हैं साहब अप्रैल मई में।
0: अच्छा।
2: पहले शिवालिक की पहाड़ियों में घास चराते हैं। यहाँ बड़े पत्ते वाले पेड़ हैं, भेड़ बकरियाँ कम खाती हैं, इसलिए यहाँ कम समय रहते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवालिक की पहाड़ियों के बाद आप कहाँ जाते हैं?
2: शिवालिक के बाद साहब धौलाधार के पहाड़ों में चराते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं क्योंकि धौलाधार के पहाड़ों में खूब घास मिलती है।
0: अच्छा।
2: गर्मियों में बर्फ पिघलने के बाद नई नई घास फूटती है जो भेड़ बकरियों को ताकत देती है। इसे खाकर ये अच्छी खासी तंदुरुस्त हो जाती है साहब। हम इन पहाड़ों में कई महीने रहते हैं। पहाड़ की चोटियों पर सर्दियों में बर्फ खूब जमती है साहब। जब घास कम होने लगती है तो हम आगे बढ़ जाते हैं।
0: अच्छा भोला, तुम्हारे बाल बच्चे?
2: हमारे बाल बच्चे सामान के साथ खच्चर या गधों पर बाद में आते हैं। छोटे बच्चों को सामान के साथ गधों पर बैठा देते हैं।
0: गधों पर?
2: हाँ, औरतें हाँकती हुई चली आती हैं। परिवार के साथ कुत्ते होते हैं साहब।
0: अच्छा।
2: वो हमारी रक्षा करते हैं साहब।
0: भाई तुम्हारा जीवन तो बहुत कठिन है भोला।
2: नहीं नहीं साहब, यही तो हमारी जिंदगी है। अच्छा लगता है साहब।
0: अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था क्या है?
2: साहब पढ़ाई लिखाई का तो कोई जुगाड़ नहीं हो पाता, क्या करें, बच्चों को भी यही काम करना पड़ेगा। पैसों का जुगाड़ हो तो पढ़ाई लिखाई की सोचें।
0: धौलाधार के बाद कहाँ जाते हो?
2: धौलाधार की पहाड़ियों के बाद छोटे हिमालय की पहाड़ियों की ओर निकलते हैं। वहाँ हरी घास खूब मिलती है साहब।
0: अच्छा।
2: छोटे हिमालय की ऊंचाई धौलाधार से भी ज्यादा है साहब।
0: अरे वाह,
2: ठंड भी ज्यादा पड़ती है।
0: तो ठंड से बचने के लिए क्या करते हो?
2: ठंड से बचने के लिए साहब हमारे पास ऊनी कपड़े जैसे कंबल, लोई, पट्टू के कोट होते हैं। रात में पड़ाव पर आग जलाते हैं, जंगली जानवरों से बचाव हो जाता है, और हमारे कुत्ते तो रक्षा करते ही हैं साहब।
0: अच्छा ये बता भूला कि सबसे लंबा पड़ाव किन क्षेत्रों में होता है?
2: साहब सबसे लंबा पड़ाव पीर पंजाल के पहाड़ों में रहता है।
0: पीर पंजाल?
2: जी, पीर पंजाल के पहाड़ों में डेरा डाल देते हैं। तंबू ही हमारा घर होता है। हम बकरवाल लोगों का जीवन तो घास फूस पानी चरागाह से जुड़ा हुआ है ना साहब।
0: लंबे पड़ाव के समय तुम क्या काम करते हो?
2: पहाड़ों के चढ़ने की थकान उतारते हैं साहब। जड़ी बूटियां इकट्ठी करते हैं।
0: अच्छा।
2: यही भेड़ बकरियां दूर दूर तक चरती हैं। जगह जगह के बकरवाल यहाँ आकर इकट्ठा होते हैं और हमारी पंचायत भी यही होती है साहब।
0: अच्छा।
1: शहर भी।
0: बहुत अच्छे।

बकरवाल से विदा लेने के बाद हमने नदी के साथ नीचे की ओर उतरना शुरू किया। एक सपाट भूभाग दिखाई दिया जहां तरह तरह के फूल खिले हुए थे। बड़ा अजीब सा लगा, जंगल में मंगल। फूलों को देखकर हमारी थकान दूर हो गई।

0: ऐसा निजाम है कुदरत का। एकाएक ये फूल कहां से? भाई ऐसे फूल हिमालय में एक खास ऊंचाई पर मिलते हैं, पर क्यों? एक खास वातावरण के कारण।
1: अब मैं कुछ समझा नहीं।
0: देखो सुपैया, तुमने देखा कि सबसे ऊपर बर्फीले क्षेत्र, काई व हरी भरी घास थी।
1: हाँ।
0: इसके बाद जंगली फूल और जड़ी बूटियां, फिर पेड़ पौधे, जीव जंतु व मानव बस्तियां।
1: अच्छा अच्छा, यानी एक खास आबो हवा में ही ऐसे फूल वाले पेड़ उग सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब समझा।
0: तभी दूसरी ओर से एक और भेड़ बकरियों का समूह आता दिखाई दिया।

0: उनके करीब गया।
1: सुनिए
2: जी साहब,
0: आप भी बकरवाल हैं?
2: नहीं नहीं साहब, हम तो भोटिया कबीले के हैं साहब।
0: भोटिया?
2: भोटिया?
0: हाँ। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताओ।
2: साहब, हमारा पुराना संबंध तिब्बत से था।
0: अच्छा।
2: पहले भारत चीन के बीच व्यापार करते थे साहब। 1962 में भारत चीन की लड़ाई के बाद व्यापार बंद हो गया साहब।
0: अच्छा।
2: अब हम केवल भेड़ बकरियां पालते हैं साहब। हम में से कुछ हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में याक भी पालते हैं साहब।
0: अच्छा, याक भी पालते हैं?
2: हाँ साहब, हमारा एक खास कबीला है साहब, जो गर्मियों में बद्रीनाथ केदारनाथ के आसपास रहते हैं साहब। माणा हमारा आखिरी गांव है जो भारत चीन की सीमा पर है साहब।
0: हाँ हाँ।
2: माणा हमारा गर्मियों का ठिकाना है साहब। हम पांडवों को अपना पूर्वज मानते हैं साहब।
0: क्या कहा? पांडवों को?
2: हाँ साहब।
0: अरे वाह।
2: आज भी खास उत्सवों पर हम पांडव लीला का अभिनय करते हैं। ये उत्सव कई रोज चलता है साहब। बड़ा ही आनंद आता है साहब।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: बहुत अच्छा। और हाँ साहब, हम बड़े हिमालय से लेकर मैदानी भागों तक भेड़ बकरी चराते हैं साहब। हमारी औरतें ऊन की कताई, बुनाई, कपड़ा बनाना, बेचना, सभी कामों में निपुण है साहब।
0: सभी कामों में?
2: हाँ, ऊन के बनाए गए कपड़ों को वो खुद ही बेचती है साहब।
0: क्या कहा? खुद ही बेचती है?
2: हाँ साहब।
0: कमाल की बात।
2: अच्छा साहब, नमस्ते साहब।
0: अच्छा, नमस्ते नमस्ते।
3: बकरवाल और भोटिया में कुछ बातें समान है, जैसे भेड़ बकरियां पालना, चरागाह का प्रबंध करना, आने जाने के लिए घोड़े, रक्षा के लिए कुत्ते पालना आदि। ऐसे घुमंतू कबीले हिमालय में कई और भी हैं। भेड़ बकरियों का पालन इनका मुख्य धंधा है। चरागाहों के साथ घर, ठिकाना सब बदलता है। गर्मी और सर्दी के ठिकाने अलग अलग होते हैं। भोटिया कबीले के सरदार से बातें करते करते कितनी दूर निकल आए पता ही नहीं चला। अब यमुना की धारा बड़ा रूप धारण कर चुकी है और मुझे लगा यमुना मुझसे कुछ कह रही है।

0: मेरा नाम यमुना है, लोग मुझे जमुना के नाम से भी पुकारते हैं। प्राचीन ग्रंथों में मुझे सूर्य की पुत्री सूर्य कन्या, यम की बहन यमी और कालिंदी भी कहते हैं। गंगा की तरह मैं पवित्र नदियों में से एक हूं। मैं उत्तराखंड राज्य के यमुनोत्री हिमनद से निकलती हूँ, जो उत्तरकाशी के टेहरी जिले में पड़ता है। यहाँ पीर पंचाल की पहाड़ियों की कुछ चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। इन्हीं चोटियों के बीच यमुनोत्री हिमनद स्थित है। यहाँ बर्फ का ही साम्राज्य है। चारों ओर दूर दूर तक केवल बर्फ। वही मेरा उद्गम स्थान है। इसकी ऊंचाई कहीं 3000 मीटर तो कहीं 4000 मीटर है। बर्फ के पिघलने से मेरे जीवन की शुरुआत होती है। जमीन की गर्मी मुझे जीवन देती है। पहाड़ों की ढलान मुझे गति प्रदान करती है। कई सरिताएं मिलकर मेरा आकार और पानी की मात्रा बढ़ाती है। लेकिन आज मैं संकट में हूं। हिमनद जलवायु के परिवर्तन से सिकुड़ रहे हैं। इसका असर आप भी महसूस कर रहे होंगे।
1: हम यमुना के साथ जल्दी जल्दी आगे बढ़े, सोचा रुकने का ठिकाना तलाश करें। थोड़ी देर में बस्ती के पास पहुंचे। ये पहली बस्ती थी बरकोट। पहाड़ी की ढलान पर बसा था ये छोटा सा कस्बा, और साथ में यमुना नदी बह रही थी। सड़क के दोनों ओर घर, नीचे दुकानें, चाय व खाने के ढाबे थे। एक छोटे से होटल में हमने खाना खाया और अपना ठिकाना तलाश कर लिया।

0: भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का काफी अहम योगदान है। करीब 58% से ज्यादा ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के मुख्य साधन के रूप में खेती पर ही निर्भर हैं। भारत की जनसंख्या में युवाओं की तादाद अच्छी खासी है। इन युवाओं के पास नए नए विचार हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करने के साथ साथ खेती से रोजगार पैदा करने की जरूरत पर भी ध्यान दिया जा रहा है। किसान और युवाओं को स्टार्टअप करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्टार्टअप देश के युवाओं के लिए एक ऐसा मौका है जिसके जरिए वे खुद का काम शुरू करते हैं, खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आम तौर पर माना जाता है कि स्टार्टअप सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और इंजीनियरिंग आदि सेवाओं में ही किया जा सकता है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप तेजी से कारोबार के मैदान में आ रहा है। स्टार्टअप से जहां युवाओं को रोजगार मिलता है, वहीं ये किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने में भी मदद करता है। इससे खेती में निवेश बढ़ता है और किसान की आय में भी बढ़ोतरी होती है। कृषि क्षेत्र में आ रही नई नई तकनीकें भी एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रही है। देखा जा रहा है कि अब पढ़े लिखे युवा भी नए नए आइडिया के साथ कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स कर रहे हैं। कृषि उद्यमिता में नए आयामों को बढ़ावा देने और युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से भी समय समय पर कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनके तहत युवाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता भी दी जाती है। इंक्यूबेशन प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। इन प्रोग्रामों के तहत युवाओं को न सिर्फ नई तकनीक सिखाई जाती है, बल्कि जिन युवाओं के पास पहले से अपनी तकनीक और नए विचार होते हैं, विशेषज्ञों के जरिए उनमें और भी सुधार लाया जाता है। कुल मिलाकर कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप का अपना महत्व है। इससे किसानों और युवाओं को न सिर्फ उद्यमी बनने का मौका मिल रहा है, बल्कि अब युवा अपने मन में आए विचारों को वास्तविकता में बदलकर खुद को आत्मनिर्भर बना पा रहे हैं।
1: तो जाना आपने इस रिपोर्ट के जरिए किस तरीके से जब असीम संभावनाओं की हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र में, वो हमें नजर आती हैं, लेकिन उनको परखने का जब काम किया जाता है या उसके कौशल विकास पर जब काम किया जाता है, ये काम अब बेहतर ढंग से हमारे जो एग्री स्टार्टअप हैं, जो कृषि के स्टार्टअप हैं, वो अब कर पा रहे हैं। इस बारे में सबसे पहले डॉक्टर नीरू भूषण आपसे हम जानना चाहेंगे, एक समय था जब हमारे देश में जो स्टार्टअप हैं वो एक नई बात हो जाती थी युवाओं के लिए, लेकिन आजकल देखा जाए तो युवाओं का रुझान बहुत ज्यादा नजर आ रहा है और उससे ज्यादा रुझान कहीं ना कहीं एग्री स्टार्टअप्स पर भी है।
2: आप अगर डाटा देखें तो हमारे देश में हर दिन 2 से 3 स्टार्टअप बनते हैं
1: जी।
2: और एग्री स्टार्टअप की जो अगर मैं बात करूं तो इसकी बढ़ोतरी पिछले कुछ सालों में 25% ईयर ऑन ईयर हो रही है। और इनको प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि स्टार्टअप्स की जो जर्नी है वो बहुत ज्यादा कठिन है और उनके सामने अनेक चुनौतियां हैं, तो उन चुनौतियों को किस तरीके से पार करने में गवर्नमेंट ने उनकी मदद की है और किस तरीके से ताकि वो कम से कम वल्नरेबिलिटी स्लैब में आए और उनका रिस्क मिटिगेशन है उसमें हम मदद करें, तो इसमें मैं बात करूंगी आपके साथ, साझा करूंगी कि जो एक महत्वपूर्ण जो स्कीम है जो रफ्तार के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च की थी 2018-19 में, इनफैक्ट दिसंबर 18 में वो लॉन्च की थी, जिसके तहत 29 इंक्यूबेटर्स इन 23 स्टेट्स में एस्टैब्लिश किए गए और ज्यादा से ज्यादा इंक्यूबेटर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज 18 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में बनाए गए और 6 ICR इंस्टीट्यूशंस में और 3 जो थे वो मैनेजमेंट कॉलेजेस में और 2 IITs में बनाए गए। तो इनके तहत तकरीबन हम हर साल 7,000 के करीब स्टार्टअप्स की एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और अभी तक हमने इस प्रोग्राम के अंतर्गत तक ज्यादा 2,500 से ज्यादा स्टार्टअप्स को ट्रेंड किया है।
1: और ये भी काफी चुनौतीपूर्ण और एक बड़ी उपलब्धि, देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो स्टार्टअप्स हैं वो सामने आते हैं और उनमें से चयन करना और

0: जिसके बाद उनको स्तर पर आर्थिक मदद देना। इस बारे में यहाँ पर कुलदीप जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, किस तरीके से अगर नाबार्ड की भूमिका की हम बात करते हैं, वो एक लगा हुआ है लगातार कि जो एग्री स्टार्टअप्स हैं हमारे उनमें मदद पहुंचाई जा सके।
1: नाबार्ड जैसे कि आपको पता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, जिसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, कृषि का विकास करना। और विकास में हम बैंकों को जोड़ते हैं, किसानों तक पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी को जोड़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कृषि से पैदावार हमें देनी है, और उनको भोजन करवाने के लिए हमें नई तकनीकों को ईजाद करना जरूरी है। नई तकनीक जब ईजाद करने का काम आता है तो एग्री स्टार्टअप जो है वो बहुत ही अहम रोल उनका एक हो जाता है। और ये एग्री स्टार्टअप एक तो रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो कृषि के कार्य हैं, चाहे वह बीज लगाने का काम है, चाहे प्रोडक्शन करने का काम है, चाहे इनपुट सप्लाई का काम है, चाहे मार्केटिंग का काम है, ये जो भी कार्य है वो एग्री स्टार्टअप का मेन मकसद है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जो कि ट्रेडिशनल वे में काम हो रहा है, उन कामों को बहुत ही सहज तरीके में, बहुत ही एफिशिएंट वे में करें, और उसमें जो भी ड्रजरी है किसान की वो कम हो
0: जी,
1: और जिससे कि ये कृषि कार्य में जो है नए यूथ भी जुड़े।
0: जी बिल्कुल कुलदीप जी, जैसा आपने कहा, क्योंकि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है कि किस दिशा और दशा के साथ जो स्थिति है वो हमारी कृषि की बदल रही है। और खासतौर से डॉक्टर नीरू, अगर देखा जाए, क्योंकि आपने बताया कि जो रफ्तार है वो एक कार्यक्रम में शुरू किया गया, और उसी रफ्तार में हमने देखा, ना सिर्फ रफ्तार बल्कि कोशिश ही की गई कि उसको और ज्यादा पंख दिए जाएं, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया और उसके बाद उड़ान जो है वो हमने देखी।
2: जी, इसमें सही बात है जो अभी आपने कहा कि ये एक बहुत ही बड़ा टास्क है। पहली बात तो शुरू में हमें लग रहा था कि कितने स्टार्टअप्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो हम देख करके हैरान है कि तकरीबन अगले तीसरे साल में 10,000 से लोग इसमें एप्लीकेशंस हम रिसीव करते हैं
0: जी।
2: और 10,000 एप्लीकेशंस में से पर तकरीबन हमारा 1,000-1,200 का इनटेक सारे सेंटर्स को मिला करके रहता है, तो ये एक बहुत बड़ा कार्य और चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन।
0: लेकिन अगर एक कुल आंकड़ा आपसे हम जानना चाहें कि अब तक कितने युवा हैं या कितने लोग हैं जो एग्री स्टार्टअप से जुड़े हैं?
2: जी, अब अगर मैं स्कीम की बात करूं तो पिछले 2 साल में तकरीबन हम लोगों ने 2,500 से ज्यादा लोगों को स्टार्टअप्स को ट्रेंड किया है और तकरीबन 814 स्टार्टअप्स को फंड किया है
0: जी।
2: और वो फंड 5 से लेकर 25 लाख तक की राशि का है जो कि ग्रांट इन एड के रूप में है। तो यहाँ पर चूंकि अगर आप देखें कि ये इनक्यूबेटर सेंटर्स किन संस्थाओं में हैं, तो ये ज्यादातर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में हैं। तो हमारे सामने ये चुनौती थी कि ये जो युवा हैं जो आ रहे हैं, बेसिकली ये पढ़े लिखे हैं और 28 साल की एक एवरेज एज के लोग हैं और जिन्होंने 5 से 7 साल नौकरी कर ली है, तो ये बड़े अनुभवी हैं। बट ये देखने में आया कि अगर हम इनका एजुकेशन देखें तो ये ज्यादातर लोग 80-82% तक के लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर से नहीं जुड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर एग्री स्टार्टअप्स को हमें अपने हिसाब से, पर हमें उनकी स्किल सेट चाहिए क्योंकि वो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं, सो अगर हमें एफिशिएंसी एग्रीकल्चर के सेक्टर में लानी है तो इन युवाओं की और एग्री स्टार्टअप्स की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। तो यहां पर इनक्यूबेटर्स के रोल भी बहुत अहम हो जाते हैं क्योंकि एक जो डिस्कनेक्ट है विद द सिस्टम और डिस्कनेक्ट विद द डोमेन, सो यहां पर इनक्यूबेटर्स का रोल बहुत अहम है।
0: काफी अहम भूमिका जो है देखिए वो नजर आती है। और हमारे साथ नितिन जी भी जुड़े हुए हैं जो कि एक उदाहरण भी है कि किस तरीके से एग्री स्टार्टअप्स जो हैं वो सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ जो रोजगार के अवसर हैं वो युवाओं को दे रहे हैं। नितिन जी, जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से एक सफर आपका शुरू हुआ, और खासतौर से क्योंकि स्टार्टअप्स की जब हम बात करते हैं तो कई ऐसे क्षेत्र हैं, लेकिन कैसे आपने कृषि स्टार्टअप का चयन किया?
3: मेन फैक्टर एक कामयाबी के लिए है कि एक राइट प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई करना है। अगर हमारी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ठीक नहीं होगी तो एक स्टार्टअप के लिए आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस तरीके से बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो एक नॉट राइट आइडिया और मे बी नॉट राइट वैलिडेशन के कारण नहीं आगे चल पाते हैं और बहुत दिक्कतों का सामना करते हैं। तो अब मेरे आपका जो एक सवाल था कि कृषि स्टार्टअप से जुड़ने का ऐसा क्या कारण रहा, जब मैं 2007 से मैं कनाडा में था और मैं 2016 में इंडिया वापस लौटा, और जब मैं वहां पे रहता था मेरा घर एक फार्म पे था और मैं वहां के जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उसे बहुत ही क्लोजली रूबरू था उनके साथ, जबकि वहां पे किसान जो अपनी जो यूज करते थे स्प्रे के लिए हेलीकॉप्टर्स यूज करते थे, बड़े बड़े जॉन डियर ट्रैक्टर्स यूज करते थे, बट मुझे लगा कि भी हमारा जो किसान है यहाँ पे उनके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और हमारी नीड्स भी डिफरेंट है, तो ऐसा क्या किया जाए कि के इससे कोई टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट आए। तो मुझे लगा कि भी अगर हम रिगार्डिंग हॉर्टिकल्चर अगर इसके अंदर किया जाए जिसके अंदर पानी भी बचाया जाए और वेस्ट को रिसाइकिल करके कुछ प्लांटर ऐसे बनाए जाए ताकि एक अनस्किल्ड लेबर भी और अनस्किल्ड लोग भी इसको इजिली टेकअप कर पाए और अपनी रोजगार को बढ़ावा दे पाए। तो ये सब चीजों का एक मिश्रण था जिससे हम एक अगले स्टार्टअप में पहुंचे और हमने स्पेशल प्लांटर्स बनाए जो कि एक एक हर किसान को जिसको नॉलेज भी नहीं है, कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसको भी हेल्प करते हैं।
0: बिल्कुल, ये तो बात हुई किस तरीके से देखिए आपका जो सफर है शुरू हुआ, लेकिन इस सफर में जब हम बात कर रहे थे अभी कि रफ्तार आपका जो कार्यक्रम था, ये रफ्तार जो है कहीं ना कहीं इसमें हमारी सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, इस बारे में डॉक्टर नीरू आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कृषि और युवा है वो सरकार की प्राथमिकताओं में से रहे हैं, तो उस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने किस तरीके से जो और कार्यक्रम है वो भी संचालित किए हैं।
2: जी हाँ, जैसे मैंने रफ्तार के बारे में बताया कि ये बहुत ही कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम है और ये स्पेशल एक स्कीम है जिसके तहत हम एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को और एक एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को इस देश के लिए तैयार कर रहे हैं। और जो मैं बताना चाह रही थी कि इसमें ये जो स्कीम है ये स्टार्टअप्स के लिए ही है, उनको ही प्रोत्साहन देने के लिए है और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफी मतलब काफी कॉम्पिटिटिव है, जिसमें हम सबसे पहले 5 क्राइटेरियाज हैं जिसके ऊपर हम स्टार्टअप्स को परखते हैं और फिर उनका सिलेक्शन करते हैं, जैसे कि क्या नीड क्या है और जो वो सोल्यूशन दे रहे हैं तो वो क्या अफोर्डेबल है, क्या उसमें इनोवेशन है, क्या नॉवल है, क्या नया है, क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्या ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और इसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, फिर ये टेक्निकली क्या ये सोल्यूशन बनाया जा सकता है, फिर ये स्केलेबल हो सकता है या नहीं और इसकी कितनी कमर्शियल पोटेंशियबिलिटी है, क्या मार्केट है। तो ये 5-6 पैरामीटर्स हैं जिन पे हम हर आइडिया को देखते हैं, हर प्रपोजल को इवैल्यूएट करते हैं और 3-4 लोग एक प्रपोजल को इवैल्यूएट करते हैं, कोई टेक्निकल एस्पेक्ट से, कोई बिजनेस एस्पेक्ट से, कोई इसके नॉवेल्टी के एस्पेक्ट से, सो तब जाकर के इनका सिलेक्शन होता है।
0: यानी जो एक तरीके के मानक हम मान सकते हैं जो कि निर्धारित किए जाते हैं और उन पर अगर आप खरे उतरते हैं, आपका जो स्टार्टअप है वो खरा उतरता है, तो फिर उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। यहाँ कुलदीप जी आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि कैसे कोशिश की जाती है जो हमारे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां भी मदद पहुंचाई जा सके, क्या एक क्रियान्वयन जो है वो हम मान सकते हैं कि जो नाबार्ड है अपनी तरफ से उसमें मदद करता है जो भी इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो।
1: मुकुल जी, नाबार्ड ने दूर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए एक कार्यक्रम चलाया है, एक उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्यक्रम है, दूसरा जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कृषक उत्पादक संगठन है और ये पूरे कंट्री में जो है फैले हुए हैं और एग्री स्टार्टअप जो है छोटे छोटे एग्री स्टार्टअप भी एक तरह के जो कि भारत सरकार की 10,000 FPO बनाने की स्कीम के अंतर्गत है
0: जी।
1: और इन स्टार्टअप को फर्दर सपोर्ट करने के लिए इनको एग्री इनक्यूबेशन बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एस्टेब्लिश किए हैं जहाँ पर कि छोटे छोटे जो उद्यमी है वो अपना आइडिया लाएं, उनको जो है पायलट करें और फिर मार्केट में जाएं, और उसके लिए फंडिंग नाबार्ड कर रहा है अपने एक कैटलिक कैपिटल फंड है और दूसरा जो है एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर प्रमोट करने के लिए फंड क्रिएट किया है
0: जी।
1: फर्दर जैसे कि बजट में भारत सरकार ने कहा है कि इस बारी किसान ड्रोन के बारे में बताया जाएगा
0: जी,
1: को बढ़ावा दिया जाएगा और दूसरा जो है नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे सिडबी में एक फंड ऑफ फंड है इनक्यूबेशन और इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए, नाबार्ड में भी एक फंड क्रिएट किया जाएगा जो कि फर्दर स्टार्टअप को और फाइनेंसिंग करने, क्योंकि शुरू में जो है ऋण के माध्यम से नहीं कर सकते, सिर्फ ग्रांट के माध्यम से ही एग्री स्टार्टअप हम कर सकते हैं
0: जी,
1: तो इसको सपोर्ट करने के लिए नाबार्ड ने एक बड़ा फंड क्रिएट करने का एक निर्णय लिया है।
0: बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण निर्णय हम मान सकते हैं क्योंकि कोशिश यही की जा रही है कि जो हमारे युवा हैं अगर उनको ना सिर्फ तकनीकी ज्ञान दिया जाए बल्कि उसके साथ साथ कैसे जो उनकी एक तरीके से जो हम कह सकते हैं उम्मीदें रहती हैं उनको भी पूरा किया जा सके, और जब नवाचार की हम बात करते हैं तो वहां और भी ज्यादा उम्मीदें बढ़ती नजर आती हैं और ना सिर्फ जो उनको पूरी जानकारी दी जाती है काफी बेहतर तरीके से होती है। यहां नितिन जी जानना चाहेंगे आपसे, जैसा आपने बताया कि किस तरीके से शुरुआत हुई, लेकिन अगर यहां हम बात करते हैं मदद की तो आपके सामने भी जाहिर तौर वहां पर कुछ चुनौतियां आपको नजर आई होंगी, वहां पर कहां से आपको मदद मिली?
3: सर मुझे स्टार्टिंग में तो हमने जब मैंने अपना आइडिया जब अपने बताया तो थोड़ा सा मेरे को रोड बैरियर्स आए, बट जब थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे सबसे पहला हाथ मेरा थमा आरके वीवाई रफ्तार के प्रोग्राम के थ्रू, जो जो चौधरी चरण सिंह निसार यूनिवर्सिटी में जो एग्री इंक्यूबेशन सेंटर है, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, तो वहाँ पे 25 लाख की ग्रांट के लिए हमने मैंने इसका फॉर्म भरा, और उनके बाद अच्छी काउंसलिंग से एक बड़ी एक्सटेंजेंट एक रास्ते से निकल के हमारा वहाँ सिलेक्शन हुआ, और वहां से हमें बहुत सारी एक मेंटरशिप मिली, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो एक स्टार्टअप को नहीं पता होती है, कौन से कंप्लायंस है नहीं पता होते, कैसे पेटेंटिंग करनी है वो नहीं पता होता, तो ये सारी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं एक बड़ी कंपनी बनने के लिए, एक अच्छा एक नाम बनने के लिए, तो जिसकी साथ हमें ये भी मिला, और साथ में 24 लाख रुपए की ग्रांट मुझे खुद को मिली है जिसको मैंने अपने बिजनेस में लगाने के बाद अपने प्रोसेसेस को बेटर किया है, एम्प्लॉयमेंट को बेटर किया है, और साथ के साथ ही अपनी जो जो आगे आने वाले जो अगले फ्यूचर हमारे प्लान्स हैं उसमें भी हमें बहुत सारा मिला है, सहायता भी मिली है, और उसके बाद आगे भी हमें क्षितिज 2022 में हम ऑलरेडी इंक्यूबेटेड हैं, IIT पूसा कृषि का ये प्रोग्राम है, तो ये अगर ये ना होता तो शायद हमें भी अभी हम कुछ बैठ चुके होते या बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते और कोई दोराहे पे होते जिंदगी के, आज हम दोराहे पे नहीं है, हमें हमारा लक्ष्य हमारे सामने है और हमारे को साथ पूरा मिल रहा है।
0: बिल्कुल देखिए, पूरा साथ मिल रहा है और उस लक्ष्य को पाने के लिए किस तरीके से किस रफ्तार से हमारे जो युवा हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और जैसा डॉक्टर नीरू यहाँ नितिन जी ने कहा कि अगर हमें इस तरह की मदद नहीं मिलती तो ना जाने कितने ही युवा हैं उनके सपने अधूरे रह जाते।
2: जी हाँ, तो चूंकि मैंने यही कहा कि ये जो भी ग्रांटी नेट सपोर्ट है ये शुरू में उनके जो चैलेंजेस हैं उनको उनके रास्तों को आसान करते हैं, क्योंकि हमें कृषि के क्षेत्र में इन युवाओं की जरूरत है, और हमें कृषि के क्षेत्र में अगर आप प्रोडक्शन से लेकर के जब फार्म टू फोक तक की अगर हम बात करें तो हमें हर दिशा में हर स्टेप पे हमें एक नई टेक्नोलॉजी चाहिए, और ये युवाएं नई नई सॉल्यूशंस लेकर के आ रहे हैं, और इनका अब किस तरीके से अडॉप्शन होगा, किस तरीके से ये कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी होगी, और किस तरीके से ये हमारे फार्मर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं।
0: और सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं कुछ अगर आड़े आता है तो वो होता है कि आर्थिक मदद आपको नहीं मिल पा रही है, और जैसा नितिन जी ने भी कहा कि उनको भी जो ग्रांट है उसका लाभ मिला, और आपने बताया करीब 800 से ज्यादा ऐसे हमारे जो स्टार्टअप है उनको करीब 5 से 25 लाख के जो अमाउंट है वो दिया गया, कुल अगर आप बताना चाहें इसमें
2: कुल तकरीबन हम कह सकते हैं कि 60 करोड़ के आसपास पिछले 2 साल के अंदर स्टार्टअप्स को ग्रांटी नेड की मदद दी गई, जो कि एक काफी बड़ी अमाउंट है, और आने वाले सालों में ये और भी बढ़ेगा।
0: जी, ना सिर्फ एक बड़ी रकम बल्कि एक बड़ी उपलब्धि हम मान सकते हैं। देखिए किस तरीके से जो लक्ष्य ना सिर्फ एक या दो युवाओं का है, सभी का एक लक्ष्य, उसको हासिल करने के लिए किस तरीके से जो वित्तीय सहायता है वो लगातार दी जा रही है, और कोशिश यही कि ना सिर्फ हमारे जो देश के युवा हैं वो ज्यादा से ज्यादा एग्री स्टार्टअप यानी कृषि स्टार्टअप में अपनी रुचि लें और स्टार्टअप से जुड़कर, क्योंकि स्टार्टअप एक है लेकिन उसके फायदे अनेक हैं, तो उस बात को समझें और लगातार इस दिशा में आगे बढ़ सकें। हम भी फिलहाल यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।
5: पूजा भाती भाती कोर्तला मु झाड़े बोईड़ा दोगड़ा पानी ये सब आमरा छे, इनु क्वाचाड़ीन राखनो अपनी जवाबदारी छे, योगी इनु पर आधारित छे ती संभव भाष्य।

0: ब्रेक ने बाद एक बारी फिर था बहुत बहुत स्वागत करिए हैं तमार सबुनो रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम पर इना खेतीबाड़ी कार्यक्रम में। किसान भाइयों आपू ये हमने एक सुंदर सू प्यारों सू भीली गीत ने हमलियो इना गीत ने बाद आपू अपनी चर्चा ने आगे बढ़ाई अने हमनी स्टार्टअप थी जोड़ेली हजू महत्वपूर्ण जानकारियों ने कि कम स्टार्टअप करीने आपड़ो युवा जो हमने आपड़ देश नो युवा है वो आपड़ कृषि में कि कम आगाड़ी बढ़ी सके, आपड़ो किसान इनी कृषि में कि कम आगाड़ी बढ़ी सके, कहीं ना हजू आवा वाला समय में कहीं ना मौका है आपड़ा भविष्य ने सुनहरो बनावाना।
1: लगातार जब इस तरह की बातें सामने आती हैं, स्टार्टअप की बात कहते हैं, एग्री स्टार्टअप की बात कहते हैं, तो ये सिर्फ बातें नहीं है, महज बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो जमीनी स्तर पर भी काम हो रहा है और ये काम सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं बल्कि दूर दराज के जो हमारे गाँव हैं वहां तक भी ये काम पहुंच रहा है। यहाँ कुलदीप जी जानना चाहेंगे आपसे हम, जिस तरीके से आपने बताया कि कैसे कोशिश की जाती है, लेकिन एक सीधे तौर पर अगर कोई युवा है वो चाहते हैं कि एक एग्री स्टार्टअप उनका है उसमें उनको मदद मिले, तो क्या वो खुद से भी आपके पास किस तरह का जो आवेदन है कर सकते हैं या बतौर चयन करने के बाद ही जो सारी मदद है एक स्टार्टअप को दी जाती है?
2: अगर कोई युवा अपना एग्री स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है और वो कुछ उसके पास आइडिया है तो जो एग्री इनक्यूबेशन सेंटर नबार्ड ने सपोर्ट किया है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर वो ऑनलाइन भी आवेदन कर सकता है, यहाँ वहाँ फिजिकली जाके भी संपर्क कर सकता है और वहाँ पर अपना आइडिया आवेदन देने के बाद जो है और भी डिफरेंट फोरम है जैसे फिडबी का ऑनलाइन वो अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह अटल इनोवेशन मिशन है वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं
1: जी,
2: और नबार्ड भी वो बता सकते हैं कि वो उनको जो है एग्री स्टार्टअप करना है उसके लिए गाइडेंस चाहिए, तो हम भी उनका जो है आवेदन पे विचार करके उसको जो है एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर में फॉरवर्ड कर देंगे
1: जी।
2: और उसके बाद एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन स्क्रीन करेगा कि ये आइडिया फर्दर आगे ले जाने लायक है या नहीं, और उसके बेस पे उसको पहले तो टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत, देन ब्रांडिंग मार्केटिंग और हर तरह की जो भी सपोर्ट की जरूरत होगी उस एग्री स्टार्टअप को प्रदान की जाए अंटिल वो एक रिफाइन होके मार्केटेबल और ऐसा प्रोडक्ट बने जो कि वाइडली एक्सेप्टेबल हो
1: जी। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से कोशिशें की जाती हैं, इस बारे में डॉक्टर नीरू आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर सबसे ज्यादा एक ज्यादा रुझान जो है वो किस तरह के बिजनेस प्लान जो है वो उसमें युवाओं का नजर आता है, और जो अभी कुलदीप जी जैसा कहा कि ना सिर्फ एक जो आइडिया है उसको पॉलिश किया जाता है बल्कि उनको सारी अगर हम तकनीकी ज्ञान की बात करते हैं या इसके बाद उनको कैसे और ज्यादा उनकी स्किल को इम्प्रूव करना है और यहां तक कि उनके जो प्रोडक्ट है उसकी ब्रांडिंग या मार्केटिंग कैसे ये सारी जानकारी जो है मुझे होती है
3: जी। जैसा आपने कहा कि किस तरीके का, तो ये बड़ा ही अच्छा ट्रेंड हमको देखने में मिलता है कि पहले अगर 19 की मैं बात करूं तो ज्यादातर लोग फार्म मैकेनाइजेशन पे बात कर रहे थे, 20-21 में चूंकि सप्लाई चेन हमारी डिस्टर्प्टेड थी तो हमने इसमें भी रुझान देखा कि सप्लाई चेन की तरफ जो है वो ज्यादा एप्लीकेशन थे, और इस साल अगर हम बात करें तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर के ऊपर स्टार्टअप्स के एप्लीकेशन सबसे ज्यादा आए और सिलेक्शन भी उनके हुए, और जिसमें उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट का हम सेक्टर ले सकते हैं कि उसमें पोस्ट हार्वेस्ट के प्रोडक्ट्स भी और टेक्नोलॉजीज भी
1: जी।
3: तो और तीसरा जो सबसे अच्छा सेक्टर उभर कर आया वो एलाइड एग्रीकल्चर, जिसमें मैं बात कर सकती हूँ कि एग्री एनिमल हस्बेंड्री की, डेयरिंग की, फिशरिंग की, सो जो हमारे जिस तरीके से हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो स्टार्टअप्स भी उसी क्षेत्र में उस साल ज्यादा एप्लीकेशन हम रिसीव करते हैं
1: जी।
3: और जहां तक बात है कि हम उनको वित्तीय सहायता तो देते ही हैं, जो मैंने कहा कि ग्रांटिंग एड का सपोर्ट है, लेकिन उससे ज्यादा जो हम उनको तैयार करते हैं कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी वैलिडेशन का काम, उनकी टेक्नोलॉजी में अगर उनका कोई ग्लिच है तो उसके ऊपर काम, क्योंकि जब ये बच्चे ज्यादातर टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो कई बार वो टेक्नोलॉजी तो बना लेते हैं लेकिन उसको एग्रीकल्चर में खेत के अंदर वो मशीन चलेगी या नहीं चलेगी, तो ये सारी वैलिडेशन में हम उनकी काफी मदद करते हैं
1: जी।
3: फिर उसके बाद क्योंकि वो कभी बच्चे गए नहीं होते, ये स्टार्टअप्स कभी उन्होंने फार्मर से बात नहीं की होती, तो हम उनको फार्मर्स तक भी लेके जाते हैं ताकि वहां वो अपनी मशीन को या अपना जो भी प्रोडक्ट है वो फार्मर के सामने रख सके और ताकि फार्मर ये देख सके, तो वो बड़े अच्छे अच्छे उनसे प्रश्न पूछता है तो जिससे स्टार्टअप अपना रिफाइंड करता है सोल्यूशन, और फार्मर्स को भी ये जानकारी हो जाती है कि इस तरीके की मशीनें हैं, तो दोनों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा काम करता है। तीसरा जो एक बहुत बहुत हमारा ये तकरीबन 2 महीने का एग्रेसिव प्रोग्राम रहता है जब हम उनको लेते हैं, तो उसके अंदर पूरे 9 जो हफ्ते होते हैं तो हर हफ्ता एक टॉपिक पे डेडिकेटेड होता है कि एक में हम उनके लिए इंटेलेक्चुअल बौद्धिक संपदा के ऊपर बात करेंगे, फिर फाइनेंस पे बात करेंगे, फिर हम उनको इन्वेस्टर्स तक भी लेके जाएंगे, फिर हम मार्केटिंग पे भी बात करेंगे। तो इस तरीके से हर हफ्ते में फिर हम उनको गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ भी जोड़ते हैं, जैसे जेम की स्कीम पे आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर चूंकि रेगुलेशन एक बहुत बड़ा आस्पेक्ट है कि कहीं जैसे बायोफर्टिलाइजर्स हैं या बायोस्टिमुलेंट्स हैं, तो अभी नया गजट नोटिफिकेशन लास्ट ईयर आया था तो उसके तहत उनको उसमें रजिस्ट्रेशन कराना है, तो या मतलब अगर किसी को सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है तो उससे पहले उनको किसी सेंटर में जाकर के उसका वैलिडेशन कराना होगा, टेस्टिंग रिपोर्ट लेनी होगी। तो इस तरीके से रेगुलेटरी कंप्लायंसेस पे भी हमारा काफी जोर रहता है। दूसरे हम अपने रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में जोड़ देते हैं ताकि वहां पे उनको वैलिडेशन में, फील्ड ट्रायल्स में। तीसरी जो एक बहुत ही अहम बात है वो कॉर्पोरेट्स के साथ, इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट। तो वो एक बहुत, क्योंकि एक तो जब हम इंडस्ट्री के साथ, उनकी जो फील्ड में है उस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करते हैं, जहां पर एक तो उन्हें उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में जानकारी मिलती है कि इंडस्ट्री कैसे सोच रही है, इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, या ये चलेगा या नहीं, या कुछ बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं तो कुछ इंडस्ट्री वाले उनको अपने मार्केट चैनल में स्कोप दे देते हैं कि ठीक है जी, आपकी ये मशीन बहुत अच्छी है तो हमारे इतने सेंटर्स में आप ये मशीन रखिए। तो इस तरीके से उन्हें मार्केटिंग पार्टनर भी मिल जाते हैं। मतलब कोई एक ऐसा सेट पैटर्न नहीं है, जिस स्टार्टअप की जैसी नीड होती है और जो रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से हर एक की नीड कस्टमाइज बेस्ड प्रोग्राम्स रहते हैं और उन्हीं की नीड के हिसाब से हम उनको कनेक्टिविटी करते हैं।
1: बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से एक महत्वपूर्ण माध्यम हम मान सकते हैं और लगातार जिसके जरिए कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो युवा हैं वो भी जुड़ते हैं। फिर उनका चयन करने के बाद कोशिश यही कि एक बार जो सफर शुरू हुआ वो खत्म नहीं होता, बल्कि उनको और लगातार ऊंची उड़ान जो है वो भरने के लिए यहाँ जो पंख है उनके और मजबूती लगातार मिलती है। नितिन जी, यहाँ आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने हमें बताया कि कोशिश आप पहले से कर रहे थे लेकिन उसके बाद जब आप खासतौर से पूसा कृषि से जुड़े उसके बाद और ज्यादा जानकारी आपको मिली, लेकिन आज के समय में शायद और भी कई ऐसे युवा होंगे जो आपसे जुड़ने की इच्छा रखते होंगे या आपके पास आते होंगे जानकारी लेने के लिए।
4: अभी हम रिसेंटली हमने परसों एक एग्जीबिशन खत्म हुआ है हमारा, दिल्ली मिलिट्री में हमारा 2 दिन का एग्जीबिशन था। हमारे प्रोडक्ट के देखने के बाद हमारे एक्चुअली कॉन्सेप्ट, वहाँ प्रोडक्ट की बात नहीं हुई, वहाँ ज्यादा कॉन्सेप्ट की बात हुई, जिसके को देख के हमारे साथ बहुत सारे युवा जुड़ भी रहे हैं और आगे भी जुड़ना चाह रहे हैं। कॉन्स्टेंटली हमारे पास कॉल आ रहे हैं कि आप बताइए हम कैसे कर सकते हैं, मैं ये एक्सपर्टीज लेके आता हूँ या मैं एक सी एक्सपर्टीज लेके आती हूँ। और इवन बॉम्बे से, पौंडीचेरी से कुछ हमारे साथ युवा जो जुड़ना चाह रहे हैं और बहुत जल्दी हम एक उनके साथ बैठ के हम क्या आगे कर सकते हैं मिलके, वो हम इसको आगे डिसाइड करेंगे। फिर परसों ही एग्जीबिशन खत्म हुआ है। तो एक आपको एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा सर, यहाँ पे अभी जैसे जो कुलदीप जी ने कहा और नीरू जी ने कहा कि भी हम ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उस पर जीता जागता उदाहरण हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही नीरू मैम से भी मैं क्लास में था इनकी, और अंडर हर मेंटरशिप एंड अंडर हर गाइडेंस, और 15 तारीख को कुलदीप जी भी हमारे यहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी कंज्यूमर एक्सपीरियंस सेंटर में विजिट करके गए हैं। तो सिर्फ सपोर्ट ही बहुत अच्छा कॉन्स्टेंटली प्रो एक्शन है जिसके कारण हमें बहुत उड़ान की जो आपने बात की वो हमें देखने को मिल रही है बहुत जल्दी।
1: जी बिल्कुल, उड़ान और उसके साथ साथ एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो जाहिर तौर पर आपके जरिए मुझे देखने को यहाँ मिल रही है। कुलदीप जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे अभी यहाँ पर नितिन जी ने भी इस बात का जिक्र किया, लेकिन जब हम कोशिश करते हैं कि नई योजना या कोई आइडिया है उस पर हमें कार्य करना होगा, तब वहां कौन से ऐसे मुख्य बिंदु आपको नजर आते हैं कि जिन पर पहली कोशिश ये होती है कि यहां से एक जो पॉलिशिंग वर्क है वो शुरुआत हो जाए।
2: कोई भी एक्टिविटी है, चाहे एग्री स्टार्टअप है, उसको फील्ड तक ले जाने के लिए फाइनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और दूसरा कैपिटल, जो भी एग्री स्टार्टअप है कैपिटल इंटेंसिव चीजें हैं, और आम फार्मर, क्योंकि हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, छोटे फार्मर बहुत है, तो वहां तक वो पहुंचना बहुत ही एक चैलेंजिंग है। और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए नबार्ड इन एग्री स्टार्टअप को पूरा सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, और फार्मर्स को भी आपस में जोड़ता है, ताकि एक दो फार्मर जो बड़े फार्मर है वो तो कर सकते हैं, परंतु जब स्मॉल फार्मर्स है 100,000 उनको जो इन एग्री जैसे ड्रोन है, अगर ड्रोन इंडिविजुअल फार्मर्स के बस का नहीं है अगर उसको पेस्टिसाइड स्प्रे करना है, परंतु अगर ग्रुप में करेंगे तो एफपीओ के माध्यम से और दूसरे माध्यम से जो है ये काफी इकोनॉमिकल बैठेगा, और इसमें जो है नबार्ड अपना जितना भी ग्रांट सपोर्ट है, जो भी कार्यक्रम है, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप का कार्यक्रम है, एफपीओ का कार्यक्रम है, उसके माध्यम से ये फार्मर्स तक एंड टू एंड ले जाएगा, और जो भी तकनीकें हैं, चाहे आप देख लीजिए मिट्टी का जो एक तरह से कितना न्यूट्रिएंट्स है उसके बारे में जो है थ्रू टेक्नोलॉजी बता सकते हैं, परंतु इंडिविजुअल फार्मर्स को शायद वो मुश्किल हो जाएगा, परंतु हम अपने ग्रांट सपोर्ट से सपोर्ट करते हैं कि वो इन चीज़ों के न्यूट्रिशन सॉयल न्यूट्रिशन के बारे में, क्रॉप हेल्थ के बारे में जाने, और कितना वो जैसे प्रिसीजन फार्मिंग जो है कितना उसको अमाउंट फर्टिलाइजर चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, और ऑटोमेटेड ये चीज़ें छोटे से छोटे फार्मर तक पहुंचे, और फ्यूचर इन्हीं चीज़ों का है, और इनको प्रमोट करने के लिए नबार्ड ने एक पहल की है, और फर्दर हम इस जो भी फंड क्रिएट करेंगे उस फंड के माध्यम से इस तरह के एग्री स्टार्टअप को फ्यूचर में और फार्मर्स तक दूर दूर तक ले जाएंगे, ताकि इन स्टार्टअप का रियली में फायदा पहुंचे और रोजगार भी हो ग्रामीण क्षेत्रों में, और जो युवा है उसको एग्रीकल्चर में दोबारा इंटरेस्ट जागे।
1: बिल्कुल, देखिए फायदा तो हो ही रहा है, ना सिर्फ नितिन जी हमारे सामने को बेहतर उदाहरण है, बल्कि और भी कई ऐसे युवा हैं जो कि लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि ना सिर्फ उनका आर्थिक तौर पर विकास हो सके, बल्कि हमने देखा है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पूरी तरीके से जो बदलाव है वो देखा जा रहा है स्टार्टअप की वजह से। और खासतौर से डॉक्टर नीरू, अगर हम देखते हैं तो कृषि क्षेत्र में कई तरह की जो चुनौतियां हैं वो किसानों के सामने रहती थी, तो उन्हीं चुनौतियों को कोशिश अब की जा रही है कि एक मजबूत कड़ी जो है वो बना दिया जाए, अलग अलग कड़ियों को जोड़कर, उसी में शायद एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है ऐसी ही हमारी एग्री स्टार्टअप की है।
3: जी बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके की चुनौतियां किसान को आती हैं, जैसे सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं एक उदाहरण के तौर पे, जैसे हमारा एक स्टार्टअप है किसानों के खेतों में नील गायें या इस तरीके के जो फॉरेस्ट एरिया के आसपास तराई में, तो वहां पे काफी जो जंगली जानवर हैं वो आते हैं और फसल खराब करते हैं। तो इसी तरीके से एक स्टार्टअप ने ऐसा ही एक छोटा सा यंत्र बनाया है जो कि जानवरों को वो अलग अलग मतलब रात में भी दिन में भी वो ना तो जानवरों को हार्म करता है ना ही फसल को हार्म होने देता है, जिससे कि वो उसको सेंस कर लेता है कि जानवर आ रहा है और फिर वो उस तरीके की साउंड सिस्टम और या लाइटिंग पैटर्न इस तरीके से करता है कि जो जानवर है वो दूर चला जाता है।
1: जी, सजग करेगा हमें भी और जो जंगली जीव वगैरह आ रहे हैं,
3: जंगली जीव को भी वापस भेज देगा, क्योंकि जंगली जानवर भी लाइटिंग के पैटर्न से ये उसने आइडेंटिफाई किया और फिर जो साउंड के पैटर्न से, और वो साउंड और लाइटिंग का पैटर्न बदलता रहता है बार बार ताकि वो अडेप्ट ना हो। तो इस तरीके से ये एक बड़ी छोटी सी बात करी, जैसे अभी हमने कोविड के दौरान देखा कि फार्म मैकेनाइजेशन जो लेबर की प्रॉब्लम थी और फार्म मैकेनाइजेशन हमारी एक रिक्वायरमेंट है, तो हमने देखी कि डिफरेंट मशीन्स, जैसे अभी एक पोटैटो के हार्वेस्टर कंबाइनर जो उसको हार्वेस्टिंग भी करती है, फिर उसको साफ भी करती है, फिर उसको भोरी में भी भरती है, सो एक कंबाइंड मशीन है जो कि लो कॉस्ट है। इसी तरीके से जैसे एक जो शुगर केन की जब हम बिजाई करते हैं तो काफी एक एक फिट का हम लोग गन्ना काटते हैं वो लगाते हैं, तो उन्होंने छोटे छोटे स्टॉक्स बनाए जिसमें कि काफी वो तकरीबन 4% ही गन्ना लगता है, तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या बीज की जो कॉस्ट है वो काफी कम हो जाती है, यूटिलाइजेशन हमारा ज्यादा
1: हमारी हो जाती है।
3: जी सो इस तरीके से ऐसे ही कई हैं, और उसके बाद जैसे पोस्ट हार्वेस्ट के दिशा में कुछ पोस्ट हार्वेस्ट की टेक्नोलॉजीज हैं, जो मशीनरीज हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज की लो कॉस्ट कोल्ड स्टोरेज है, ऑनियन के लिए एक स्पेशल कोल्ड स्टोरेज बनाया है जिसकी कॉस्ट तकरीबन 3-4 लाख है, और जैसे एफपीओ का हम कंसेप्ट जो लेकर के आए हैं, बेसिकली आने वाले दिनों में हम ये देख रहे हैं कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी जो स्टार्टअप्स बना रही हैं और एफपीओ का कनेक्ट, मीन्स एफपीओ को वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी चाहिए और स्टार्टअप के पास वो टेक्नोलॉजी है, तो तो आने वाले दिनों में ये दोनों का कनेक्शन, एफपीओ और स्टार्टअप का कनेक्शन, एक नया रूप लेगा
1: जी।
3: और जिससे कि किसानों को बहुत कम लागत पर और नई तकनीकें मिलेंगी और तब हमारी खेती में भी हम खुशहाली की दिशा में आगे बढ़ेंगे
1: जी।
3: और जो हमारी गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि डबलिंग द फार्मर इनकम, तो मेरे ख्याल से जब ये दोनों लोग आपस में मिलेंगे जुड़ेंगे तो नई नई तकनीकों का आदान प्रदान होगा और जो फार्मर को जैसे लो कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, उसकी लागत भी कम होगी और जो पोस्ट हार्वेस्ट हार्वेस्टिंग के बाद जो उसकी लागत का अच्छा दाम भी मिलेगा,
1: ये सारे तो फायदे किसानों को हो सकें। देखिए और सबसे बड़ा फायदा जो यहाँ नजर आता है, किसान को यही जरूरत होती है कि कैसे उसकी लागत कम हो सकती है। लागत जैसे ही कम होगी मुनाफा आपका अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा और जो हमारे एग्री स्टार्टअप है उनको एक समय में देखिए एफपीओ से जुड़ के कितने सारे जो किसान है वो मिल सकते हैं, यानी उनके लिए भी ये एक बेहतर अवसर हो सकता है। नितिन जी आप कितना सहमत है इस बात से कि जो हमारे एग्री स्टार्टअप्स हैं वो अगर एफपीओ से जुड़ेंगे या जो एफपीओ में जितनी भी अगर कुछ समस्याएं आती हैं उनके सामने जो चुनौती है अगर वो एग्री स्टार्टअप से जुड़ जाते हैं किस तरह का वहां पर अगर उनका गठजोड़ होता है तो कितना बेहतर रहेगा ये कृषि के लिए?
4: सर मैं आपको छोटी सी बात इस तरीके से कहना चाहूंगा इसको कि आज की डेट में हम हर चीज की बात कर रहे हैं प्लेटफॉर्म
1: जी,
4: जिसकी भी चीज में हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, हर चीज को आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो एक जो एफपीओ का जो गठजोड़ है ये हमारे जैसे एग्री स्टार्टअप के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिनके साथ हम जुड़ के हम एक दूसरे को सशक्त कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए काम कर सकते हैं और जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज है, जो डबलिंग द फार्मर्स इनकम है उसके अंदर भी कर सकते हैं और डाइवर्सिफिकेशन भी की जा सकती है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो द की थिंग अगर हमें फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, तो जिसके अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का यूज करके एफपीओ को एज अ प्लेटफॉर्म यूज करके हम स्टार्टअप आगे बढ़ सकते हैं और जिसका फायदा एक चौतरफा विकास होगा इसके अंदर। सर
1: बिल्कुल चौतरफा विकास और साथ ही सबका साथ सबका विकास भी, लेकिन जो एक बात आपने कही विविधीकरण जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से अभी आज का समय चल रहा है कई चुनौतियां भी रहती हैं, इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे और बताएंगे कि किस तरह का आने वाला जो भविष्य है वो और बेहतर नजर आ रहा है, ना सिर्फ कृषि का बल्कि जो एग्री स्टार्टअप हैं उनका भी।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: का जो फायदा है वो होने लगता है ना सिर्फ एक गांव में, एक ब्लॉक में, एक जिले में, बल्कि हमारे देश में भी अगर बात की जाए तो हजारों की संख्या में अलग अलग जो स्टार्टअप्स हैं वो काम कर रहे हैं बहुत बेहतरीन। और ये जो काम है सिर्फ घरेलू स्तर पर नहीं है बल्कि धीरे धीरे अपनी पहुंच बना रहा है वैश्विक बाजार में भी। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये स्टार्टअप जो है आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन यहां ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर नीरू, जो नितिन जी उन्होंने जिक्र किया विविधीकरण का, सरकार का भी मानना यही है कि हमें कृषि में विविधीकरण को अपनाना होगा और उसके साथ मूल्य संवर्धन जैसी जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनकी तरफ आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ क्या हम मान सकते हैं जो एग्री स्टार्टअप हैं उसी पर लगातार काम कर रहे हैं एक तरीके से?
2: जी बिल्कुल, विविधीकरण एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है जिसमें एग्री स्टार्टअप्स भी काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जैसे अगला साल इंटरनेशनल ईयर जो मिलेट है, सो हम काफी स्टार्टअप मिलेट के देखते हैं जो ना केवल उनकी प्रोडक्शन और बायबैक की किसानों के साथ वो जुड़ते हैं, जहां पे वो उनकी एग्रो मींस की प्रैक्टिसेस की जिससे कि वो ज्यादा पैदावार ले सके। और पर उनसे वो ज्यादातर क्या होता था कि मिलेट धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था क्योंकि कोई खरीददार नहीं था। पर अब ये लोग स्टार्टअप्स ने चूंकि बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं मिलेट बेस्ड जो रेडी टू कुक हैं, रेडी टू ईट हैं, सो वो इनसे फार्मर से लेते हैं और फिर उनसे उनकी प्रोडक्शन भी कराते हैं और उनसे खरीदते भी हैं।
1: और इन दोनों तरह के उत्पादों का निर्यात हमने इस बार देखा है वो काफी बड़ा है।
2: जी जी, तो इस तरीके से एक आम आदमी की प्लेट में भी विविधीकरण हमें भी जो अच्छे जो मिलेट्स खाने के लिए तो अच्छे हैं ही और उनकी डाइजेस्टिबिलिटी और उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी काफी है और स्टार्टअप इसमें काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और साथ ही एक नया आ रहा है कि जैसे AI और ML की बात हम कर रहे हैं जिसमें फोरकास्टिंग कि कब ये अगर डिजीज का कोई अटैक होने वाला है, कुछ ऐसी तकनीकें सामने देखने में मिल रही हैं जो तकरीबन 10-15 दिन पहले फार्मर्स को अलर्ट कर देंगी कि इसमें ये अटैक होने वाला है या आसपास के एरिया में ब्रेक हो रहा है, तो उससे भी वो काफी समय रहते अपनी खेती का बचाव कर सकते हैं।
1: यानी आधुनिक कृषि की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे एग्री स्टार्टअप भी देखिए किस तरीके से उस आधुनिकता को और ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश में लगे हुए हैं, सिर्फ इसके लिए कि जो हमारे किसान हैं उनको फायदा हो सके, चौतरफा विकास हो सके कृषि क्षेत्र का और हमारे जो किसान हैं उनका आर्थिक विकास भी हो। यहाँ कुलदीप जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे आने वाले समय को अगर देखा जाए किस तरह का और बेहतर भविष्य जो है वो नजर आता है आपको इन एग्री स्टार्टअप्स का?
3: मुकुल जी, भविष्य टेक्नोलॉजी का है। जैसे कि आपको पता है हर किसान के पास स्मार्टफोन है और आज जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। इसी तरह एग्रीकल्चर में जो रिफॉर्म होना है जो कि 3 लॉ भारत सरकार ने लाए थे उसी में मार्केटिंग और दूसरी चीज़ें भी एग्रीकल्चर की वृद्धि के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और फ्यूचर एग्री स्टार्टअप का इसलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी एग्री स्टार्टअप के पास है और फार्मर्स को उसकी ज़रूरत है। सिर्फ हमें जो बीच का फासला है वो गवर्नमेंट एजेंसी, प्राइवेट इन्वेस्टर, उनको आके ये अंत तक इन एग्री स्टार्टअप को फार्मर्स तक ले जाना है ताकि ये जो स्टार्टअप है फ्यूचर में एक तो डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम करें और दूसरे उनका जो है फर्दर जो टेक्नोलॉजी एग्री स्टार्टअप को टेक्नोलॉजी प्रॉपर फार्मर्स को टेक्नोलॉजी मिले एंड जो भी फाइनेंसिंग नबार्ड देगा और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट देंगे और एग्री स्टार्टअप्स के माध्यम से एक तो रोजगार पैदा होगा क्षेत्रों में और दूसरे जो भी समस्याएं हैं एग्रीकल्चर की उन पे उनको भी हम काफी हद तक समाधान कर पाएंगे।
1: जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से जो समस्याएं हैं चुनौतियां हैं उनका समाधान अब हमारे जो एग्री स्टार्टअप्स हैं वो ढूंढने में लगे हुए हैं। और यहाँ नितिन जी आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, आप तो लगातार आगे बढ़ ही रहे हैं और आपके साथ और भी कई ऐसे युवा हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय को अगर देखा जाए आप किस तरह का बदलाव देखना चाहते हैं?
4: हमारी जिस तरीके से हमारी ईटिंग हैबिट्स बढ़ रही हैं, जो बदल रही हैं, लोग आज की डेट में ऑर्गेनिक फूड की तरफ बढ़ रहे हैं
1: जी,
4: तो एक मेरा मानना यह है कि अ डिजाइनर रिस्पॉन्स टू अ सोशल चेंज। अब हमारा वो सोशल चेंज आ गया है तो उसके लिए हर तरीके का डिजाइन बदलना पड़ेगा। डिजाइन में सिर्फ चीजों की शेप बदलना नहीं, डिजाइन हमारा एक टोटल डिजाइन है। तो इस ये जो आने वाली जो लहर है इसको देख के हमें ये लगता है कि आने वाला टाइम में जो हम जो एग्री स्टार्टअप्स और भी स्टार्टअप्स जो हैं, पर खासकर जो एग्री स्टार्टअप्स हैं, दे आर गोइंग टू बी अ पिवोटल पॉइंट, एक पिवट पॉइंट क्रिएट करेंगे और आगे सस्टेनेबिलिटी के अंदर एक हम बहुत ही बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो हम रोल प्ले करेंगे इस आने वाले टाइम में। और अब जिस तरीके से हमारी

0: बदलाव की लहर पैदा करता है और 10 से 11 लोग उसके स्टार्टअप में डायरेक्टली उसको वो एम्प्लॉय करता है. सो इसलिए, और ये स्टार्टअप ऐसा नहीं है कि ये शहरों में है, ये स्टार्टअप देश के हर कोने में है, टायर 2 टायर 3 सिटी में है. और चूंकि अगर इन्हें एग्रीकल्चर में काम करना है तो फार्मर के पास तक इनको जाना ही होगा. तो वो सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी के साथ ही नहीं जाते हैं बल्कि उनके साथ इन्फॉर्मेशन के साथ जाते हैं. तो ऐसी, तो इस तरीके से ये एक बदलाव की बहुत बड़ी कड़ी है. और जब हम सारे लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, चाहे नाबार्ड है या इंक्यूबेटर है या सरकार के जो अलग अलग जो स्कीम्स हैं उनके माध्यम से जो एक एनवायरमेंट क्रिएट हुआ है और जिसमें एक अहम जो मेजर भूमिका स्टार्टअप्स की है, हम सारे फैसिलिटेटर का रोल कर रहे हैं बट ज्यादातर इन्हीं की अहम भूमिका है. और हम इनको जब फैसिलिटेट करते हैं तो एक इकोसिस्टम बनता है, उस इकोसिस्टम में सारे लोग ग्रो करते हैं, फार्मर भी ग्रो करता है, सोसाइटी भी ग्रो करती है, स्टार्टअप्स भी, आज ये स्टार्टअप है कल को ये कॉर्पोरेट बनेंगे. जैसे अगर आप देखें तो पिछले एक साल के अंदर अभी हमारे डेका मतलब 10 बिलियन डॉलर्स की उनकी वर्थ यूनिकॉर्न नहीं है, वो डेका यूनिकॉर्न्स बन गए हैं. तो अगला यूनिकॉर्न हम देखना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आए और बहुत ही जल्दी आए. उसके लिए ये पूरा राष्ट्र जो है बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है. तो हम
1: इंतजार भी और उसके साथ साथ प्रयास भी किया जा रहा है.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: और खासतौर से जैसे कि आपने जिक्र किया था रफ्तार का या उपजा की हम बात करते हैं और कृषि हैकाथॉन जैसे जो कार्यक्रम है वो लगातार संचालित.
0: जी जी, वो सारे ही, क्योंकि लास्ट ईयर हमें हैकाथॉन हम लोगों ने किया जिसमें तकरीबन बहुत हमने नई नई इनोवेशन देखे और उन इनोवेशन को फिर हमने अपने रेगुलर इंक्यूबेशन प्रोग्राम में लिया, वहां से हम लोगों ने उनको आइडेंटिफाई किया और अब हम उनको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और डिफरेंट उनके कनेक्शंस कर रहे हैं. और मैं उम्मीद करती हूं कि जल्दी ही ये रफ्तार ऑलरेडी रफ्तार पकड़ चुकी है बट अब ये और आगे रफ्तार पकड़ेगी और इस देश के सोशल इंजीनियरिंग में और यहाँ की किसानों की आमदनी बढ़ाने में और बढ़ोतरी करने में चारों तरफ से हम लोग इसमें सहभागिता वो अपनी निभाएंगे.
1: तो देखिए, ना सिर्फ आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, एक सर्वांगीण विकास जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है हमें इन कृषि स्टार्टअप से. और जैसा कि यहाँ कुलदीप जी आपने शुरुआत में ही कहा था कि जो वित्तीय सहायता होती है वो काफी महत्वपूर्ण होती है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में इसका दायरा भी बढ़ाया जाएगा.
2: निश्चित रूप में, क्योंकि मैं बताऊं आपको कि 2004 में हमने वेंचर कैपिटल के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना शुरू कर दिया था. 2016 में नबार्ड वेंचर्स करके एक सब्सिडरी नबार्ड ने बनाई जो कि सिर्फ एग्री स्टार्टअप और इस तरह के वेंचर्स को फाइनेंस करती है. और इसी तरह फर्दर नबार्ड प्रपोज कर रहा है कि एक बड़ा फंड ऑफ फंड आए जो कि इनोवेशन और एग्री स्टार्टअप्स को प्रमोट करे और फ्यूचर में जितने भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड और एग्री स्टार्टअप जैसे कि यूनिकॉर्न की बात हो रही है, तो एग्रीकल्चर ऐसी चीज है कि जिसमें यूनिकॉर्न बन सकता है, इतनी बड़ी मार्केट है.
1: बिल्कुल.
2: और यूनिकॉर्न बनाने के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए सभी प्लेयर्स हैं और पेंडेमिक ने सिखा दिया कि सब कुछ बंद हो सकता है बट एग्रीकल्चर बंद नहीं हो सकता और ये ऐसी चीज है जो कि फ्यूचर में भी रहेगी.
1: बिल्कुल, एक बहुत सही बात आपने आखिर में यहाँ कही कि हमने देखा कि किस तरीके से कोरोना कालखंड में भी लगातार सारे जब क्षेत्र बंद थे तो वहां पर अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ कही जाती है कृषि, वो मजबूती के तौर पर रही और उसी मजबूती का फायदा हम देख पा रहे हैं कि अब भी कृषि क्षेत्र को लगातार मिल रहा है, फिर चाहे हम घरेलू स्तर पर देखें या वैश्विक बाजार की जब भी बात कही जाती है. तो जाना आपने कैसे हमारे जो एग्री स्टार्टअप हैं ना सिर्फ रोजगार सृजन कर रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं सामाजिक विकास की, एक ना सिर्फ क्षेत्र का विकास बल्कि पूरे जब देश के विकास की बात कही जाती है तो वहां भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और आने वाले समय में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे जब यही एग्री स्टार्टअप हमारे देश के अलग अलग जो FPO हैं उनसे जुड़ेंगे तो एक नए भारत की नई कृषि जो है आत्मनिर्भर कृषि वो हमें जाहिर तौर पर दिखाई देगी. फिलहाल आज हमारे साथ आप सभी जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों ने यहां हमें दी और हमारे साथ नितिन जी रहे, इनका अनुभव भी हमने यहां पर जाना. जी बिल्कुल, और साथ ही आप दोनों का भी बहुत बहुत आभार, यहां पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों ने हमारे दर्शकों के साथ साझा की.
3: सबसे का आपको बहुत बहुत धन्यवाद आलिए, आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है अने साथ ही आपको रेडियो टांडिया भील 90.8 FM ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम ने भी धन्यवाद करिए केम के घनी खरी घनी ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपकी हाथे चर्चा थी है. आज आप विस्तृत में जानियो कि जो स्टार्टअप है तो कि कम आप कहीं पर निर्भर रहने जरूरत नहीं मिले, आप खुद ना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकी तो इनमें कई ने कई नी बातें आप जानवी जो है तीना बारा में भी आप विस्तार थी जानियो है, चर्चा करी है आज ना कार्यक्रम में. तो किसान भाईओ हम आशा भी करिए हैं कि आज ना कार्यक्रम थी तमन घणो लाभ थो है तो इना

0: कुछ कहानियाँ किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरों, उनकी मुस्कुराहटों और उनके संघर्षों में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपनी पहचान सिर्फ एक प्रोफेशन तक सीमित नहीं रखी, बिल्कुल नहीं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 35 इयर्स से भी ज्यादा का सफर, रिजेंसी हॉस्पिटल से लेकर नियॉन लैब्स, पनेशिया बायोटेक, डाबर फार्मास्यूटिकल्स, रैनबेक्सी, ग्लेनमार्क, इंटास और कई प्रमुख संस्थानों में नेतृत्व की जिम्मेदारियां निभाते हुए इन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी को छुआ है। शिक्षा की बात करें तो सर ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आज के IIT BHU से बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री प्राप्त की है। उसके बाद PGDBA किया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में स्पेशलाइजेशन हासिल किया और हाल ही में फार्मास्यूटिकल्स में मास्टर्स की डिग्री भी पूरी करी है। ये उनकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के एक जज्बे को खूबसूरती से दर्शाता है दोस्तों। लेकिन उनकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो एक ऑथर हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, NLP और एनर्जी मेडिसिन प्रैक्टिशनर हैं और सबसे खास बात, हमारे SN रेडियो के फाउंडर हैं, जो कई लोगों को अपनी आवाजों की पहचान देने में उनका साथ देते हैं, उनको हाथ बढ़ाते हैं और उनको एक खूबसूरत सा मंच देते हैं। तो चलिए आज स्वागत करते हैं हमारे खास दोस्त जिंदगी अनप्लग्ड में, समीर गोयल सर का।
1: नमस्कार समीर सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आज फिर से हम कनेक्ट हुए हैं जिंदगी अनप्लग्ड के एक और बहुत ही स्पेशल बुक पॉडकास्ट एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे आपकी एक और अमेजिंग सी बुक 8 PM के बारे में। मैं कहना चाहूंगी कि 8 PM इतनी इम्पोर्टेंट, वॉरंटेड, नीड ऑफ द आवर बुक है और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा रेलेवेंट कोई बुक अभी आज के जमाने में, आज की तारीख में, इस डे एंड एज में हो सकती है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑथरिंग दिस बुक सर, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस जर्नी। हाउ आर यू फीलिंग?
2: आई एम गुड, थैंक यू सो मच, एंड आई एम ऑनर्ड। बहुत अच्छा लग रहा है और हमेशा की तरह मैं इस बात पे I'm really excited about कि हम लोग बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने हमारी समाज में इस वक्त थोड़ा सा बैक स्टेज ले लिया है। ऑलराइट, आगे बात करेंगे तो पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग मी, इनवाइटिंग मी इन दिस प्रोग्राम।
1: My pleasure, sir. My privilege. Not even my pleasure. It's my privilege rather, to be precise. चलिए सर, सबसे पहले वही क्लीशे सवाल से शुरू करेंगे हम कि आपने इस बुक का नाम 8 PM ही क्यों रखा? क्या ये सिर्फ एक वक्त है या हमारी जो डिजिटल जिंदगी है उसका एक फुल स्टॉप पॉइंट है जहां पे सब कुछ खत्म होके एक्चुअल ह्यूमैनिटी शुरू होती है, दोबारा ह्यूमंस जगते हैं?
2: वेरी इंपॉर्टेंट वन। जो क्वेश्चन आप नहीं पूछ रहे हो ना, उसका भी जवाब दे देता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो इस तरीके की बातें कई बार नहीं बोल पाते, बट आई एम नॉट स्केयर्ड। 8 PM जो टाइटल रखा गया वो दो तीन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आया। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि ऑफ कोर्स आपका सवाल आगे आएगा कि कहां से मुझे इंस्पिरेशन मिला, तो जो जिनसे मुझे इंस्पिरेशन मिला मेरे फ्रेंड हैं राघवेंद्र सिंह कुशवाहा, उन्होंने मुझे इस चीज का आइडिया दिया था। तो उन्होंने ही टाइटल के बारे में जब बात होने लगी तो रात का वक्त था और रात को यूजुअली लोग बोतल शोतल खोल के बैठ जाते हैं, मजे करते हैं। सो 8 PM इज वन ब्रांड ऑफ लिकर विच इज प्रीटी फेमस, दो ऑफ कोर्स नॉट अ यू नो ग्रैंड थिंग बट स्टिल। और जब हम लोग इस विषय के बारे में बात कर रहे थे, इंटरनेट और उसका यूसेज, तो उन्हीं का आइडिया था कि 8 बजे खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन इस बुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इसका नाम उन्होंने सुझाया कि 8 PM रखो। बहुत बहुत सारे लोग तो उस नाम से ही अट्रैक्ट होके आएंगे कि व्हाट इज हैपनिंग, इज दिस बुक अबाउट यू नो दारू शारू के बारे में है क्या ये बुक?
1: यस यस यस,
2: क्योंकि हम लोगों का दिमाग ना वैसे ही चलता है, हम लोग सारे के सारे लोग साधु संत नहीं है। तो ऑफ कोर्स 8 PM इज बहुत एप्रोप्रिएट वक्त होता है जब मैं मानता हूँ 60% लोगों ने खाना खा लिया होता है, डिनर हो गया होता है, थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़े बैठ जाते हैं, दिन भर की भागदौड़ के बाद थोड़ा सा थम जाते हैं, तब मेरा मानना था और राघवेंद्र का मानना था कि कंप्लीट रेस्ट मिलना चाहिए, तो 8 पीएम बड़ा एप्रोप्रिएट टाइम लगा, इस वजह से बस टाइटल इसका रख दिया गया।
1: वेरी नाइस। और क्या सच में ऐसा होता है कि इस समय पे हम लोग स्विच ऑफ कर सकते हैं आपके हिसाब से? डू यू थिंक ऐसा हो सकता है सर?
2: भाई देखिए ऐसा है, मैं तो इस चीज को कर ही रहा हूँ पिछले कई सालों से, मे बी फॉर लास्ट 2 decades मैं ऐसा कर रहा हूँ। मेरे सारे मित्र शुरू शुरू में बड़ी परेशानियां हुई, लेकिन धीरे धीरे सबको पता चल गया कि मैं 8 बजे के बाद या 8:30 बजे के बाद फोन नहीं उठाऊंगा, सो देर इज नो पॉइंट इन गेटिंग कनेक्टेड टू मी। तो धीरे धीरे मेरी जिंदगी में शांति भी आ गई, आई एम एब्सोल्युटली कूल। और अगर हम इसको जनरलाइज करें, मेरी बात छोड़ दीजिए, तो ये बिल्कुल संभव है, एब्सोल्युटली पॉसिबल। सिर्फ हमें अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, इस दारू की बोतल को बंद करके 8 बजे रखना होगा।
1: क्या बात है,
2: बस उसके बाद जिंदगी सुधर जाएगी, ट्रस्ट मी।
1: सही है बिल्कुल, ये दारू की बोतल ही है सर। बहुत सही एनालॉजी ड्रॉ की आपने। आगे चलते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है जो मैंने आपके मुंह से कई बार सुनी है और बुक में भी आपने यूज की है कि यू कैन नॉट गूगल एक्सपीरियंस। बहुत गहरी लाइन है ये। जी जी। तो आज की जो जनरेशन है वो हर सवाल का जवाब स्क्रीन पर ही ढूंढती है, अमूमन हम सभी आजकल यही कर रहे हैं। आपके हिसाब से वो क्या है जो एल्गोरिथम कभी नहीं सिखा सकता, सिर्फ बुजुर्गों के साथ बातें करके उनके तजुर्बों को जान के ही मिल सकता है, और क्या मतलब है इस लाइन का?
2: Amazingly beautiful. Seriously, मैं भी इस लाइन को बहुत प्यार करता हूँ। That you cannot Google experience. मतलब एक्सपीरियंस आप गूगल नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हो। इस बात को और प्यारे ढंग से समझाने के लिए आपको ना एक मूवी के बारे में बताता हूँ, इस हॉलीवुड मूवी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इस मूवी का नाम है बैटलशिप, ये 2012 में आई थी, हॉलीवुड मूवी है। उसमें एलियंस का कुछ अटैक होता है वर्ल्ड के ऊपर वगैरह वगैरह, एंड ये यंग सोल्जर्स नेवी वाले वो लोग उसे लड़ने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, नहीं हो पाता है, हो भी जाता है। इवेंचुअली एक पोर्ट के ऊपर सेकंड वर्ल्ड वॉर का रिटायर्ड शिप खड़ा हुआ होता है, रिटायर्ड ओके, बहुत बड़ा होता है वो, और जाहिर सी बात है उस शिप के ऊपर वही पुराने सोल्जर्स उस जमाने के अवेलेबल होते हैं, जो उस शिप से इतना प्यार करते हैं कि वो शिप को छोड़ते ही नहीं, तो वो उसी पे रह जाते हैं, गवर्नमेंट भी अलाउ कर देती है। ओके, अब इवेंचुअली ये सारे यंग सोल्जर साले लड़ झगड़ लेते हैं उन एलियन से और जीत नहीं पाते, तो वो उस शिप पर जाते हैं, पुराने शिप पर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शिप पर, और उन एक्सपीरियंस्ड मतलब बिल्कुल सीजनड जो सोल्जर्स हैं उस जमाने के सेलर्स, उनसे वो जो कि बुढ़े हो चुके हैं, उन लोगों से हेल्प मांगते हैं कि सर कैन वी पॉसिबली बोरो योर बोट, और वो भी बहुत प्यार से बोलते हैं व्हाट डू यू नीड सन। तो इट वाज सो ब्यूटीफुल अ सीन कि ये सारे यंग सोल्जर्स झुक के उनके पास जाते हैं, कहते सर वी नीड योर हेल्प, कैन वी बोरो योर बोट, और बोट दैट वाज अ वॉरशिप ओके, उनके पास जो गन्स थी तो वो टू बिग, फिर वो जी सारे पुराने सोल्जर्स इन लोगों की हेल्प करते हैं कि यू विल नॉट एक्चुअली बी एबल टू ड्राइव दिस बोट, या तुम स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे, सो लेट अस हेल्प यू आउट। या सारे यंग सोल्जर्स उनकी इतनी रेस्पेक्ट करते हैं एक एक सोल्जर की, और वो लोग गाइड करते हैं कि कैसे उसको स्टार्ट करना है, कैसे गन लोड करनी है, एंड इवेंचुअली उस बहुत बड़ी वॉरशिप को यूज करके ये लोग उस जो बैटल शिप यानी कि उस एलियंस के शिप होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। सो बाय गिविंग यू दिस एग्जांपल, द नेम ऑफ द मूवी इज बैटल शिप। बाय गिविंग दिस एग्जांपल मैं कोशिश ये कर रहा हूं बताने की कि वो यंग सोल्जर्स थे, पावरफुल थे, विद लेटेस्ट इक्विपमेंट्स अवेलेबल थे, उनके पास नई टेक्नोलॉजी थी, बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, लेकिन वो लोग वो नहीं जीत नहीं पा रहे थे, बिकॉज प्लेन एंड सिंपल दे वर लैकिंग एक्सपीरियंस। जब उनकी सारी बोट्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, कुछ नहीं बचता उनके पास, तो फिर वो उन पुराने वेटरन्स के पास जाते हैं और कहते हैं सर वी नीड योर हेल्प। क्यों? गूगल कर लो ना, तब क्यों जरूरत है। अब वो भी चलो ठीक है कोई बात नहीं, मतलब दे स्टार्टेड स्टार्ट देयर बोट एंड देन दे हेल्प। सो टू कमिंग टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स, उसमें यही कहानी है तनुषा की। मैं मानता हूं और आई अप्रिशिएट दिस कि गूगल ने बहुत बहुत सारी चीजें आसान कर दी हैं, लेकिन एक्सपीरियंस तो बेटा वक्त जाने पर ही आएगा, आप उसे गूगल नहीं कर सकते हो। जो चेहरे पे झुर्रियां पड़ती है ना एक्सपीरियंस लोगों की, जो धूप धूप में बाल सफेद होते हैं जिनको कहा जाता है,
1: जी बिल्कुल
2: वो एक्सपीरियंस ऐसे आसानी से आता नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई कीप ऑन रिपीटिंग दिस सेंटेंस व्हिच आई लव द मोस्ट, दैट यू कैन नॉट गूगल द एक्सपीरियंस। बाकी सब आप होता है, बच्चों को लगता है यार अंकल बहुत हो गया अब हम संभाल लेंगे। श्योर श्योर, आगे की जिंदगी आप ही की है, आगे की दुनिया भी आप ही की है, है ना। बट एक्सपीरियंस्ड पीपल आर नॉट यूजलेस, यू नो,
1: करेक्ट। And they are so rich with their experience. मतलब मैं हर बार ही रिपीट करती हूँ, अभी चांस के पॉडकास्ट में भी, मैं आलोक सर को भी देखती हूँ, आप सभी को जब मैं देखती हूँ, तो आप लोग का जो जो लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट है, the level of involvement and going to the tee with the details is just impeccable. और वो मुझे लगता है वो हमारी generation चाह के भी नहीं, मतलब I don't think वो हम download भी कर सकते हैं या आपसे भी सीख सकते हैं। So I think you know the generations that have passed, जिनके पास experience है, वो कहीं गुना हमसे ज्यादा better हैं। और जैसे जैसे generations change होती जा रही है, वैसे वैसे ये जो purity of passion है, purity of doing things है, जो जो डिटेलिंग है वो खत्म होती जा रही है। तो hats off to you sir, और ये मूवी का प्लॉट इतना intriguing है that I'll right away watch this weekend. Sure. It's so intriguing and it's so different.
2: Absolutely.
1: Beautiful. आपने इलेक्ट्रॉनिक टॉक्सिसिटी के बारे में बात की है बुक में, जो भी एक बहुत ही अलग और बहुत ही रेलेवेंट टर्म है, इसको हमने इस तरह से कभी नहीं देखा। हम और टॉक्सिसिटी की बात करते हैं, बट इट्स अ वेरी यूनिक टर्म, इलेक्ट्रॉनिक टॉक्सिसिटी। क्या आपको लगता है कि हम सब एक ऐसे ही इनविजिबल जहर को कंज्यूम किए जा रहे हैं, उसके आदि हो चुके हैं, और धीरे धीरे इसके चक्कर में जो कोर है हमारा, जो हमारा फैमिली यूनिट है, उससे दूर होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, यू नो, ओवरटली बीइंग एसोसिएटेड विद आवर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दिस लाइफ दैट वी आर लीडिंग, डिजिटल लाइफ सो टू से।
2: दो चीजें हैं तनुषा इसमें। द वेरी फर्स्ट थिंग इज द साइंटिफिक फैक्ट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक टॉक्सिसिटी। द सेकेंड थिंग इज द सोशल इम्पैक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक टॉक्सिसिटी। सो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत छोटे में और सरल शब्दों में बताऊं। अगर साइंटिफिकली बात करें, वैज्ञानिक तौर पर बात करें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे चारों तरफ है। रादर हमारी जो धरती है ना, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ही चलती भी है, बनी भी है। पूरी प्रकृति हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से घिरी हुई है, क्रिएट भी करती है। लेकिन वही ना कि ज्यादती हर चीज की बुरी होती है। जब हम धरती मां से डिटैच हो गए, हम सभी ना, पता है आपको, धरती मां से डिटैच रहे कैसे, आप अपने पैरों में शूज पहनते हो, रबर की चप्पलें पहनते हो, हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हो, तो आप धरती मां से तो कहां टच में हो आप। अब द साइंटिफिक फैक्ट इज, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं या ऑक्सी फ्री रेडिकल्स कहते हैं उनको, वैसे समझ लीजिए, डॉक्टर्स उसके लिए विटामिन बी वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं। हमारी बॉडी में जो भी परेशानियां है ना, वो इन फ्री रेडिकल्स से हैं। और ये फ्री रेडिकल्स क्या है, ये हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। आई एम टेलिंग कोर साइंस हियर, लोगों को समझ में आ जाएगा, वैसे कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हमारे शरीर में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, ओके। तो ये जो पॉजिटिव आइंस अगर हमारे शरीर में ज्यादा हो जाएं, तो इनको फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। और ये पॉजिटिव आइंस हमारे शरीर को खाना शुरू कर देते हैं। तो डायबिटीज से लेकर अर्थराइटिस, रिमिटेड अर्थराइटिस एंड कैंसर तक की बीमारियां ये फ्री रेडिकल्स से होती हैं। अब जाहिर सी बात है, हमारा बॉडी न्यूट्रल होती है, पॉजिटिव नेगेटिव आइंस मिले हुए होते हैं, सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस एंड सेम नंबर ऑफ नेगेटिव आइंस, सो वी आर ओके। लेकिन किसी भी वजह से अगर पॉजिटिव आयन बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो हमें परेशानी शुरू हो जाती है। अब हमारी जो धरती माँ है ना, ये अर्थ, दिस प्लैनेट अर्थ इज टोटली फुल ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस कंप्लीटली. ओके, आई डोंट, मैं और ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो कैसे नेगेटिव है, बट अगर आप चाहें तो यहाँ पर गूगल,
1: यू कैन गूगल इट,
2: यहाँ पर आप गूगल कर सकते हैं. तो अगर हम अपने नंगे पैरों से धरती से टच में रहते हैं तो वो सारे नेगेटिव आयंस हमारी बॉडी में आते हैं, और हमारी बॉडी में जो भी पॉजिटिव आयंस हैं एक्स्ट्रा घूम रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं. तो हम बिल्कुल हेल्दी रह जाते हैं. हमें किसी दवाई की जरूरत नहीं. या ग्राउंडिंग, करेक्ट, अर्थिंग, ग्राउंडिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, मुझे आई लव इट. बहुत बहुत मकानों में, घरों में मैंने देखा है कि लोग अर्थिंग करवाते ही नहीं क्योंकि साहब 5,000 रुपए खर्चा हो जाएंगे. आई मीन हाउ सैड इज दैट. वो धरती माँ से कटे पड़े. ओके, तो एक तो ये साइंटिफिक फैक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रॉनिक टॉक्सिसिटी का. तो होता क्या है कि अगर हम लोग धरती माँ से कटे पड़े हैं, नेगेटिव आयंस हमें मिल नहीं रहे हैं, तो हमारे घर में ही दीवारों में इतनी वायरिंग होती है, फिर हमारे रेफ्रिजरेटर है, फोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, देन आपके किचन अप्लायंसेस सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, और ये सारी इलेक्ट्रिसिटी ऑफकोर्स बह रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है. वो होता है तो वो हमारी बॉडी में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस को इन्फ्लुएंस करेंगे ही करेंगे. वी कैन नॉट स्टे डिटैच्ड फ्रॉम दिस ईएमएफ. अब अगर हम ग्राउंडेड नहीं है, न्यूट्रलाइज्ड नहीं है, तो फिर पॉजिटिव आयंस बढ़ने शुरू हो जाएंगे. तो ये तो साइंटिफिक इलेक्ट्रॉनिक टॉक्सिसिटी हुई जिसके हम शिकार हो रहे हैं, उसकी वजह से हमें नींद नहीं आती, हमारी बीमारियां, स्किन की प्रॉब्लम, सर में दर्द, पता नहीं क्या क्या. सेकंड, सोशल जो इम्पैक्ट है इलेक्ट्रॉनिक टॉक्सिसिटी का, कि जी हम लेकर बैठे हुए हैं तो हमारा ध्यान तो इसने सारा अपनी तरफ खींच रखा है, तो ना तो हमें मम्मी पापा दिखाई देते हैं, ना हमें बेटा बेटी, ना हमें भाई बहन, ना हमें दोस्त, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता. बहुत ही मतलब टाइम एंड अगेन इस बारे में बहुत चीख चीख कर बातें हो रही हैं. हम ट्रेन में देखते हैं, फ्लाइट्स में देखते हैं, एयरपोर्ट्स में देखते हैं, रेलवे स्टेशन पे, बात 99.99% आदमी फोन में घुसा हुआ है. मैंने इस बात को पहले भी कहा है कि अभी भी मैं ट्रेन से दिल्ली से आया तो देख रहा था, मतलब मैं हर एक आदमी फोन में. मुझे कोई भी व्यक्ति मुझे अगर एक किताब पढ़ता हुआ या किताब पकड़े हुए दिखाई दे जाता है तो मुझे डर नहीं लगता, मैं सीधे उसके पास जाता हूँ और कहता हूँ बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, थैंक यू सो मच, इस पूरी ट्रेन में कम से कम एक व्यक्ति तो दिखा जो किताब पकड़े हुए है.
1: और आप होश में है, बेहोश नहीं
2: है. आप नशे में नहीं है,
1: बिल्कुल बेहोश लगते हैं लोग मुझे आसपास अपने आजकल.
2: वही है इलेक्ट्रॉनिक टॉक्सिसिटी, और वो आपकी बॉडी को तो इफेक्ट कर ही रही है, मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से. और दिमाग आपका पूरा हाईजैक्ड है, वो है इलेक्ट्रॉनिक टॉक्सिसिटी जिसने आपको सोशल एनिमल के बजाय आइसोलेटेड आइलैंड बना के रख दिया है. सारे के सारे लोग ना, जैसे कहते थे ना हम सामाजिक लोग हैं, मनुष्य है, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलते हैं, समाज है हमारा, बिल्कुल वो सब चीजें खत्म हो चुकी है. कोई समाज नहीं है, कोई समाज नहीं है, कोई किसी को नहीं पहचानता, हर एक आदमी फोन में है. हम सब जानते हैं इस बात को लेकिन फिर भी डिटैच
1: नहीं हो पा रहे जी.
2: सो दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक टॉक्सिसिटी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था.
1: ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुली एनालाइज्ड, एंड मतलब आई एम सरप्राइज्ड द वे यू परसीव थिंग्स एवरी टाइम दैट आई टॉक टू यू. हमने जितने भी बुक के पॉडकास्ट्स किए, आई एम वेरी इंट्रिग्ड बाय द वे यू थिंक सो एंड अमेजिंग. आगे चलते हैं कहानी में. जब 8 AM पर इंटरनेट वापस आता है तो ऑफकोर्स सारा परिवार वापस स्क्रीन्स में खो जाता है. सुबह हो गई है और आपने लिखा है कि हम पहले टूटे हुए थे पर जुड़े हुए थे, बट आज हम जुड़े हुए तो हैं लेकिन फिर भी टूट गए हैं. तो ये जो दर्द भरा पैराडॉक्स है, इसको आप एज अ राइटर किस तरह से अपने आसपास देखते हैं? फिर से मैं चाहूंगी कि आप रियल लाइफ से अगर ड्रॉ करके बता सके कि ये किस तरह से ये जुमला एक जीवंत है आज की तारीख में.
2: बहुत खूब. मैं जैसे कुछ कंपनीज में ट्रेनिंग वगैरह के लिए जाता हूं, तो चलिए वो तो एक प्रोटोकॉल होता है, जब सारा हाउस होता है, सब लोग बैठे होते हैं ट्रेनीज, और ठीक है एक प्रोटोकॉल भी होता है, वो एक नॉर्मल रूटीन में रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज अपने अपने फोन्स को साइलेंट मोड पे रखकर रख दीजिए, बैग में डाल दीजिए या सामने रख दीजिए, लेकिन उल्टा करके रख दीजिए, सो दैट यू कैन नॉट सी ऑन द स्क्रीन एंड यू डोंट, यू शुडंट गेट डिस्ट्रैक्टेड और डिस्टर्ब, जो बात हो रही है उसको सुनिए. लेकिन फिर भी जो ये बात है ना कि हम लोग टूटे हुए थे फिर भी जुड़े हुए थे, लेकिन अब हम जुड़े हुए हैं फिर भी टूटे हुए वाली बात है. मैं मानता हूं वो सारे लोग साइलेंट पे डाल के उसको अपसाइड डाउन रख भी देते हैं, फेस डाउन, लेकिन यू नो मतलब समझो एक डेढ़ दो घंटे तक, बल्कि पूरे दिन में बाज बार बीच बीच में ना उनका दिमाग उसी की तरफ चलता रहता है.
1: Yes.
2: कोई मैसेज आया होगा, कोई मेल आई होगी, कोई कॉल आई होगी, हमारा किसी डीलर ने कॉल किया होगा, है ना, किसी पेशेंट ने कॉल किया होगा, बार बार. सो जुड़े हुए तो हैं वो मेरे से, मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेरे साथ एम्पथाइज कर रहे हैं, लेकिन बार बार उनका दिमाग उस तरफ चला जाता है कि साहब कोई कॉल आया होगा. जुड़े हुए तो हैं वो मेरे से, लेकिन टूटे हुए भी हैं मेरे से. वक्त लगता है, मैं मानता हूं ये सब इररिपेयरेबल चीजें नहीं है, ये रिपेयरेबल है. व्हाट एवर वी आर टॉकिंग, वी आर, इट इज ऑल रिपेयरेबल. तो आधा दिन गुजरता है, मतलब दो तीन चार घंटे गुजरते हैं, उसके बाद धीरे धीरे लोग अपने उस चीज से डिटैच होना शुरू कर देते हैं, वो भूल जाते हैं कि एक फोन भी रखा है सामने. फिर एक तरीका ये भी होता है कि फोन को अपने सामने से ही हटा दीजिए. वो भी कई सारे रील्स देखी है मैंने, कई सारे
1: सभी लोग,
2: हाँ सब सब सब लोग देखते रहते हैं रील्स को कि इफ इट ऑल यू आर टेकिंग होल्डिंग द फोन इन योर हैंड एंड वेविंग इट, तो इसका मतलब आप जिससे बात कर रहे हो ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका फोन इम्पोर्टेंट है. इसलिए बेहतर है इस चीज को पीछे अपनी आंखों के सामने से हटा दीजिए ना. दोस्तों सच मानिए, कुछ नहीं होगा. आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है आपका फोन अपने सामने से हटा दो दुनिया गिर जाएगी, और उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे, ऐसा लगता है आपको. नहीं होगा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा. अभी मैं एक मित्र से मिला और उन्हें छोटा मोटा मैंने उसको शिकायत करी कि तुम फोन नहीं उठाते हो, कहता मेरा फोन गिर गया था, डूब गया था, टूट गया था, जो भी है नॉर्मल, बड़ा प्यारा सा एक्सक्यूज है आजकल लोगों के पास, और नंबर खो गया था. अच्छा, मतलब जब आपके फोन पर किसी का नाम दिखाई देता तो ही आप फोन उठाते हो, वरना फोन ही नहीं उठाते हो. सच्चाई है कि उसका बिल्कुल उल्टा होता है, अगर आपको नंबर नाम दिखाई दीजिए तो आप बिल्कुल फोन नहीं उठाते, और आपको कोई अननोन नंबर आता है ना तो आपको लगता है कि यार मतलब कौन है यार,
1: पता नहीं कौन ही होगा.
2: हाँ कौन ही होगा, 200 करोड़ दे रहा होगा मेरे को, फौरन फोन उठाते हैं.
1: करेक्ट.
2: पीछे अभी मैंने, बाबा रामदेव जी के भाई हैं, उनको फोन किया, उनका नंबर मुझे कहीं से मिल गया था, कुछ काम था, मतलब कुछ बच्चों की ट्रेनिंग करानी थी. उनको फोन किया, उन्होंने दूसरी घंटी में उठा लिया. और उनका नाम है भरत देव जी, स्वामी भरत देव जी. तो जी उन्होंने उठा लिया, बड़े प्यार से बातचीत हुई, सब कुछ हो गया खत्म. उसके बाद उन्होंने मेरा फोन कभी नहीं उठाया. हजारों बार मैंने उनको कॉल कर लिया, क्योंकि उन्होंने से सेव कर लिया कि इस बंदे का फोन नहीं उठाना है. एनीवेज, लेट्स कम टू द टॉपिक, कम बैक टू द टॉपिक. सो प्रैक्टिकल डूएबल है, किया जा सकता है, बिल्कुल संभव है. अपने आप को डिटैच करना सीखिए. देखिए मैं कोई साधु संत नहीं हूं और कोई बहुत तोप तमंचा नहीं हूं, लेकिन एक बार मैं जानबूझ कर ये काम कर चुका हूं. 100% लोग कहेंगे पागल है आदमी, कि मैंने अपने फोन से सारे के सारे नंबर से डिलीट कर दिए. मैंने कहा भाई दो ढाई हजार कॉन्टेक्ट है, लेकिन पॉइंट ये ना कि उसमें से कितने रेगुलर है मेरे पास, 10-20 है ना. उसके बाद मैंने बहुत हिम्मत करके, मैंने अपने आप को बड़ा महाराणा प्रताप समझकर सारे नंबर डिलीट मार दिए कि देखें देखिए मेरी जिंदगी में क्या असर आता है. तो मैंने ये चीज रियलाइज करी, करीब करीब एक महीना लगा एक चीज रियलाइज करी कि जिन लोगों को मुझसे बात करनी थी उन्होंने कॉल किए और मैंने उनका नाम सेव करता चला गया. जिन्होंने मेरे से बात नहीं करनी थी उन्होंने कॉल कभी किए ही नहीं, पिछले दो सालों से, पिछले पांच सालों से, पिछले दस सालों से नहीं किए थे. सो डू आई रियली नीड दोस नंबर्स?
1: वेरी राइट, वेरी राइट.
2: मुझे नहीं है जरूरत. लोग तड़प जाते हैं कि जी मेरा डेटा उड़ गया. अरे क्या डेटा उड़ गया? क्या क्या व्हाट्सएप से डेटा उड़ गया? अरे क्या डेटा? हाँ चैट उड़ गई. मैं क्या चैट? मतलब आज से तीन साल पहले तुमने प्यार मोहब्बत किया था, क्या जो उड़ गया? मतलब क्या, व्हाट द हेल इज दिस? आप इंपॉर्टेंट नहीं हो साले, दो साल पहले की चैट इम्पोर्टेंट है. व्हाट द हेल? ये क्या?
1: ये मैं भी करती हूँ.
2: हाँ हाँ, ये हम लोग हम लोग ने ना जानबूझकर अपने हाथ बढ़ा दिए हैं टेक्नोलॉजी के सामने कि लो हमें हथकड़ियां पहना दो. और हम बड़े मजे से जॉम्बी बनकर हथकड़ियां पहनकर उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं.
1: I just hope we can raise a toast to digital detox and actually do this and practice this in life, because जो जो बातें आपने कही वो इतनी relevant है, मतलब इतनी relevant है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है to explain कि exactly यही होता है, exactly यही होता है.
2: अच्छा चलो एक मिनट रुको, एक मिनट रुको. देखो theoretical बातें करने से बहुत ज्यादा मजा नहीं आता, एक practical बात करते हैं. जितने लोग भी मेरे को इस वक्त सुन रहे हैं, एक काम कीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा, ना तो आपका कोई कॉन्टैक्ट डिलीट होगा, ना आपकी कोई चैट डिलीट होगी, कुछ नहीं होगा. एक दिन, फिर उसके बाद अच्छा लगे तो दो, उसके बाद तीन दिन. रात को 8 बजे 8 PM अपने मोबाइल को, ट्रस्ट मी, घर में और तीन चार लोग होंगे ना, और तो अपना फोन स्विच ऑफ कर देना. ओ बाप रे, एकदम दिमाग फटने को हो जाएगा लोगों का. स्विच ऑफ कर देना. बाकी लोगों का ऑन है ना, आपके घर में वाइफ है, बेटा है, बेटी है, बहन है, भाई, उन लोगों के ऑन है. तो अगर कोई इमरजेंसी होगी, आपका फोन नहीं लग रहा होगा, तो किसी और को, कोई भी जो होगा वो कर लेगा. लेकिन आप 8 बजे बंद कर दीजिए, सुबह 8 बजे खोलना. एक दिन के लिए तो करके देख सकते हैं ना एक्सपेरिमेंट.
1: बिल्कुल बिल्कुल करेंगे सर.
2: मेरा प्रॉमिस है, मेरा प्रॉमिस है, आपके फोन को स्विच ऑफ कर देने की वजह से अगर दुनिया गिरी तो मैं जिम्मेदार.
1: राइट सर, राइट.
2: एक दिन तो करके देखिए. चलिए
1: एक दिन तो करके देखिए. बिल्कुल बिल्कुल सर. श्रुति का किस्सा हमें बताता है कि बिना नेटवर्क के हम कितने असहज, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और डरे हुए महसूस करते हैं, जैसे कि अभी हमने जस्ट बात की. तो क्या हमारी हिम्मत, हमारा कॉन्फिडेंस अब सिर्फ मोबाइल के सिग्नल बार्स पर ही टिका है? हम इतने फ्रेजाइल हो गए हैं एज ह्यूमन रेस? आई मीन व्हाट इज रॉन्ग विद अस?
2: आप बिल्कुल सही कह रहे हो. श्रुति की कहानी यही दिखलाती है. मैं मानता हूँ इंटरनेट ने बहुत फायदे भी दिए हैं. आफ्टर ऑल श्रुति इतना लेट ऑफिस से आ रही है, तो उसको इंटरनेट ने एक सुरक्षा दी हुई है कि वो पुलिस को भी फोन कर सकती है, ओला उबर बुक कर सकती है. तो उसके दिमाग में एक शांति है कि मैं लेट निकल रही हूँ, रात के 11:30, 12:00, 1 बजे ऑफिस से निकल रही हूँ, फिर भी मेरी असमत सुरक्षित है. मैं एक ओला बुला लूंगी, उबर बुला लूंगी. और तो और, बल्कि आजकल तो ये दिखाई देता है, मतलब रील शील में दिखाई देता है. मैंने वैसे प्रैक्टिकली तो नहीं देखा है, लेकिन ऑफकोर्स हमारे सुनने वालों में से 100% बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि रात में आपने उबर बुलाई और कोई महिला ही उबर लेकर आती है. महिला ड्राइवर्स, तो ऑफकोर्स आप उससे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हो. इंटरनेट ने ये दिखाया कि कोई लड़के आपके पीछा कर रहे हैं, आपने कॉल किया और पूरी महिला स्क्वाड आ जाती है, आपको बचाती है, आपको घर पहुंचाती है. नाइस. और ये सच भी है, इस तरीके की महिला स्क्वाड्स आजकल हर शहर में यू नो काइनेटिक ईज के ऊपर, एक्टिवा के ऊपर ब्लू यूनिफॉर्म में बड़ा अच्छा लगता है देख के. नाइस. जयपुर में है, मैंने देखा कई जगह पर है. लेकिन किसी दिन अगर ये सब ना हो तो जाहिर से बात है हमें इस बारे में अवेयर तो होना होगा ना. पहले के जमाने में, आज से 20 साल पहले की बात कर ले, जब इंटरनेट नहीं था, तभी भी महिलाएं बाहर तो जाती थी, लेकिन तब हर हालत में वो 7 बजे 6 बजे अपने घर वापस या फिर अपने घोंसले की तरफ चल देती थी. जहां देखिए सुरक्षा सबको चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को चाहिए, मर्दों को भी सुरक्षा चाहिए भाई, सबको चाहिए. ओके, और प्रकृति ने कहा है जैसे अंधेरा होना शुरू हो अपने घोंसलों की तरफ चल दो, क्या गलत है उसमें? हाँ,
1: ब्यूटीफुल, यस।
2: सारी आप देख लो ना, सारे जानवर सब, चिड़िया सब लोग अंधेरा होते ही गायब हो जाते हैं। चलो हम ही वो जानवर हैं 16 साल सड़कों पर भटकते दिखाई देते हैं, और फिर उन इतना लेट लेट होगा तो बदतमीजी भी होगी, इतना लेट लेट होगा आदमी सोया नहीं होगा तो उसके दिमाग में शैतान जागेगा ही, लोग बाग दारू पी के लड़खड़ाएंगे, एक्सीडेंट्स करेंगे, मतलब बदमाश जो लोग होंगे अपने मन के अंदर और अपने दिमाग के अंदर छुपी हुई कुंठाओं को बाहर निकालेंगे, क्योंकि अंधेरा हो गया ना, सूरज जंगल तो है नहीं, देखने वाला कोई है नहीं। तो ऐसे केस में श्रुति जैसे लोगों को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि बीपीओ में रात के 11:30 बजे काम करेंगे? खाने को नहीं है, दो दाने आपको खाने को नहीं है, आपके पापा आपको खिला नहीं सकते, या आपको ये प्रूफ करना है कि आपके पास भी बाइसेप्स हैं, आप भी तोप तवंचा हैं, मैं जिंदगी क्या क्या क्या क्या साबित करना चाह रहे हो आप? क्या कोई जरूरत नहीं है आपको? अरे यार, आप शक्ति हो, इसका मतलब ये नहीं है। मेरे को एक डायलॉग द लॉयन किंग का बहुत बहुत बहुत पसंद है, द लॉयन किंग मूवी का, जिसमें जो मुफासा है अपने बेटे सिम्बा को बोलता है, बीइंग ब्रेव डजंट मीन यू गो आउट एंड लुक फॉर ट्रबल। बहादुर होने का ये मतलब नहीं
1: है। यू सेड इट, ऐसा लगा मुफासा ही बोल रहा है। वाओ,
2: आई ट्राइड
1: अमेजिंग। सो
2: आई स्वेयर, मतलब जो मैंने उसको डायलॉग को या अक्सर देखता हूँ उस मूवी को, जब वो डायलॉग बोलते हैं ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब रियली गूज़बम्प्स जिसको बोलते हैं ना, वैसा हो जाता है।
1: सो
2: इंटरनेट नहीं है तो क्या हो गया दोस्तों? हम लोग पहले भी सुरक्षित थे, आज भी सुरक्षित हैं, थोड़ा सा अपनी सीमाएं जानने की जरूरत है और कुछ नहीं। श्रुति कैन ऑलवेज बी सेफ इफ एट ऑल शी प्लेज सेफ।
1: ब्यूटीफुल, यस। हमें अपनी लाइन जानने की जरूरत है, उन्हें रिविजिट करने की जरूरत है। आई कंप्लीटली अग्री विद दिस। बीइंग अ गर्ल, आई टोटली साइड विद यू दैट आई डोंट नो वेयर वी आर हेडेड। बहरहाल आगे चलते हैं। इस कॉर्पोरेट ऑफिस में मैं भी अप्लाई करना चाहती हूँ जहाँ पर बुक के पार्ट टू में आपने कॉर्पोरेट ऑफिस की बात की है, जहाँ पे 8 PM के बाद इंटरनेट बंद करने का एक नियम लागू किया गया है। क्या आपको लगता है कि जो आज का वर्क फ्रॉम होम कल्चर है, पॉप कल्चर है, इसमें ये रियलिटी बन सकता है, या फिर इस प्रॉफिट की होड़ में, इस मैडनेस में हम हमेशा मशीन ही बने रहेंगे? और अगर ऐसा ऑफिस बनता है तो आई वांट टू बी द फर्स्ट एम्प्लॉय, प्लीज कंसिडर मी अप्लाइड फॉर द पोस्ट।
2: देखिए, मेरी जो एकलव्य वाली बुक थी उसमें यूटोपिया की बात हुई थी, है ना?
1: बिल्कुल।
2: तो देखिए, ये सारे कॉन्सेप्ट्स संभव है, बिल्कुल संभव है, 100% पॉसिबल है। आप मालूम नहीं इस दुनिया में तब थे या नहीं थे जिस वक्त स्टार ट्रैक करके एक सीरियल आया करता था टीवी पे।
1: जी जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत छोटी थी मैं।
2: ओके, उस स्टार ट्रैक में स्पॉक था और कैप्टन कर्क थे, एंड उसका जो डॉक्टर था बोन्स। एनीवेज, उन लोगों के पास एक ना वॉकी टॉकी टाइप्स चीज हुआ करती थी जिसको खोल के वो लोग कम्युनिकेट करते थे। इट यूज्ड टू बी लुक लाइक यू नो फ्लिप फोन, मोबाइल फोन,
1: बड़ा
2: क्यूट सी उसके अंदर आवाज आती थी, किड़किड़ किड़किड़ करके जब उसको ओपन करते थे। तो उस जमाने में उन लोगों ने सोचा था कि इस तरह की कोई वाइफ, मतलब विदाउट वायर का कोई कम्युनिकेटिंग डिवाइस होगा। उस वक्त हमारे घर में टेलीफोन लैंडलाइंस भी नहीं होते थे,
1: नहीं होते थे, राइट।
2: और आज के डेट में हमारे पास दो दो तीन तीन लेकर हम घूमते हैं।
1: यस,
2: वही चीज है ना। तो ये इंसान की इमेजिनेशन होती है जो उसको फ्यूचर में 100% मैटेरियलाइज करती ही है, वो बनता है। तो अगर मैंने यूटोपिया को सोचा है, और अगर मैंने ये सोचा है कि कोई एक ऐसा कॉर्पोरेट होगा जहां पर 8 बजे इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा, तो आई हैव 200% फेथ कि ऐसा कॉर्पोरेट बनेगा, या मुझे तो ऐसा लगता है अभी कहीं ना कहीं होगा।
1: करेक्ट,
2: कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि सच बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जापान में, बहुत सारी जगह मैंने पढ़ा है, बहुत बहुत सारे कॉरपोरेशंस हैं जो इस चीज के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल चाइना में मैंने सुना है, जापान में मैंने सुना है कि वहां की एयर कंडीशंस आर फिक्स्ड ऑन 26 डिग्रीज, कि 26 डिग्री से वो नीचे जाएंगे ही नहीं.
1: आप
2: कितना ही कर लो, तो 26 डिग्री इज अ वेरी कंफर्टेबल टेम्परेचर फॉर एनीबॉडी.
1: यस,
2: हम लोग
1: अनलाइक हियर इन इंडिया व्हाट वी डू when we just it's such a fight in the office all the time.
2: अरे
1: एसी बंद करो, एसी चलाओ.
2: हाँ, अजी ऑफिस को छोड़ो, अपने घरों में हम अपना एसी लगा लेते हैं तो 16 डिग्री पे चला के और फिर रजाई ओढ़ के सोते हैं.
1: Yes, ये yes, क्या पागल yes. है? Madness,
2: तो मतलब ये क्या है? तो कई कई कॉर्पोरेट्स ऐसे होंगे और उनका काम हैम्पर नहीं होता, नहीं होता जी. भाई सुबह 10 बजे बंदा आया है, शाम के 5 बजे तक अगर उसको इस तरीके का एनवायरनमेंट दिया जाएगा, सीधा सीधा इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, तो वो काम करेगा. यू नो, एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं हाइपर ड्राइव. ओके, हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन, मैं उस कॉर्पोरेट की बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लोगों को ये सपना दिखा रहा हूं, आप सब लोगों के दिमाग में ये विजुअलाइज करवा रहा हूं कि किस तरीके से ये कॉर्पोरेट रन करेगा. ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है. आपको अगर कोई भी काम करने के लिए दिया जाए जो कि एक्चुअली लेट से 5 घंटे का हो, 5 घंटे में आपको ये काम करना है, अचानक से आपको ये बोला जाए कि कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, 2 घंटे में काम चाहिए, और आपको सचमुच ऐसा महसूस हो जाए कि अरे यार करना पड़ेगा, तो आपका दिमाग हाइपर ड्राइव में चला जाएगा, आपकी पूरी बॉडी हाइपर ड्राइव में चली जाएगी.
1: Right.
2: और सच मानिए, 5 घंटे का काम आप 2 घंटे में करके खड़ा कर देंगे. इसका छोटा एग्जांपल और बताता हूं. अभी आपको कहीं पर जाना है, आपके पास 15 मिनट हैं, और अचानक आप थोड़ा उलझ जाते हैं कहीं पर, और आपको पता चलता है कि अब आपके पास कुल जमा 5 मिनट रह गए. तो ट्रस्ट मी, आपका पूरी बॉडी, आपका पूरा दिमाग हाइपर ड्राइव में चला जाएगा. उसी 5 मिनट में आप रेडी होके नीचे कार में बैठे हुए नजर आओगे.
1: बिल्कुल.
2: अगर इस तरीके के कॉर्पोरेट में सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए जिस दिन इंटरव्यू हुआ, कि साहब ऐसा है 10 बजे से 5 बजे तक का टाइम है और 5 से 1 मिनट ऊपर नीचे चलेगा, और इस 10 से 5 के इंटरनेट ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो 10 से 5 में आपको ये काम आपको निपटाने हैं, तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन में भी आपको लगेंगे, एंड आप प्रिसाइसली उसी टाइम में निपटा दोगे. सोच के देखो, आप ही ने बोला कि आप यू वुड लाइक टू ज्वाइन दिस काइंड ऑफ अ कॉर्पोरेट. पांच बजे बंदा निकल के कितने प्यार से अपने घर पहुंचेगा, कितना खुश होगा, और कोई टेंशन नहीं होगी उसके दिमाग में कि फोन पे इंटरनेट नहीं है तो साला मैसेज बजेंगे, मेल आएगी, कितने प्यार से अपनी फैमिली के साथ मजे करेगा यार,
1: और कितना और प्रोडक्टिव हो सकता है और चीजों के लिए, जीवन में कितना कुछ और है करने को. मतलब हम ये क्यों नहीं सीख पाते, ये जो बैलेंस ऑफ लाइफ है, बैलेंस ऑफ लिविंग है, मतलब इट्स सो इजी, लाइक यू सेड कि जो यूटोपियन वर्ल्ड है इट्स एक्चुअली वेरी इजी, बट उसको अचीव करना इतना डिस्टेंट ड्रीम लगता है अभी. आई जस्ट होप इट जस्ट कम्स अलाइव सर, मैनिफेस्टिंग ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो हम बात करते हैं पॉडकास्ट में. आई जस्ट होप ये आज से एटलीस्ट जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक में ये मैनिफेस्ट हो जाए, एंड आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू ऑल ऑफ दिस एंड लिव अ लाइफ विच इज एज बैलेंस्ड एंड सेंटर्ड एज दिस. सो यही थॉट्स के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, जो भी बहुत ही अमेजिंग है, चलत मुसाफिर हो जिया रे पिंजरे वाली मुनिया, फिल्म 30 कसम.

0: जी जो माँ का कैरेक्टर है हमारी बुक में, वो उनके लिए आपने कहा है कि वो परछाई पढ़ लेती हैं, अपने परिवार की परछाई पढ़ लेती हैं, विच इज सो ब्यूटिफुली सेड। जब इंटरनेट बंद होता है तभी वो अपने बच्चों के दुख को समझ पाती हैं, क्योंकि नेचुरली उनका जो कनेक्ट है बच्चों से वो तभी बन पाता है, वरना तो वो देख भी नहीं पाएंगे अपने बच्चों को, बिकॉज दे आर सो इंग्रॉस्ड इन देयर लाइफ एंड देयर स्क्रीन्स। तो क्या ये जो स्क्रीन की रोशनी है, इसने सच में हमारे बीच में जो इमोशंस थे उन सभी को धुंधला कर दिया है? वो जो एक नजर पढ़ लेती थी, एक एक यू नो घर में घुसते ही एक जो माँ पढ़ लेती थी कि क्या है और क्या चल रहा है, उस सबको धुंधला कर दिया स्क्रीन्स ने।
1: 100% ये हो गया है दोस्तों, आप इस चीज़ को 100% मान पाएंगे। बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है कि माताजी होती हैं, पिताजी होते हैं, वो अपने बच्चों के ना नस नस से वाकिफ होते हैं, क्योंकि उन्हीं के शरीर से निकला हुआ होता है वो बच्चा। बच्चा घर में घुसता है तो एक वेव्स हैं, एक वाइब्स हैं जिनको कहते हैं ना, माताजी को पिताजी को इमीडिएटली उनको आंख उठाने की जरूरत भी नहीं होती और पता चल जाता है कि क्या है, अच्छा है, बुरा है, परेशान है, क्या है। लेकिन ठीक है, जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें बच्चे भी अपने बाप को नाम से बुलाते हैं, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है इस बात की, तकलीफ तो है लेकिन ठीक है। अब ये जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक टॉक्सिसिटी है या जो भी मॉडर्न वेज ऑफ लिविंग लाइफ है, वो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भी बहुत ज्यादा आ गया है, क्योंकि नंबर वन मैं बच्चों को दोषी नहीं ठहराऊंगा टोटली, उनके हाथ में भी फोन है और माँ बाप के हाथ में भी फोन है, बच्चे का दिमाग भी हाईजैक्ड है और माँ बाप का दिमाग भी हाईजैक्ड है। अब इस बात को कहकर अपने आप को साधु संत साबित करना कि नहीं मैं तो भजन देख रही थी, ये बेवकूफी है ये पाखंड है।
0: अल्टीमेटली
1: थे तो आप फोन में ही ना, तो जब आपके फोन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके आपकी राडार सेंसेस जो होते हैं, सिक्स्थ सेंसेस जो होते हैं माताजी की, उनको हैम्पर कर दिया, डाउन कर दिया, तो आप अपने बच्चे की वाइब्स को पकड़ ही नहीं पाए। जिस वक्त किताब में लिखे हुए जो मैंने लिखा है कि जिस वक्त इंटरनेट डाउन हुआ है ना, उस वक्त अचानक से मम्मा के सारे राडार्स खड़े हो गए, सारे एंटीनास एकदम परफेक्टली रिफ्रेश हो गए, तो उनको समझ में आने लगा कि मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, मेरे परिवार के साथ क्या हो रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं। और जाहिर से बात है, इसका मजे मजे में आपको एग्जाम्पल बताऊं, हम लोग फेसबुक पर ना बड़े मुस्कुरा कर अपनी सेल्फी पोस्ट करते हैं, फिर चाहे हमारा दिल ना चूरा चूरा हुआ पड़ा हो,
0: यस एब्सोल्युटली,
1: लेकिन मुस्कुराते इतना जोर से हैं कि ओहो पता नहीं क्या हो गया।
0: Exactly,
1: तो जाहिर exactly. से बात है, वही इंटरनेट के चलते, फोन के चलते, इन सब चीजों के चलते माँ जो है श्रुति के चेहरे को पढ़ नहीं पाई कि वो कितना थकी हुई, डरी हुई, सहमी हुई, कांपती हुई आई थी, या मतलब उसने अपने परिवार को ठग से समझा ही नहीं। सो दिस इज कम्प्लीटली रेलेवेंट जो आपने पूछा, मैं अपने कमरे में बैठा हुआ हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मेरा बेटा अपने कमरे में, मेरी वाइफ जो अपने कमरे में है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस हैपनिंग। मैं तो कई साल हो गए, मैंने बहुत कोशिश की और मैं कामयाब रहा, उसके लिए मैं अपनी वाइफ और बेटे को बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ कि हम लोग शाम को 7 बजे या दिन में कभी भी हम नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, तो ये हमारा नियम बन चुका है। लड़ाई झगड़े भी हो चुके, फिर नियम बन गया कि फोन्स रख दिए जाएंगे अपने अपने कमरे में, एंड एवरीबॉडी वुड कम टू द टेबल, या फिर हम जमीन पे बैठ के खाते हैं तो जमीन पे हम सब आएंगे, फोन्स नहीं होंगे, हम बातें करेंगे, नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि बातें करने से जीभ कट जाती है, मतलब खाते खाते आप बातें कर रहे हैं तो जीभ कट,
0: बिल्कुल
1: कोई बात नहीं, हम बातें नहीं करेंगे, लेकिन बैठेंगे साथ में और फोन हाथ में।
0: Amazing.
1: मुझे उन लोगों पर बहुत दया आती है, कसम से, बाहर रेस्टोरेंट्स में या कहीं पर भी बहुत दया आती है कि लोग बस फोन को सामने रखकर खाना खाते हैं, इतनी दया आती है कि मैं इस बंदे को क्या करूं यार।
0: क्या बोलूं। और उससे भी ज्यादा जब चार लोग बैठे हो, चारों फोन्स में और बाहर आए हैं कैफे में या रेस्टोरेंट में खाना खाने।
1: जी हाँ जी, ये तो बड़ी पुरानी कहानी है। पांच छह दोस्त हैं, सब लोग नाश्ता करने आए हैं और सब अपने अपने फोन में, तो फिर साथ में आए क्यों थे यार?
0: आए क्यों भाई, घर बैठते। उफ, सच है। आगे चलते हैं सर। आज का जो आखिरी सवाल है वो बहुत ही सिंपल है कि अगर 8 बजे आप इंटरनेट अनप्लग कर दें और सब कुछ बंद कर दें और अपने आप के साथ हों, तो सबसे ज्यादा क्या पाने का की उम्मीद है आपको? वो तो मैं जानती हूँ बहुत कुछ पाने की उम्मीद है, बट स्टिल मैं आपसे जानना चाहूंगी। और सबसे ज्यादा खोने का डर क्या है? कुछ खोने का डर अगर है कि अगर मैं अनप्लग हो जाऊं 8 बजे तो क्या हो जाएगा?
1: नंबर वन,
0: तो वो क्या
1: होगा? या सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज जो आप पाएंगे 8 बजे अगर आपने बंद कर दिया, एक दो दिन की प्रैक्टिस के बाद, ठीक है ना, एकदम तो नहीं, आप बहुत शांति अपने दिमाग में पाएंगे, बहुत शांति। अब ये बात लोगों को समझ में नहीं आएगी, शांति कौन शांति? वो बगल वाले घर में जो बाई आती है वो शांति? नहीं, उस शांति की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। आई एम टॉकिंग अबाउट पीस ऑफ माइंड। ओके, इतना पीसफुल रहेंगे आप कि क्योंकि अभी तो हमें भूख है ना कि क्या फेसबुक पे आया, क्या इंस्टाग्राम पे आया, उस वक्त बिल्कुल पीसफुल हो जाएगा। सो ऑटोमेटिकली आपको किसी भी तरीके के मेडिटेशन टेक्निक की जरूरत ही नहीं होगी। नंबर टू, आप बहुत ही प्यारा सोएंगे क्योंकि आपके ब्रेन में मेलेटोनिन बड़े प्यार से रिलीज होगा जो आपको बहुत प्यार से थपकी देके सुलाएगा। अब आपका जो सवाल था, क्या खोने का डर होगा? नंबर वन, आप कुछ भी नहीं खोएंगे, जीरो।
0: But,
1: कुछ नहीं खोएंगे, जीरो, ट्रस्ट मी। लेकिन ये आपका क्वेश्चन नहीं है, आपका क्वेश्चन है क्या खोने का डर होगा?
0: डर है, वाओ,
1: है ना,
0: हाउ अमेजिंग।
1: डर क्या होगा? आपको खोने का डर होगा, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। पता नहीं किसने फेसबुक पे क्या डाल दिया। अब वो जो दिल्ली में हमारे वो बैठे हुए हैं जो आजकल चल रहा है, अनशन पे बैठे हुए, वो मरने को हो रहे हैं ना, वो मरे कि नहीं मरे, है ना, मोदी जी उनको पानी पिलाने गए नहीं गए,
0: पहुंचे कि नहीं पहुंचे,
1: अरे तुमसे क्या लेना देना यार, तुम्हें इतना ही परवाह हो रही तो तुम चले जाओ गिलास लग पानी लेके पिलाए आओ। तो ये खामा खामे नहीं, आप बताओ ना, ईश्वर ना करे वो साहब गुजर जाए, ईश्वर ना करे, और आपको पता नहीं चला, हाँ, तो क्या मिस कर दिया आपने, क्या हो गया, क्या कर लेते अगर वो गुजर गए, ईश्वर ना करे गुजर गए, तो क्या आप इधर से एक न्यूक्लियर मिसाइल मोदी जी के घर पे डाल दोगे? है तुम्हारी औकात इतनी?
0: एक ओपन लेटर भी लिख पाओगे क्या? हाँ,
1: या फिर बहुत बड़ा आराम का काम करते हैं हम लोग, मोमबत्ती चला के हम सड़क पर चले जाते हैं। क्या सो जो डर है आपका वो सिर्फ यही है कि भैया दुनिया में क्या हो रहा है वो हमें पता नहीं चलेगा, और दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी और हम पीछे रह जाएंगे। अच्छा, मतलब यही डर रह जाएगा आपको, इसके अलावा और कोई डर नहीं रह जाएगा, कोई डर है ही नहीं, सिर्फ यही डर है, फोमो, FOMO।
0: Absolutely, there's only fear, there's no actual missing out.
1: कुछ नहीं, हाँ, और ट्रस्ट मी, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो ना, कुछ नुकसान नहीं होगा। एक हफ्ता करके देख लो, अगर आप कुछ नुकसान हो जाए तो बता दीजिएगा मुझे फोन करके। जैसे मी सर आपने कहा था और नुकसान हो गया साहब हमारा 2 करोड़ का।
0: डन है सर, डन है, डन है। अमेजिंग सर, अमेजिंग इंटरव्यू, एंड बहुत खुशी होती है मुझे आपसे बात करके। मैं चाहूंगी कि जो हमारे श्रोता हैं, जो हमें सुन रहे हैं, प्लीज गेट योर हैंड्स ऑन 8 PM। इससे रेलिवेंट, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, वॉरंटेड, रेलिवेंट, नीड ऑफ द आवर, जो भी मैं एडजेक्टिव्स यूज करना चाहूं, कोई बुक आज के जमाने में नहीं है जो इसका फील है, जो इसकी रीडेबिलिटी है वो इतनी टैक्टाइल है कि एज यू रीड इट आप इमेजिन कर सकते हो सिनेरियोस। जैसे कि सर ने अभी बताया कि एंटेनास खड़े हो गए, तो आई कुड एक्चुअली इमेजिन इट। सो प्लीज गेट योर हैंड्स ऑन दिस ब्यूटीफुल बुक, एंड थैंक यू सो मच समीर सर फॉर दिस अमेजिंग पॉडकास्ट ऑन 8 PM।
1: प्लेजर इज माइन, प्लेजर इज माइन, थैंक यू सो मच। मोरओवर, हाँ, एक बस लास्ट में चीज कहना चाहूंगा, अभी कुछ देर पहले ये वो हो गई थी, पब्लिश हो गई थी, उसके बाद किसी एक फ्रेंड ने जिसको इस बुक के बारे में मालूम था, उसने कहीं की एक न्यूज मेरे को भेजी, महाराष्ट्र में कोई एक गांव है वहां पर उन लोगों ने शायद वो लोग पहले से कर रहे होंगे, वो शाम को 4 बजे से 8 बजे तक इंटरनेट बंद कर देते हैं पूरे गांव में, कंप्लीटली ऑफ उस 4 से 8 मतलब 4 घंटे के लिए वो लोग खेलते हैं, बातें करते हैं, जो भी है। तो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि somebody else is also thinking on these lines। अब मैं अकेला नहीं हूँ।
0: Yes, yes, yes, thinking and to you kudos, hats off that you could actually write about it, जो बहुत important है। अगर ये message 100 में पहुंचे और 100 में से 50 भी इसे आजमाएं और इसे जीवंत कर दें अपने जीवन में, तो I think वो utopian world दूर नहीं है सर।
1: नहीं है, दूर नहीं है। बरोबर, वो utopian world ना तनुषा हमारे अंदर है।
0: True, actually तो yes, we just need to live it,
1: खत्म, yeah।
0: जी
1: चलो,
0: privilege once again। जी,
1: pleasure is mine। कुछ भी value addition मैं कर सकूं तो it would be good।
0: Thank you sir, thank you।

0: समीर सर से आज की बातचीत में हमने सिर्फ एक प्रोफेशनल कहानी नहीं सुनी दोस्तों, बल्कि एक ऐसे इंसान से मुलाकात की जो लगातार सीखता रहा, बढ़ता रहा और अपने अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाता रहा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी जिंदगी के इतने अनमोल अनुभव हम सभी के साथ साझा किए और अपनी खूबसूरत किताबों के जरिए हम तक अपने जज्बात अपने तजुर्बे को पहुंचाया। दोस्तों मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर। मिलेंगे फिर एक नए मेहमान, एक नई कहानी और एक नई जिंदगी के रंगों के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और जिंदगी को दिल से जीते रहिए, क्योंकि जब जिंदगी अनप्लग होती है तभी कहानियां सच में बोल उठती हैं। नमस्कार।
1: दोस्तों एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

सदियों पुरानी बात है। चीन के थिंगजा इलाके के एक राजकुमार की सम्राट के रूप में ताजपोशी होनी थी, लेकिन कानून के मुताबिक उसे इसके लिए पहले शादी करनी थी। एक अक्लमंद मंत्री की सलाह पर उसने प्रांत की विवाह योग्य युवतियों को बुलाकर उनमें से सबसे उपयुक्त को चुनने का निर्णय लिया। राजकुमार के महल में एक बूढ़ी महिला वर्षों से नौकरी कर रही थी। उसकी बेटी भी राजकुमार से मनी मन बड़ा प्रेम करती थी। घर पहुंचकर जब नौकरानी ने राजकुमार की योजना का समाचार बताया तो वो ये जानकर चौंक गई कि उसकी बेटी भी कन्या चयन प्रतियोगिता में शामिल होने का इरादा रखती थी। उसने बेटी से कहा, मेरी बच्ची, दरबार में सब सुंदर और धनाढ्य परिवार की बेटियां होंगी, तुम वहां क्या करने जा रही हो, तुमको तकलीफ होगी। बेटी ने मां को जवाब दिया, मां, मुझे पता है कि मुझको कभी भी चुना नहीं जाएगा, पर मुझे राजकुमार के करीब रहने के लिए कुछ और पल मिल जाएंगे ना, मैं बस इसी में खुश हूं। रात में जब बूढ़ी नौकरानी की बेटी महल पहुंची तो वहां रेशमी कपड़ों और गहनों में सजी धजी तमाम युवतियां इकट्ठी थीं। दरबारियों से घिरे हुए राजकुमार ने घोषणा की कि मैं आप में से प्रत्येक को एक बीज दूंगा, जो युवती 6 महीने में मेरे लिए सबसे सुंदर फूल लाएगी वही चीन की भावी महारानी होगी। उस लड़की ने भी अपना बीज लिया और घर चली आई। उसने बीज को एक फूलदान में लगाया। वो बागवानी ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन बड़े धैर्य और कोमलता से उसने फूलदान की मिट्टी की देखभाल की। उसने सोचा कि अगर फूलों की सुंदरता उसके प्यार जितनी गहरी होती है तो उसे परिणाम के बारे में चिंता करने की भला क्या जरूरत है। मगर कुछ नहीं हुआ। उस युवती ने कई मालियों से सलाह ली, लेकिन सारे के सारे प्रयास बेकार हो गए। 6 महीने हो गए, गुलदान में कुछ भी नहीं निकला। ये जानते हुए कि उसके पास दिखाने को कुछ भी नहीं है, उस युवती ने यह सोचकर महल जाने का फैसला किया कि प्रेमी के दीदार का ही एक मौका ले लूं। महल पहुंचकर उसने देखा, सबके हाथों में गुलदान में एक से बढ़कर एक फूल थे। आखिरकार वो पल आया जब राजकुमार ने सभी फूलों को देखा और आखिरकार नौकरानी की बेटी की ओर इशारा करते हुए उसे अपनी पत्नी बनाने का ऐलान कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने शिकायतें की कि जो एक लड़की इस परीक्षा में नाकाम रही, आपने उसे ही चुन लिया। तब राजकुमार ने बहुत शांति से जवाब दिया, आप सभी में से एकमात्र यही है जिसने उस फूल को विकसित किया, जिसने उसे महारानी बनने के लिए योग्य बनाया। यह है ईमानदारी का फूल, क्योंकि आपको बांटे गए सारे बीज बांझ थे।

लीजिए दोस्तों, मिलिए डॉक्टर प्रदीप सेठी जी से। आजादी के 7.5 दशक में हिंदुस्तान ने कितनी तरक्की की है, इसे देखना है तो गांव में जाइए और किसी स्मृति समृद्ध बुजुर्ग के पास बैठिए, किसी ऐसे बुजुर्ग के पास बैठिए जिनकी याददाश्त अच्छी हो, मजबूत हो। तब आपको सन 1947 से लेकर 2024 तक का देश साफ साफ दिखाई पड़ेगा। हिंदुस्तान महानगरों और शहरों में नहीं है, अपने 6.5 लाख से ज्यादा गांवों में है, मगर इन गांवों की एक टीस बहुत पुरानी है। महानगर और बड़े शहरों ने उनकी अनगिनत संतानों को अपने मोहपाश में ऐसा फंसाया है कि वे अपनी माटी का कर्ज उतारना भी भूल गए हैं। लेकिन डॉक्टर प्रदीप सेठी ने जिस तरह से अपनी माटी का कर्ज अदा किया, उनका गांव पुष्ट दर पुष्ट इसके लिए उन पर नाज करेगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक गांव है, बेरुनपदी। करीब 44 साल पहले इसी गांव के एक बेहद गरीब परिवार में प्रदीप पैदा हुए। तब ओडिशा देश के अति पिछड़े राज्यों में शामिल था। जाहिर है बेरुनपदी भी सड़क, बिजली, अस्पताल, साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से तो बहुत दूर था। प्रदीप के परिवार की माली हालत इतनी खराब थी कि कई बार तो उन्हें फाका कशी से ही गुजरना पड़ता था। एक जोड़े कपड़े में कई कई हफ्ते निकल जाते थे। मगर ये नियति अकेले उन्हीं के परिवार की तो नहीं थी ना। ऐसे में सभी अभावग्रस्त परिवार एक दूसरे को सब्र और उम्मीद की डोर थमाते रहते थे। राहत की बात बस इतनी सी थी कि 1955 से गांव में बच्चों के लिए एक स्कूल की सुविधा थी और प्रदीप के पिता घनघोर गरीबी के बावजूद बेटे को कभी पढ़ने लिखने से नहीं रोकते थे। हालांकि उन्हें कई बार स्कूल से छुट्टी करनी पड़ती क्योंकि मजदूर पिता कभी गाय चराने तो कभी खेतों में घास छीलने की जिम्मेदारी उन्हें दे देते थे। इन सब मुसीबतों के बावजूद प्रदीप की पढ़ाई में रुचि गहरी होती ही गई। करीब 12 साल की उम्र में वो जिस सरकारी स्कूल में पढ़ने गए वहां अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती थी। इससे पहले तो वो सिर्फ उड़िया सुनते थे और बोलते थे। पहली बार यहां उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी सीखी। शुरू शुरू में वो कुछ हिचके, थोड़े झेपे, लेकिन सीखने और आगे बढ़ने की चाह ने उनका रास्ता आसान कर दिया। बहुत जल्द ही शिक्षकों की निगाह में प्रदीप की मेधा आ गई, उन्हें भरपूर प्रोत्साहन दिया। फिर क्या था, छात्र की लगन और शिक्षकों के सहयोग ने एक गरीब बच्चे के दिन बदल दिए। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में प्रदीप बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। 10वीं के बाद से ही उनके मन में डॉक्टर बनने की इच्छा आ गई थी, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई का खर्च उठाना उनके परिवार के लिए आसान नहीं था। प्रदीप ने अपनी पढ़ाई लिखाई से पिता को गौरव के कई पल दिए, इसलिए जो भी थोड़ी बहुत जमीन उनके पास थी बेटे की मेडिकल फीस जुटाने के लिए दांव पर लगा दी। परिवार के इस त्याग से प्रदीप बहुत दुखी हुए, लेकिन अपने भविष्य को लेकर वो आशान्वित थे। वो परिवार की तकलीफ और संघर्ष में बराबर के शरीक रहे। उनके पास जो भी खाली वक्त होता वो उसमें किसी ना किसी तरह की दैनिक मजदूरी कर लेते। एक ऐसा मोड़ भी आया जब सारी कोशिशों के बावजूद चीजें मुश्किल होने लगी और बात उनकी झोपड़ी से निकलकर गांव के चबूतरे पर आ गई। तब गांव के कुछ समर्थ लोगों ने बड़प्पन दिखाया और वजीफे के तौर पर उन्होंने प्रदीप की लगातार मदद की। प्रदीप को हर महीने एक तय राशि मिलने लगी जिनसे वो अपनी किताबें खरीदते और हॉस्टल मेस की फीस चुकाते। अब लक्ष्य सिर्फ MBBS की डिग्री थी। वो जी जान से जुट गए। साल 2004 में MBBS की डिग्री लेने के बाद उन्होंने मास्टर्स कोर्स के लिए देश के प्रतिष्ठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के गुर सीखे। जाहिर है ये ऐसा चिकित्सा क्षेत्र है
जो पढ़ाई लिखाई और खूबसूरती को लेकर सजग दौलतमंदों से ज्यादा जुड़ा हुआ है। लिहाजा प्रदीप के पास प्रस्तावों और मरीजों की कोई कमी नहीं रही। पैसे तो खैर आने ही थे, उनके पास दुबई में क्लिनिक खोलने के लिए रोचक प्रस्ताव आया। लेकिन उसी समय उन्हें आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद की वो लाइन याद आ गई, हर मनुष्य के जीवन का एक बड़ा मकसद होता है। नौजवान प्रदीप के जीवन का मकसद सिर्फ दौलत कमाना तो नहीं था, वो अपनी जड़ों की ओर मुड़े। कैंसर से पीड़ित पिता की दिली तमन्ना थी कि गांव में उनका एक घर होना था। प्रदीप ने घर की तामीर करवाई, मगर उनके बनने के चंद महीनों बाद ही वो इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद प्रदीप ने साल 2016 में उस घर को एक कोचिंग सेंटर में बदल दिया, ताकि गांव और आसपास के बच्चे वहां आकर गणित और अंग्रेजी सीख सके। इसके बाद बकायदा प्रशिक्षित शिक्षक रख दिए गए वहां। सैकड़ों बच्चों की जिंदगी में इस एक कोचिंग सेंटर से आई तब्दीली देखकर डॉक्टर प्रदीप को गहरा सुकून मिला। अब उन्होंने गांव में एक ऐसा स्कूल खोलने का फैसला किया जो गरीब बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा दिलवा सके। उन्होंने गांव की उसी जमीन पर स्कूल बनाने की शुरुआत की जहां कभी दैनिक मजदूरी किया करते थे वो। गांव वालों ने अपने सपूत का बढ़ चढ़कर साथ दिया। कई लोगों ने स्कूल के लिए अपनी अपनी जमीनें दान में दे दी। करीब 10 एकड़ में पिछले साल ही उत्कल गौरव इंटरनेशनल स्कूल वजूद में आ गया। फिलहाल इसमें 450 बच्चे पढ़ रहे हैं, मगर इसकी क्षमता 2500 बच्चों को 12वीं तक शिक्षा देने की है। डॉक्टर प्रदीप सेठी आगे अन्य इलाकों में भी स्कूल खोलेंगे, मगर बैरुनपदी का कर्ज तो उन्होंने अदा कर दिया।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: टीचर ने कहा, होमवर्क क्यों नहीं किया? स्टूडेंट, सर लाइट नहीं थी। टीचर ने कहा, तो मोमबत्ती जला लेते। स्टूडेंट, सर माचिस नहीं थी। टीचर ने कहा, अबे माचिस क्यों नहीं थी? स्टूडेंट, पूजा घर में रखी थी। टीचर, तो वहां से ले आते। स्टूडेंट, नहाया हुआ नहीं था ना। टीचर, नहाए हुए क्यों नहीं थे? स्टूडेंट, पानी नहीं था ना सर। टीचर, पानी क्यों नहीं था? स्टूडेंट, सर मोटर नहीं चल रही थी। टीचर, अब मोटर क्यों नहीं चल रही थी? स्टूडेंट, बताया तो सर, लाइट नहीं थी ना।

वो अभी अभी लौटा है अपने फरिश्तों के साथ, अपनी व्यस्तताओं से अभी अभी आया है बाहर और देख रहा है ये दुनिया। अब देख रहा है वो बेटे की शरारत पहले पहल, वो मुस्किया रहा है हौले हौले।

सम्मान किसे मिलता है? इसका एक सरल सा जवाब है, जो दुर्लभ हो। इसलिए बदलती हुई परिस्थितियों में भी सोने का सम्मान बचा हुआ है। व्यक्तियों के साथ भी ऐसा ही है। यदि आप लगातार नजर आएं, हमेशा इर्द गिर्द रहें, तो तमाम उपयोगिताओं के बावजूद आपकी पूछ कम होती जाएगी। ऊंचाई पर पहुंचने वाला हर व्यक्ति इस नियम पर चलता है, भले ही वह ओढ़ी गई व्यस्तता के आड़ में ऐसा करे। यह बात जीवन के हर एक पहलू में देखी जा सकती है। किसी के घर बार बार जाने पर सम्मान घटने की आशंका होती है ना? प्रेमी प्रेमिका का मिलना जब तक कम होता है, आकर्षण बना रहता है, लेकिन बहुत मिलने जुलने पर आकर्षण कम होने लगता है। इसलिए कभी कभी गायब हो जाना भी आवश्यक है। बाजार में किसी चीज की कमी पड़ जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, बशर्ते वह वस्तु काम की हो। घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी कहावतें सुलभता के संदर्भ में ही बनी हैं। विख्यात चित्रकार पाब्लो पिकासो लोगों से मिलने जुलने से परहेज करते थे। वो कहते थे कि जितनी अधिक खोज के बाद सामने वाला मिले, समझिए वह उतना ही मूल्यवान है। लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि कब गायब होना है और कितनी देर के लिए गायब होना है। सितारों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि ज्यादा दिन तक दूर रहे तो जनता उन्हें भूलने लगती है। इसलिए सोशल मीडिया हो या असल जिंदगी, अति करने से बचे, बीच बीच में अवकाश लेते रहें, अपनी कमी महसूस होने दे और फिर नई ऊर्जा के साथ वापसी करें। पाब्लो पिकासो ही नहीं, कई महान लोग ऐसा करते थे।

आइए दोस्तों आपको मिलवाते हैं जॉर्ज फर्नांडिस जी से, जो हमारे पूर्व रक्षा मंत्री रहे और राजनेता थे। वो 6 लड़कों से भरा पूरा कैथोलिक परिवार था। जॉर्ज, लॉरेंस, माइकल, पॉल एलियासिस और रिचर्ड, सब एक से बढ़कर एक। तब दौर ऐसा था कि दक्षिण भारत में ईसाई परिवारों का बड़ा बेटा धर्म के नाम पर भेंट कर दिया जाता था। वो प्रीस्ट या फादर बनता था। साथ ही हरेक परिवार में एक बेटी नन बनने के लिए भी भेज दी जाती थी। खैर, इस परिवार में तय था कि बड़ा लड़का, जिसे सब गैरी बुलाते थे, धर्म की राह पर ही जाएगा। गैरी ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की तो पिता में तमन्ना जागी कि उसे आगे पढ़ाया जाए। किशोर गैरी भी जान गए थे कि पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे। पेशे से बीमा अधिकारी पिता को एक वकील पुत्र की जरूरत थी, जो उनके लिए मुकदमे लड़ सके। पिता के पास शहर से बाहर एक जमीन थी, जिससे वो किराएदारों को अक्सर बेदखल किया करते थे। आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे और वकील की जरूरत पड़ती थी। बेटे ने साफ मना कर दिया कि वो वकील नहीं बनना चाहता, वो किसी का दिल नहीं दुखाएगा। पिता नाराज हुए, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि कुछ और नहीं तो बेटा फादर तो बन ही जाएगा, धर्म की सेवा में जाएगा, तो भला उससे नाराजगी क्या। फिर एक दिन आया जब बड़ा बेटा मंगलूर से बैंगलोर रवाना हो गया। बैंगलोर में प्रीस्ट और फादर बनने की शिक्षा दी जाती थी। बड़े बेटे की उम्र 16 साल थी। उसके मन में धर्म को लेकर बड़े ऊंचे विचार, स्वप्न और आदर्श थे। बैंगलोर की सेंट पीटर सेमिनरी में एक से बढ़कर एक ईसाई गुरु थे। शुरू में सब अच्छा लगा। समय से जागना, सोना, खाना पीना, पढ़ाई करना, अभ्यास करना। प्रशिक्षक मुस्तैदी से बताते थे कि धर्म की निगाह में सब बराबर हैं, ईश्वर भेद नहीं करता। लेकिन एक दिन अचानक उस किशोर का इस बात पर ध्यान गया कि जब सब बराबर हैं, तो ये श्रीमान टीचर हम सभी से ऊंची जगह पर क्यों बैठते हैं? उन्हें भी हमारे समान बैठना चाहिए ना? क्या वो बहुत ऊंचे हैं और हम छोटे? थोड़ा अंतर तो चाहिए, पर वो अर्श पर हैं और हम फर्श पर, क्या मतलब? सोच की ऐसी एक शुरुआत हुई कि किशोर ने टीचरों की कथनी को उनकी करनी से परखना शुरू कर दिया। सब समान हैं तो प्रशिक्षकों के लिए अलग भोजन क्यों बनता है? धर्म को समर्पित संस्था से ज्यादा समानता तो आम लोगों के घरों में मिल जाती है। हर घर में रसोई में समान भोजन पकता है और सब समान भाव से खाते हैं। ये कैसा धार्मिक कायदा कि गुरु 56 भोग उड़ाए और चेला सूखी रोटी चबाए? कथनी और करनी में बहुत जबरदस्त फर्क। बाकी भी विद्यार्थी थे, भेड़चाल से चले जा रहे थे। सोच रहे थे कि एक दिन उनका भी समय आएगा तो वो भी अच्छा पहनेंगे, अच्छा खाएंगे। इस किशोर का मन उचटने लगा। उम्र के 18 साल पार करते करते वो युवा ईसाई पुरोहित बनने वाले संस्थान से भाग निकला। घर लौटना आसान तो नहीं था, तो मंगलूर में ही मजदूर बनकर आजाद जिंदगी जीने लगा। धर्म का पवित्र आदेश स्वीकारने और फिर पाखंडी करार दिए जाने के डर से घुटन महसूस करने के बजाय उन्होंने दुनिया का डटकर सामना किया। पास में न बिस्तर था, न सर पर छत, सड़कों पर जिंदगी बसर होने लगी। यही वो समय था जब उनकी समाजवादी नेताओं से मुलाकातें हुई, तो जो समता से भरे समाज का सपना देख रहे थे, वो मन ही मन शुरू से ही स्पष्ट हो गए कि शोषितों के हित में उद्योग मालिकों से लड़ना पड़ेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। वो मंगलूर से मुंबई आ गए, वहां भी मजदूरों के लिए झंडा उठा लिया। कुछ ही समय में मुंबई में उन्हें लोग श्रमिक नेता के रूप में जानने लगे। एक समय नारे लगते थे, टैक्सी चालकों का नेता कौन? जॉर्ज फर्नांडिस, जॉर्ज फर्नांडिस। दक्षिण मुंबई जैसे लोकसभा सीट पर उन्होंने कांग्रेस के एक दिग्गज नेता को ऐसी पटकनी दी कि वो फिर उबर नहीं पाया। भारत में रेलवे की पहली और अंतिम हड़ताल का नेतृत्व उन्होंने किया। कई बार जेल गए, आपातकाल के समय भी जेल गए, और जेल में ही उन्हें सूचना मिली कि वो मुजफ्फरपुर से लोकसभा चुनाव जीत गए। पूरे देश को अपना क्षेत्र समझने वाले जॉर्ज फर्नांडिस
तमाम उम्र कुर्ता पजामा और चप्पल में ही रहे। वो देश के रक्षा मंत्री बने, पर कपड़ों पर सिलवटे हों तो कोई बात नहीं, इस देश के आम लोगों और मजदूरों के कपड़ों पर भी सिलवटे हैं। लोगों का नेता लोगों जैसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भूखी जनता के बीच खुद ऊंची कुर्सी पर बैठ जाए और मालपुआ खाए। बेंगलुरु से मुंबई और बिहार तक बार बार याद किए जाने वाले 3 जून को जन्मे जॉर्ज फर्नांडिस कहते थे, इतिहास में रहने के बजाय हमें इतिहास से सीखना चाहिए। रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज़।

0: मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ।
1: दोस्तों, 90 की दशक से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दिव्या ने कई बेहद सफल फिल्मों में अभिनय किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अभिनय किया। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़, तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं, तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं, तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। 1992 से लेकर 1993, यानी कि सिर्फ एक साल में ही दिव्या भारती ने मात्र 19 साल की उम्र में 7 हिंदी फिल्में और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की। इतने कम समय में इतनी सारी फिल्मों करने का उन्हें ये उपलक्ष्य हमेशा दिया गया। लीजिए सुनिए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

sap sunne sarsaye sap sunne sarsaye sai sai surma sa sa sang samaye samay sabak samjhaye khoka khoka ji mera khoka khoka फांसी फंदा फुसकी फांके फुंगी फन फैलाए।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। हालांकि दिव्या भारती को अपने पूरे करियर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को ढूंढ ही निकाला और बॉलीवुड में एक सफल मुकाम बनाया। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम के जो एक्टर हैं उनका नाम है अनिल कपूर। बेहद ही हंसमुख और हमेशा ही जवान दिखने वाले अनिल कपूर बेहद पॉपुलर एक्टर हैं बॉलीवुड के। तो लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अनिल कपूर जी एक पंजाबी हिंदू फैमिली में 24 दिसंबर 1956 को जन्मे थे और तब से लेकर आज तक बस हम सभी का मनोरंजन करते ही जा रहे हैं। लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: यार तुम्हारा कुत्ता तो टाइगर जैसा दिखता है, क्या खिलाते हो तुम इसको? बंदा ने कहा, अरे भाई ये टाइगर ही है, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है।
2: ১৯৮০ के दशक में ढेर सारी फिल्में की अनिल कपूर ने और हम सभी का भरपूर मनोरंजन किया अपने चुलबुले अंदाज में। लीजिए हो जाए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? अनिल कपूर जी ने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस भी की, जिसमें बधाई हो बधाई, माई वाइफ्स मर्डर, गांधी, माई फादर जैसी फिल्में आती हैं।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। एक बार एक सब्जी वाला सब्जियों पर पानी छिड़क रहा था, छिड़कता जा रहा था। काफी देर हो गई तो ग्राहक ने गुस्से से बोला, सुनो अब अगर भिंडी होश में आ गई हो तो 1 किलो तौल दो।

अनिल कपूर जी थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं, जैसे उनकी बॉलीवुड कॉमेडी चमेली की शादी में उन्होंने थोड़ा सा गाया भी था। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उनकी ही फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आज के कलाकार अनिल कपूर जी की फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: करते।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा गजल का कार्यक्रम अल्फाज से एहसास तक। गजलें यानी कि कुछ खूबसूरत अल्फाज, कुछ गहरी भावनाएं और दिल को छू जाने वाली धुनें। तो चलिए कुछ देर के लिए रोजमर्रा की भाग दौड़ को भूल जाएं और खो जाएं गजलों की इस खूबसूरत दुनिया में हमारी ही रेडियो दोस्त आरती जी के साथ।

0: सोच ने आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी को कितना पॉजिटिव बनाया है, बताइए ना हमारे दोस्तों को।
1: मैं बहुत विश्वास करती हूँ कि लाइफ में हमारे लिए दो ऑप्शंस हैं, या फिर पॉजिटिव सोच रखो या फिर नेगेटिव सोच रखो। पॉजिटिव सोच रखने से लाइफ में और थोड़ा ऑप्शंस देखने में मदद होती है और आगे जाने की रास्ता साफ दिखाई देता है। तो इसलिए जब बड़े होने में पढ़ाई लिखने, मतलब एक्स्ट्रा पढ़ने के बाद मुझे अफर्मेशंस के बारे में, ओपनों के बारे में पता चला, आई हैव स्टार्टेड यूजिंग देम एंड इट्स हेल्प मी अ लॉट। सो आफ्टर माय इनिशियल प्रेयर टू गॉड आई रिपीट अफर्मेशंस एंड ओपनों। आई डू दिस इवन व्हेन आई एम ट्रैवलिंग टू ऑफिस और एट वर्क, व्हेनेवर इट गिव्स मी टाइम, व्हेनेवर आई फील आई नीड टू फाइंड सम पीस इनसाइड।
0: ओके, बहुत सुंदर। मतलब आप इसको कहीं पे भी, किसी भी वक्त आप इसको अपने मन में इसका जाप कर सकती हैं,
1: कर सकते हैं, वही तो
0: चांटिंग, यू नो, अपने मन एंड इट रियली क्रिएट्स द मैजिक, आई थिंक सो।
1: एग्जैक्टली, इट हेल्प्स यू काम डाउन, इट हेल्प्स यू बिकम पीसफुल।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आप ये बताइए दीपा कि आप डॉक्टरी के पेशे में जाना चाहती थी, आपने बताया, लेकिन हालात आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन और फिर वॉइसेस से एमबीए तक ले गए, राइट? और अब एक डॉक्टर बनने का सपना देखने से लेकर कम्युनिकेशन की दुनिया में अपनी पहचान बनाने तक का ये आपका जो सफर, ये आपकी जो जर्नी थी, आपके लिए कितना खास रहा, किस नजरिए से देखती हैं आप इसको, क्या कहना चाहेंगी आप इसके बारे में?
1: मेरा बचपन का सपना था डॉक्टर बनना, तो इतना आसान नहीं था उसको छोड़ देना, बट कुछ रीजंस की वजह से मुझे वो सपना छोड़ना पड़ा। फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वो सब्जेक्ट होता है, उसमें मैंने डिप्लोमा किया और उसके बाद मुझे लगा कि कम्युनिकेशन के ज्यादा वैल्यू है जनरल लाइफ में। आप कम्युनिकेशन अच्छे से करते हो तो यू कैन बिल्ड ब्रिजेस, यू कैन बेटर योर फ्रेंडशिप्स, यू कैन इम्प्रूव रिलेशनशिप्स। कोई भी सरकमस्टेंस में कम्युनिकेशन बहुत मायने रखता है। और आपके जो, आपने प्रोग्राम का नाम जो बताया अल्फाज से एहसास तक, सो अपने अल्फाज से हम अपना एहसास बेहतर बना सकते हैं। वी कैन मेक पीपल फील बेटर विद आवर वर्ड्स। So words have a strong power, I mean high power, and it's very essential that we keep our communications clear and honest. So and I believe in prayer, and prayer also is a form of communication with God. Affirmations and open are a kind of communication with self and with others on a soul level. So that is it.
0: Very nice. Deepa, bahut sundar. कई बार हमें जिंदगी जो है उन मोड़ों पर ले जाती है, हम सोचते हैं कि ये नहीं हुआ तो शायद बुरा हुआ, लेकिन असल में हमारी सही काबिलियत निखर कर बाहर आती है जब हम एक दूसरा कोई डिसीजन ले लेते हैं। जैसे आप डॉक्टर ना बन सकी हों, लेकिन आप अपने अल्फाज और अपनी सोच से आपने दूसरों की रूह का जैसे इलाज करना भी तो एक इबादत की तरह ही है। तो और आपने जो अल्फाज से एहसास तक किया, अपना प्रस्पेक्टिव बताया और उसको एक नया आयाम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में आपने इसको सही तरीके से आज बखान किया है इसका, और आई एम सो थैंकफुल टू यू कि ये हमारे अल्फाज ही हैं जो चारों तरफ हमारी वाइब्रेशंस फैलाते हैं यूनिवर्स में, और उसी तरह के एहसासात जो हैं फिर हम फील करते हैं, वो वापस वाइब्रेशंस हमारे पास ही वापस आती हैं जिस तरह के अल्फाज हम बोलते हैं, यही कहना चाहती है ना आप? बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत। तो इसी नोट पर दीपा, सुनते हैं आपकी गाई हुई ये पहली प्रोग्राम की गजल जो है, हम हैं मताए कूचा ओ बाजार की तरह, दर्शक फिल्म की। दीपा आप हमें दो लाइनें इसकी गा के सुनाइए ना।
1: ठीक है।

0: बहुत सुंदर दीपा, आपकी आवाज में एक खास किस्म की रूहानी एक मिठास सी है, और
1: धन्यवाद।
0: ठहरावा आपकी आवाज में बहुत खूबसूरत है। ये संजीदगी और मजरूह साहब के कलाम की मिठास जो थी, आपकी आवाज के जरिए सीधे हमारे रूह में उतर गई। आपने जिस नफासत और दर्द के साथ इसे गाया, सुनकर दिल खुश हो गया। तो दीपा, अब आप चलिए फिर ये गजल सुनते हैं हमारे दोस्तों के साथ।

0: बहुत खूबसूरत। हमारे दोस्तों को भी आपकी गाई हुई ये गजल बहुत पसंद आई होगी। तो दीपा, अब आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप सिर्फ एनवायरनमेंट डे पर बातें करने वाले जो जब भाषण देते हैं लोग, उन जैसी नहीं है, बल्कि आप सच में पौधों की देखभाल करती हैं, बेजुबान जानवरों की बेगरज सेल्फलेस सर्विस करती हैं, बेगरज खिदमत करती हैं, स्ट्रे एनिमल्स और आपके पेट्स जो हैं, आपके पास एक डॉग है और 3 कैट्स हैं के साथ आपका ये खास रिश्ता आपको कितनी खुशी देता है। आप ये सब जो काम करती हैं, आपको कितना इसमें कितना मजा आता है?
1: मेरा ये विश्वास है कि दिस अर्थ इज नॉट जस्ट फॉर ह्यूमन बीइंग्स, इट्स फॉर अदर क्रिएशंस आल्सो, सो प्राणी पक्षी पेड़ सबके लिए है। तो मैं जितना मेरे से बन पड़ता है मैं करती हूँ। जिनके घर नहीं है, प्राणी है, रोड में है, उनको खाना खिलाती हूँ, या फिर जहाँ पे जगह है, जहाँ पे हमें परमिशन मिलती है, वहाँ पे पेड़ लगाने की कोशिश करती हूँ ताकि थोड़ा ऑक्सीजन बेटर हो जाए, ज्यादा हो जाए हमारे लिए। और ये सब करने से मेरे सोल को थोड़ा हैप्पीनेस मिलता है, पीस मिलता है कि मुझसे जितना बन पड़ा मैंने किया। बिकॉज वी नीड टू डू एज मच एज पॉसिबल, हमको प्रकृति इतना देती है, हमें थोड़ा तो वापस देना पड़ता है, तो मैं बिलीव करती हूँ। तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुकून मिलता है।
0: बहुत खूबसूरत ख्याल है आपके। तो सुना आपने दोस्तों, सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होता, असल में आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को ग्रीन रखने के लिए। इस बात पे मुनसर करता है कि आप प्रैक्टिकली करते क्या हैं। ये एहसास ही अपने आप में कितना प्योर एंड सैक्रेड है दीपा जी, कि आप बेजुबानों के लिए दिल में इतनी आप एम्पथी रखती हैं, उनके दर्द को बिना कहे आप समझ लेती हैं, आप बिना किसी स्वार्थ के इंसानियत का सबसे आला बहुत हाईएस्ट धर्म निभा रही हैं। हैट्स ऑफ टू यू।
1: थैंक्स थैंक्स
0: दीपा। अब आप हमें ये बताइए, आपने बताया कि आप स्टिचिंग करके अम्मा डिजाइन के नाम से चीजें बनाती हैं और उनसे मिलने वाले पैसों को जानवरों के इलाज और एनिमल वेलफेयर में लगाती हैं। तो इस प्यारे और अनोखे यानी इस यूनिक इनिशिएटिव को की शुरुआत कैसे हुई, क्या दिल में आया आपके?
1: तो एक तो मैं एनवायरनमेंट से बहुत प्यार करती हूँ, जैसे मैंने बोला हमको जितना बन पड़ता है उतना एनवायरनमेंट के लिए करना है। तो 2006 में जब प्लास्टिक बैग्स बैन हुए, मैंने सोचा कि मैं बैग्स बनाती थी, तो मैंने सोचा ज्यादा करूंगी, तो रिसाइकल मटेरियल से बैग्स बनाती हूँ, प्लास्टिक से, कपड़े से, जो भी मिलता है उसे बैग बनाती हूँ गिफ्टिंग के लिए, या फिर जिनको भी चाहिए वो खरीदते हैं मुझसे।
0: ठीक है,
1: तो ये मेरी तरफ से एनवायरनमेंट के लिए है। और अम्मा डिजाइन्स इज आफ्टर माय मदर, इनिशिएटेड मी इनटू स्टिचिंग, एंड उनका नाम पद्मा था, तो उसका लोगो है, एक लोटस है उनकी याद से, तो बहुत खुशी मिलती है। जितना बन पड़ता है उतना करना अच्छा लगता है।
0: नहीं, बहुत बहुत नेक ख्याल आता है, और आप जो कर रही हैं वो भी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कर रही हैं कि प्लास्टिक बैग ना यूज करो, आप कपड़े का आपने सोचा बनाने के लिए बैग, और अपनी माँ के लिए भी आपने सोचा कि इसी तरीके से अपनी माँ का नाम भी आप आगे लेके जा रही हैं। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका। तो अपनी मेहनत और अपने हुनर को इस तरह से बेजुबानों के फायदे के लिए आप कर रही हैं इस्तेमाल, और आप तो एक बिल्कुल आला दर्जे की मिसाल हैं। तो दोस्तों आइए अब सुनते हैं दीपा की आवाज में आज की दूसरी गजल, जिसे पंकज उदास साहब ने अपनी महबली आवाज से अमर कर दिया था। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है ना दीपा? यही आपने सुंदर सी गजल गा के हमें भेजी है, तो अब हम सुनाते हैं अपने दोस्तों को।
1: ठीक है।

0: क्या बात है दीपा। पंकज उदास साहब की इस गजल के एक एक मिसरे से जो हिजर का दर्द है आपकी सुरीली आवाज ने उसे और भी तासीर बख्श दी। मलिक गायकी बहुत सुंदर। दीपा आपकी शख्सियत का एक और खूबसूरत रंग है आपकी कल और अल्फाजों से आपकी मोहब्बत। ठीक है, तो आपने तीन जुबानों में इंग्लिश कन्नड़ हिंदी में आपने लिखा और आपकी किताब माई रिफ्लेक्शन भी पब्लिश हो चुकी है। साथ ही आप क्रॉसवर्ड और वर्ल्ड गेम्स की भी शौकीन हैं। वर्ड से अल्फाजों से आपकी ये दिलगी ये पैशन कब और कैसे शुरू हुआ दीपा?
1: बचपन से ही, जब हमारे घर में हम स्कूल में थे, प्राइमरी स्कूल में, घर में टीवी नहीं था तो ऑटोमेटिकली रीडिंग और राइटिंग पे ज्यादा ध्यान चलता था और पापा हमको लाइब्रेरी लेके जाते, हम बुक्स लेके आते हैं, कॉमिक्स वगैरह बाकी तरह के बुक्स, और पापा को क्रॉसवर्ड करते देखते तो बहुत फैसिनेट हो गए लैंग्वेज के बारे में। बड़े हो गए तो कॉलेज में, स्कूल में एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन, ऐसे कॉम्पिटिशन में जाती थी, स्कूल से बहुत एनकरेज करते थे। उसके बाद पोएट्री गाना लिखना वो चलता रहा तो टीचर्स बहुत एनकरेज करते थे तो अच्छा लगा, न्यूज पेपर में आर्टिकल्स आए, बुक बना तो अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस, फील्स वेरी गुड।
0: नेचुरली ये तो बात है, थोड़ा सा भी अपना कुछ नाम छप जाता है पेपर में तो दिल बाग बाग हो जाता है। मेरा तो बहुत हो जाता था। मैंने एक अपनी कॉलेज के टाइम में जब पहली अपनी पोइट्री लिखी तो, और वो मैंने एक हिंदी मैगजीन में भेज दी और उन्होंने फिर बाद में मेरी फोटो मंगवाई और मेरी फोटो के साथ वो जब छपी तो हाय हाय, मतलब आई वाज ऑन द क्लाउड 9 कि क्या ही बात।
1: एग्जैक्टली होता है,
0: सेलिब्रिटी बनने की फीलिंग आ जाती है। बहुत खूबसूरत अल्फाज तो दिल का आईना होते हैं दीपा। तीन अलग अलग जबानों में गहराई से सोच पाना और अपने एहसासों को पन्नों पर उतारना आपकी गहरी सूझबूझ है और अल्फाजों पर आपकी महारत को, आपकी मास्टरी को बयां करता है। इट्स नॉट ए यू नो इजी थिंग टू डू लफ्जों के साथ खेलना। आपके अंदर वो जज्बा होता है, वो इनहेरिटेड होता है, तभी आप कर पाते हैं। बहुत। ये बताइए दीपा कि आप एक सिंगल मदर के रूप में, आप एक सिंगल मदर हैं और आप सिंगल मदर के रूप में अपनी बेटी, अपने भाई बहनों और ऊपर वाले के शुक्रगुजार रहते हुए अपनी जिंदगी को पूरी आजादी और सुकून के साथ जी रही हैं। ये बावजूद इसके कि आप सुकून से जी रही हैं, इस आजाद सोच और इतने इंडिपेंडेंट माइंडसेट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी हमारे दोस्तों को?
1: इंडिपेंडेंट रहने में दो तरह की सोच है। एक तो आप अपने दायरे में रहना सीखते हैं और दायरे में रहने का आदत हो जाती है। एक तो उस दायरे के अंदर आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं कर सकते हैं, बन सकते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। उस तरह का स्वातंत्र जब आपको मिलता है तो वट एवर परसूट आई कैन फॉलो, वट एवर ड्रीम्स आई हैव ऑल द फ्रीडम टू फॉलो। आई डोंट हैव टू आस्क एनीबडी फॉर परमिशन, आई डोंट हैव टू वेट फॉर एनीबडीज अप्रूवल और कंसेंट। तो अच्छा लगता है मेरा गाना, मेरा स्टिचिंग करना, मेरा लिखना पढ़ना, कुछ भी जो कुछ भी करना है मैं अपने आप बिना किसी से पूछे कर सकती हूँ।
0: बिल्कुल,
1: तो वो अच्छा लगता है। इट्स अ नाइस फीलिंग।
0: नहीं, ये बात बहुत खूबसूरत है, ऐसा है ये ना, आप अपने दिल से अपनी मर्जी

0: से जब जो चीज चाहे करना चाहे वो कर लें, तो या इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है किसी भी इंसान की।
1: एग्जैक्टली
0: अपने शर्तों पर, अपने असूलों के साथ एक खुदार और खुशहाल जिंदगी जीना ही तो असली कामयाबी है ना दीपा। तो चलिए फिर दोस्तों, आप सुनते हैं दीपा की गाई हुई ये तीसरी बेहद रूहानी गजल, मदन मोहन जी की कंपोजिशन और गुलजार साहब की लिखी हुई एक मशहूर गजल है, रुके रुके से कदम रुक के बार बार चले। ठीक है ना दीपा, तो आइए फिर आपकी गाई हुई ये खूबसूरत गजल हम सबके साथ मिलकर सुनते हैं।

0: वाह, क्या तस्वीर है आपकी गायकी में दीपा।
1: थैंक यू
0: मदन मोहन साहब की इस मुश्किल धुन को आपने ये सादगी और नफासत इतनी एलिगेंस से निभाया है, सुनकर दिल बाग बाग हो गया। बहुत अच्छे दीपा, आप अक्सर कहती हैं कि गाते वक्त गानों के बोल आपको बेहद भावुक कर देते हैं, ठीक है? तो संगीत में आप शास्त्रीय बारीकियों से ज्यादा गानों के बोल और उनके एहसास को तवज्जो देती हैं, ठीक है? यानी गानों के उनके एहसास, उनके इमोशंस को आप इम्पोर्टेंस देती हैं। आप अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं, ठीक है? और भावुक गाने गाते हुए आपने बोला आपकी आंखें अक्सर नम हो जाती हैं। आपकी गहराई से उसको फील करके गाती होंगी तभी आपकी आंखें नम हो जाती हैं। संगीत के साथ आपका ये रूहानी रिश्ता, इतना इमोशनल कनेक्शन कैसा है, आप इसको कैसे देखती हैं?
1: अकेली हूँ तो पेट्स और म्यूजिक आर माय कंपेनियंस एंड म्यूजिक हैज अ वे ऑफ हीलिंग योर सोल, हीलिंग योर हेल्थ एक्चुअली। तो मैं डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गई तो भी म्यूजिक सुन रही थी, ऑफिस में काम करती हूँ तो भी म्यूजिक चलता रहता है। विविध भारती पे ज्यादा मेरा जोर है, आई लव विविध भारती अलॉट। तो गाना सुनती हूँ तो उनके मीनिंग्स पे ज्यादा जोर मतलब फोकस जाता है, तो वो मुझे गाने में भी हेल्प करता है कि कैसे गाना है, नॉट जस्ट सिंग जस्ट लाइक दैट, सिंग विद इमोशन, सिंग विद सेंसिटिविटी। तो ऐसा हेल्प हो जाता है। तो दे से व्हेन यू आर हैप्पी यू सी द ट्यून एंड एंजॉय, व्हेन यू आर सैड यू हियर द लिरिक्स एंड अंडरस्टैंड। तो कैसे रिलेट करता है अपने आप लाइफ को या फिर किसी और जनरल एक्सपीरियंस के लिए के साथ, तो वो बहुत मायने रखता है। दैट इज हाउ म्यूजिक इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ।
0: यस यस, आई कैन अंडरस्टैंड। और दीपा, आप मतलब विविध भारती अभी भी सुनती हैं, यानी कि आप रेडियो के साथ अभी भी कनेक्टेड हैं, राइट?
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो फिर आप तो हमारी SN फैमिली की बहुत खास हमारी मेंबर हैं, जो पहले से ही रेडियो के साथ कनेक्टेड थी और अब आप फिर से SN रेडियो के साथ कनेक्ट हो गई हैं। आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना?
1: बहुत मुश्किल है दोनों के बीच में डिसाइड करना, क्योंकि RSN में भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स आते हैं, बहुत सारे अच्छे गाने वाले गा रहे हैं और बहुत सारे डिस्कशन होता है, बहुत मतलब टाइम लगता है दोनों को।
0: अब हम
1: बहुत बहुत बहुत गोज विदाउट सेइंग, आई नो, वेरी एंगेजिंग।
0: या एक सच्चे फनकार की यही सबसे बड़ी पहचान है दीपा, जैसे आपने बताया कि जब सुर गले से नहीं बल्कि दिल की असीम गहराइयों से निकलते हैं तो आंखें तो खुद ब खुद नम हो ही जाती हैं। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और किसी गाने को गाते गाते आप इमोशनल हो जाएं, ये भी बहुत कई बार हो जाता है। ऐसे मेरे साथ भी ऐसे बहुत बार हुआ। मैं एक गाने को, दिल एक मंदिर के गाने को आज तक नहीं गा पाई। मैं जब भी उसको शुरू करती हूँ मैं बीच में ही रोना शुरू कर देती हूँ, तो मैं नहीं गा पाई उसको। तो ऐसा होता है। तो आइए फिर अब इसी नोट पर आपकी सुनते हैं ये गजल। आपने कौन सी

0: बचपन की उन मासूम यादों को ताजा करती इस गजल को आपकी आवाज में सुनकर गीता दीपा पूरा माहौल ही मखमली हो गया।
1: थैंक यू।
0: आपकी आवाज में एक अजीब सी फितरी सुकून है, यानी नेचुरल सा सुकून है।
1: बहुत लगा सुन के,
0: बहुत बहुत मजा आया। दीपा, अब हम अपनी इस सुहानी महफिल के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं, ठीक है। अब आप हमें ये बताइए कि अपनी शर्तों पर मुस्कुरा कर जीना, ठीक है, बेजुबानों का सहारा बनना और फिर हर पल में पॉजिटिविटी ढूंढना, जो आपने शुरू में जो जिक्र किया था वो क्या है, ओ पोनो पोनो, राइट। ये हर पल में पॉजिटिविटी ढूंढती है ना, आप चैंटिंग करती रहती हैं हर वक्त, आपकी आपके अंदर ही आपकी सांसों में ही बस गया है, ठीक है। तो इतनी पॉजिटिविटी हर सांस में ढूंढना आपकी ही पहचान है, ठीक है। तो अब आप हमें ये बताइए कि रेडियो एसएन के हमारे सुनने वालों के लिए आपका क्या खास पैगाम है, क्या इंस्पायरिंग मैसेज आप उनको देना चाहती हैं?
1: जो भी घटता है उसके पीछे कुछ ना कुछ खास वजह होती है। हमको सिर्फ उसके बारे में सोच के एक ही सिचुएशन में अटकना नहीं है, बल्कि सकारात्मक सोच में रह के उससे क्या भला हो सकता है, उसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये सोच के जीवन बिताना है। We should just see how we can respond to what is happening to us. It's not just what happens to us, it's how we respond to what is happening to us.
0: Okay.
1: So, एक ही sentence में बताऊं तो I believe in saying life is simple. We can just say this too shall pass away. जो भी अच्छा है वो भी कायम नहीं रहेगा, वो भी बीत जाएगा। जो भी गलत हो रहा है, गंदा हो रहा है या फिर दुखद हो रहा है, डिस्टर्बिंग हो रहा है, वो भी परमानेंट नहीं रहने वाला, वो भी जाएगा। तो जस्ट स्टे ग्राउंडेड, प्रे टू गॉड एंड रिमेन पॉजिटिव।
0: क्या बात है, क्या खूबसूरत आपने मैसेज दिया, पैगाम दिया कि जो हो रहा है मतलब आपका कोई इख्तियार नहीं है, अच्छा है बुरा है, दिस टू शेल पास, यू नो दिस इज वॉट टू से, चाहे अच्छा हो रहा है तो ये भी निकल जाएगा, बुरा हो रहा है तो ये भी निकल जाएगा, मुद्दे की बात तो ये है, दिस टू शेल पास, टैग लाइन तो ये ही है।
1: नथिंग इज परमानेंट,
0: नथिंग इज परमानेंट, आई डू बिलीव इन दिस टू शेल पास। मैं भी ऐसे ही, किसी को कुछ कहना होता है, सब्र का पैगाम देना होता है, तो मैं अपने आप से भी बोलती हूँ और किसी और को भी देना हो तो मैं, मेरे पास यही जुमला होता है, दिस टू शैल पास, नथिंग इज गोइंग टू स्टे फॉरएवर। या बहुत खूबसूरत। तो अब दीपा, इस नोट पर अल्फाज से एहसास तक के इस खास शो में आकर आपने इतनी सुंदर, भावुक और इतनी इंस्पायरिंग अपनी जीवन यात्रा हमारे साथ साझी की, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। आप जाते जाते आपकी हम पांचवी गजल सुनाते हैं, वो ये है उमराव जान की, आपने गाई है, शहरयार साहब की लिखी हुई है और खयाम साहब के संगीत से सजी हुई ये एक कालजयी रचना है। तो ये गजल के बोल हैं, ये क्या जगह, ये कौन सा दयार है, आई स्टिल रिमेम्बर, रेखा गा रही है इसको, बाकी ये बहुत एक जबरदस्त, एक
1: बहुत भावुक सॉन्ग है,
0: बहुत भावुक गजल थी ये। तो अब हमें अपने दोस्तों को ये सुनाते हैं, और उससे पहले आप अपने दोस्तों को बाय बाय बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं दीपा।
1: धन्यवाद, और फिर कभी मिलेंगे
0: इंशाल्लाह, क्यों नहीं मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, बारहा मिलेंगे। तो आइए इसी नोट पर हम अब सुनते हैं प्रोग्राम की ये आखिरी गजल हमारी दीपा की रूहानी आवाज में, उमराव जान पिक्चर से। ये क्या जगह है दोस्तों, कौन सा दयार है।

0: सुना आपने दोस्तों, जाते जाते दीपा हमारे को कितनी सुंदर गजल सुना के गई हैं और कितनी पुरसोज और कितनी पुरकश अंदाज से उन्होंने इसको गाया है। आज दीपा दमलेकर से बात करके ये एहसास हुआ कि जब इंसान अपने दिल में पॉजिटिविटी, बेजुबान जानवरों के लिए हमदर्दी और एम्पथी ले रखता है और सुरों की लगन लेकर चलता है तो जिंदगी का हर लम्हा एक खूबसूरत नगमा बन जाता है। आज इसी वक्त मेरे को जो याद आ रहा है इससे इस प्रोग्राम के इब्तदा पर कि मैं अकेला ही चला था जनाबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इस नफीस और सुहानी महफिल के नाम ये मजरू सुल्तानपुरी साहब का बेहद मुकम्मल और खूबसूरत शेर था दोस्तों। इसी प्यारे से ख्याल और उम्मीद के साथ अब आपकी अपनी दोस्त आरती रॉय आपसे चाहती है इजाजत। कल फिर मिलूंगी इसी वक्त किसी और नए एहसास के साथ, किसी और नए अल्फाज के साथ, किसी और नई कहानी के साथ और कुछ नए सुरों के साथ। तो सुनते रहिए 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो टांडिया भी। अपना खूब ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा बहुत ज्यादा, मुस्कुराते भी रहिएगा और बहुत बहुत खुश भी रहिएगा। शब खैर, शुभ रात्रि, रब राखा, फिर मिलेंगे।
1: तो दोस्तों, गजलें खत्म हो जाती हैं लेकिन उनके अल्फाज और एहसास हमारे साथ ही रह जाते हैं। इसी खूबसूरत एहसास के साथ अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी कुछ नई और कुछ दिल के करीब गजलों के साथ। आरती जी फिर से हाजिर होगी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।

रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम।

0: उद्यमिता में नए आयामों को बढ़ावा देने और युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से भी समय समय पर कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनके तहत युवाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता भी दी जाती है। इंक्यूबेशन प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। इन प्रोग्रामों के तहत युवाओं को न सिर्फ नई तकनीक सिखाई जाती है, बल्कि जिन युवाओं के पास पहले से अपनी तकनीक और नए विचार होते हैं, विशेषज्ञों के जरिए उनमें और भी सुधार लाया जाता है। कुल मिलाकर कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप का अपना महत्व है। इससे किसानों और युवाओं को न सिर्फ उद्यमी बनने का मौका मिल रहा है, बल्कि अब युवा अपने मन में आए विचारों को वास्तविकता में बदलकर खुद को आत्मनिर्भर बना पा रहे हैं।
1: तो जाना आपने इस रिपोर्ट के जरिए किस तरीके से जब असीम संभावनाओं की हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र में, वो हमें नजर आती हैं, लेकिन उनको परखने का जब काम किया जाता है या उसके कौशल विकास पर जब काम किया जाता है, ये काम अब बेहतर ढंग से हमारे जो एग्री स्टार्टअप हैं, जो कृषि के स्टार्टअप हैं, वो अब कर पा रहे हैं। इस बारे में सबसे पहले डॉक्टर नीरू भूषण आपसे हम जानना चाहेंगे, एक समय था जब हमारे देश में जो स्टार्टअप हैं वो एक नई बात हो जाती थी युवाओं के लिए, लेकिन आजकल देखा जाए तो युवाओं का रुझान बहुत ज्यादा नजर आ रहा है और उससे ज्यादा रुझान कहीं ना कहीं एग्री स्टार्टअप्स पर भी है।
2: आप अगर डाटा देखें तो हमारे देश में हर दिन 2 से 3 स्टार्टअप बनते हैं
1: जी।
2: और एग्री स्टार्टअप की जो अगर मैं बात करूं तो इसकी बढ़ोतरी पिछले कुछ सालों में 25% ईयर ऑन ईयर हो रही है। और इनको प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि स्टार्टअप्स की जो जर्नी है वो बहुत ज्यादा कठिन है और उनके सामने अनेक चुनौतियां हैं, तो उन चुनौतियों को किस तरीके से पार करने में गवर्नमेंट ने उनकी मदद की है और किस तरीके से, ताकि वो कम से कम वल्नरेबिलिटी स्लैब में आए और उनका रिस्क मिटिगेशन है उसमें हम मदद करें, तो इसमें मैं बात करूंगी आपके साथ, साझा करूंगी कि जो एक महत्वपूर्ण जो स्कीम है जो रफ्तार के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च की थी 2018-19 में, इनफैक्ट दिसंबर 18 में वो लॉन्च की थी, जिसके तहत 29 इंक्यूबेटर्स इन 23 स्टेट्स में एस्टैब्लिश किए गए और ज्यादा से ज्यादा इंक्यूबेटर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज 18 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में बनाए गए और 6 ICR इंस्टीट्यूशंस में और 3 जो थे वो मैनेजमेंट कॉलेजेस में और 2 IITs में बनाए गए। तो इनके तहत तकरीबन हम हर साल 7,000 के करीब स्टार्टअप्स की एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और अभी तक हमने इस प्रोग्राम के अंतर्गत तक ज्यादा 2,500 से ज्यादा स्टार्टअप्स को ट्रेंड किया है। और
1: ये भी काफी चुनौतीपूर्ण और एक बड़ी उपलब्धि, देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो स्टार्टअप्स हैं वो सामने आते हैं और उनमें से चयन करना और उसके बाद उनको स्तर पर आर्थिक मदद देना, इस बारे में यहाँ पर कुलदीप जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे किस तरीके से अगर नाबार्ड की भूमिका की हम बात करते हैं, वो एक लगा हुआ है लगातार कि जो एग्री स्टार्टअप्स हैं हमारे उनमें मदद पहुंचाई जा सके।
3: नाबार्ड जैसे कि आपको पता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, जिसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, कृषि का विकास करना। और विकास में हम बैंकों को जोड़ते हैं, किसानों तक पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी को जोड़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कृषि से पैदावार हमें देनी है और उनको भोजन करवाने के लिए हमें नई तकनीकों को ईजाद करना जरूरी है। नई तकनीक जब ईजाद करने का काम आता है तो एग्री स्टार्टअप जो है वो बहुत ही अहम रोल उनका एक हो जाता है। और ये एग्री स्टार्टअप एक तो रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो कृषि के कार्य हैं, चाहे वह बीज लगाने का काम है, चाहे प्रोडक्शन करने का काम है, चाहे इनपुट सप्लाई का काम है, चाहे मार्केटिंग का काम है, ये जो भी कार्य है वो एग्री स्टार्टअप का मेन मकसद है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जो कि ट्रेडिशनल वे में काम हो रहा है, उन कामों को बहुत ही सहज तरीके में, बहुत ही एफिशिएंट वे में करें और उसमें जो भी ड्रजरी है किसान की वो कम हो
1: जी।
3: और जिससे कि ये कृषि कार्य में जो है नए यूथ भी जुड़े।
1: जी बिल्कुल कुलदीप जी, जैसा आपने कहा क्योंकि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है कि किस दिशा और दशा के साथ जो स्थिति है वो हमारी कृषि की बदल रही है। और खासतौर से डॉक्टर नीरू अगर देखा जाए, क्योंकि आपने बताया कि जो रफ्तार है वो एक कार्यक्रम में शुरू किया गया और उसी रफ्तार में हमने देखा ना सिर्फ रफ्तार बल्कि कोशिश ही की गई कि उसको और ज्यादा पंख दिए जाएं, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया और उसके बाद उड़ान जो है वो हमने देखी।
2: जी इसमें सही बात है जो अभी आपने कहा कि ये एक बहुत ही बड़ा टास्क है। पहली बात तो शुरू में हमें लग रहा था कि कितने स्टार्टअप्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो हम देख करके हैरान है कि तकरीबन अगले तीसरे साल में 10,000 से लोग इसमें एप्लीकेशंस हम रिसीव करते हैं
1: जी।
2: और 10,000 एप्लीकेशंस में से पर तकरीबन हमारा 1,000-1,200 का इनटेक सारे सेंटर्स को मिला करके रहता है, तो ये एक बहुत बड़ा कार्य और चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन।
1: लेकिन अगर एक कुल आंकड़ा आपसे हम जानना चाहें कि अब तक कितने युवा हैं या कितने लोग हैं जो एग्री स्टार्टअप से जुड़े हैं।
2: जी अब अगर मैं स्कीम की बात करूं तो पिछले 2 साल में तकरीबन हम लोगों ने 2,500 से ज्यादा लोगों को स्टार्टअप्स को ट्रेंड किया है और तकरीबन 814 स्टार्टअप्स को फंड किया है
1: जी।
2: और वो फंड 5 से लेकर 25 लाख तक की राशि का है जो कि ग्रांटिंग एड के रूप में है। तो यहां पर चूंकि अगर आप देखें कि ये इनक्यूबेटर सेंटर्स किन संस्थाओं में हैं, तो ये ज्यादातर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में हैं। तो हमारे सामने ये चुनौती थी कि ये जो युवा हैं जो आ रहे हैं बेसिकली ये पढ़े लिखे हैं और 28 साल की एक एवरेज एज के लोग हैं और जिन्होंने 5 से 7 साल नौकरी कर ली है, तो ये बड़े अनुभवी हैं। बट ये देखने में आया कि अगर हम इनका एजुकेशन देखें तो ये ज्यादातर लोग 80-82% तक के लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर से नहीं जुड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर एग्री स्टार्टअप्स को हमें अपने हिसाब से, पर हमें उनकी स्किल सेट चाहिए क्योंकि वो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं, सो अगर हमें एफिशिएंसी एग्रीकल्चर के सेक्टर में लानी है तो इन युवाओं की और एग्री स्टार्टअप्स की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। तो यहां पर इनक्यूबेटर्स के रोल भी बहुत अहम हो जाते हैं क्योंकि एक जो डिस्कनेक्ट है विद द सिस्टम और डिस्कनेक्ट विद द डोमेन, सो यहां पर इनक्यूबेटर्स का रोल बहुत अहम है।
1: काफी अहम भूमिका जो है देखिए वो नजर आती है और हमारे साथ नितिन जी भी जुड़े हुए हैं जो कि एक उदाहरण भी है कि किस तरीके से एग्री स्टार्टअप्स जो हैं वो सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ जो रोजगार के अवसर हैं वो युवाओं को दे रहे हैं। नितिन जी जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से एक सफर आपका शुरू हुआ और खासतौर से क्योंकि स्टार्टअप्स की जब हम बात करते हैं तो कई ऐसे क्षेत्र हैं, लेकिन कैसे आपने कृषि स्टार्टअप का चयन किया?
4: मेन फैक्टर एक कामयाबी के लिए है कि एक राइट प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई करना है। अगर हमारी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ठीक नहीं होगी तो एक स्टार्टअप के लिए आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस तरीके से बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो एक नॉट राइट आइडिया और मे बी नॉट राइट वैलिडेशन के कारण नहीं आगे चल पाते हैं और बहुत दिक्कतों का सामना करते हैं। तो अब मेरे आपका जो एक सवाल था कि कृषि स्टार्टअप से जुड़ने का ऐसा क्या कारण रहा, जब मैं 2007 से मैं कनाडा में था और मैं 2016 में इंडिया वापस लौटा और जब मैं वहां पे रहता था मेरा घर एक फार्म पे था और मैं वहां के जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उसे बहुत ही क्लोजली रूबरू था उनके साथ, जबकि वहां पे किसान जो अपनी जो यूज करते थे स्प्रे के लिए हेलीकॉप्टर्स यूज करते थे, बड़े बड़े जॉन डियर ट्रैक्टर्स यूज करते थे, बट मुझे लगा कि भी हमारा जो किसान है यहाँ पे उनके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और हमारी नीड्स भी डिफरेंट हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि इससे कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आए? तो मुझे लगा कि भी अगर हम रिगार्डिंग हॉर्टिकल्चर अगर इसके अंदर किया जाए जिसके अंदर पानी भी बचाया जाए और वेस्ट को रिसाइकिल करके कुछ प्लांटर जैसे बनाए जाए ताकि एक अनस्किल्ड लेबर भी और अनस्किल्ड लोग भी इसको इजीली टेकअप कर पाए और अपनी रोजगार को बढ़ावा दे पाए, तो ये सब चीजों का एक मिश्रण था जिससे हम एक एग्री स्टार्टअप में पहुंचे और हमने स्पेशल प्लांटर्स बनाए जो कि एक एक हर किसान को जिसको कोई नॉलेज भी नहीं है, कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसको भी हेल्प करते हैं।
1: बिल्कुल ये तो बात हुई किस तरीके से देखिए आपका जो सफर है शुरू हुआ, लेकिन इस सफर में जब हम बात कर रहे थे अभी कि रफ्तार आपका जो कार्यक्रम था ये रफ्तार जो है कहीं ना कहीं इसमें हमारी सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, इस बारे में डॉक्टर नीरू आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कृषि और युवा है वो सरकार की प्राथमिकताओं में से रहे हैं, तो उस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने किस तरीके से जो और कार्यक्रम है वो भी संचालित किए हैं?
2: जी हाँ, जैसे मैंने रफ्तार के बारे में बताया कि ये बहुत ही कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम है और ये स्पेशल एक स्कीम है जिसके तहत हम एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को और एक एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को इस देश के लिए तैयार कर रहे हैं। और जो मैं बताना चाह आ रही थी कि इसमें ये जो स्कीम है ये स्टार्टअप्स के लिए ही है, उनको ही प्रोत्साहन देने के लिए है और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफी मतलब काफी कॉम्पिटिटिव है, जिसमें हम सबसे पहले 5 क्राइटेरियाज हैं जिसके ऊपर हम स्टार्टअप्स को परखते हैं और फिर उनका सिलेक्शन करते हैं, जैसे कि क्या नीड क्या है और जो वो सोल्यूशन दे रहे हैं तो वो क्या अफोर्डेबल है, क्या उसमें इनोवेशन है, क्या नॉवल है, क्या नया है, क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्या ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और इसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, फिर ये टेक्निकली क्या ये सोल्यूशन बनाया जा सकता है, फिर ये स्केलेबल हो सकता है या नहीं और इसकी कितनी कमर्शियल पोटेंशियबिलिटी है, क्या मार्केट है। तो ये 5-6 पैरामीटर्स हैं जिन पे हम हर आइडिया को देखते हैं, हर प्रपोजल को इवैल्यूएट करते हैं और 3-4 लोग एक प्रपोजल को इवैल्यूएट करते हैं, कोई टेक्निकल एस्पेक्ट से, कोई बिजनेस एस्पेक्ट से, कोई इसके नॉवेल्टी के एस्पेक्ट से, सो तब जाकर के इनका सिलेक्शन होता है।
1: यानी जो एक तरीके के मानक हम मान सकते हैं जो कि निर्धारित किए जाते हैं और उन पर अगर आप खरे उतरते हैं, आपका जो स्टार्टअप है वो खरा उतरता है, तो फिर उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। यहाँ कुलदीप जी आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि कैसे कोशिश की जाती है जो हमारे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां भी मदद पहुंचाई जा सके, क्या एक क्रियान्वयन जो है वो हम मान सकते हैं कि जो नाबार्ड है अपनी तरफ से उसमें मदद करता है जो भी इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो।
3: मुकुल जी, नाबार्ड ने दूर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए एक कार्यक्रम चलाया है, एक उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्यक्रम है, दूसरा जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कृषक उत्पादक संगठन है और ये पूरे कंट्री में जो है फैले हुए हैं और एग्री स्टार्टअप जो है छोटे छोटे एग्री स्टार्टअप भी है एक तरह के, जो कि भारत सरकार की 10,000 FPO बनाने की स्कीम के अंतर्गत है
1: जी।
3: और इन स्टार्टअप को फर्दर सपोर्ट करने के लिए इनको एग्री इनक्यूबेशन बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर डिफरेंट एग्रीकल्चर

0: पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: पूजा भाती भाती कोरतेला हमू झाड़े बोईड़ा दोगड़ा पानी ये सब आमरा छे। इनु वाचाड़ीन राखनो अपनी जवाबदारी छे। यो गीत इनु पर आधारित छे। ती शंभु भाष्य।

ब्रेक ने बाद एक बारी फिर था बहुत बहुत स्वागत करिए हैं तमार सबूनो रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर इना खेतीबाड़ी कार्यक्रम मा किसान भाइयों

0: હમણે એક સુંદર શું પ્યારું શું ભીલી ગીતને સાંભળ્યું, એના ગીતને બાદ આપણું આપણી ચર્ચાને આગળ બઢાવીએ અને હમણાં સ્ટાર્ટઅપથી જોડાયેલી હજુ મહત્વપૂર્ણ જાણકારીઓને કિકમ સ્ટાર્ટઅપ કરીને આપણો યુવા જો હમણાં આપણો દેશનો યુવા હે વો આપણે કૃષિમાં કિકમ આગાડી બઢી શકે, આપણો કિસાન એની કૃષિમાં કિકમ આગાડી બઢી શકે, કંઈના કંઈના હજુ આવવાવાળા સમયમાં કંઈના કંઈના મોકા હૈ આપણા ભવિષ્યને સુનહેરો બનાવવાના.
1: लगातार जब इस तरह की बातें सामने आती हैं, स्टार्टअप की बात कहते हैं, एग्री स्टार्टअप की बात कहते हैं, तो ये सिर्फ बातें नहीं है, महज बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो जमीनी स्तर पर भी काम हो रहा है और ये काम सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं बल्कि दूर दराज के जो हमारे गाँव हैं वहाँ तक भी ये काम पहुँच रहा है. यहाँ कुलदीप जी जानना चाहेंगे आपसे हम, जिस तरीके से आपने बताया कि कैसे कोशिश की जाती है, लेकिन एक सीधे तौर पर अगर कोई युवा है वो चाहते हैं कि एक एग्री स्टार्टअप उनका है उसमें उनको मदद मिले, तो क्या वो खुद से भी आपके पास किस तरह का जो आवेदन है कर सकते हैं या बतौर चयन करने के बाद ही जो सारी मदद है एक स्टार्टअप को दी जाती है?
2: अगर कोई युवा अपना एग्री स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है और वो कुछ उसके पास आइडिया है तो जो एग्री इनक्यूबेशन सेंटर नबार्ड ने सपोर्ट किए हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर वो ऑनलाइन भी आवेदन कर सकता है, यहाँ वहाँ फिजिकली जाके भी संपर्क कर सकता है और वहाँ पर अपना आइडिया आवेदन देने के बाद जो है और भी डिफरेंट फोरम है, जैसे सिडबी का ऑनलाइन वो अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह अटल इनोवेशन मिशन है वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं
1: जी,
2: और नबार्ड में भी वो बता सकते हैं कि वो उनको जो है एग्री स्टार्टअप करना है उसके लिए गाइडेंस चाहिए, तो हम भी उनका जो है आवेदन पे विचार करके उसको जो है एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर में फॉरवर्ड कर देंगे
1: जी,
2: और उसके बाद एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन स्क्रीन करेगा कि ये आइडिया फर्दर आगे ले जाने लायक है या नहीं, और उसके बेस पे उसको पहले तो टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत, देन ब्रांडिंग मार्केटिंग और हर तरह की जो भी सपोर्ट की जरूरत होगी उस एग्री स्टार्टअप को प्रदान की जाए अंटिल वो एक रिफाइन होके मार्केटेबल और ऐसा प्रोडक्ट बने जो कि वाइडली एक्सेप्टेबल हो
1: जी. बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से कोशिशें की जाती हैं, इस बारे में डॉक्टर नीरू आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर सबसे ज्यादा एक ज्यादा रुझान जो है वो किस तरह के बिजनेस प्लान जो है वो उसमें युवाओं का नजर आता है, और जो अभी कुलदीप जी जैसा कहा कि ना सिर्फ एक जो आइडिया है उसको पॉलिश किया जाता है बल्कि उनको सारी अगर हम तकनीकी ज्ञान की बात करते हैं या इसके बाद उनको कैसे और ज्यादा उनकी स्किल को इम्प्रूव करना है और यहाँ तक कि उनके जो प्रोडक्ट है उसकी ब्रांडिंग या मार्केटिंग कैसे ये सारी जानकारी जो है वो मुझे होती है
3: जी. जैसा आपने कहा कि किस तरीके का, तो ये बड़ा ही अच्छा ट्रेंड हमको देखने में मिलता है कि पहले अगर 19 की मैं बात करूँ तो ज्यादातर लोग फार्म मैकेनाइजेशन पे बात कर रहे थे, 2021 में चूंकि सप्लाई चेन हमारी डिस्टर्प्टेड थी तो हमने इसमें भी रुझान देखा कि सप्लाई चेन की तरफ जो है वो ज्यादा एप्लीकेशन थे, और इस साल अगर हम बात करें तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर के ऊपर स्टार्टअप्स के एप्लीकेशन सबसे ज्यादा आए और सिलेक्शन भी उनके हुए, और जिसमें उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट का हम सेक्टर ले सकते हैं कि जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट के प्रोडक्ट्स भी और टेक्नोलॉजीज भी
1: जी.
3: तो और तीसरा जो सबसे अच्छा सेक्टर उभर कर आया वो एलाइड एग्रीकल्चर, जिसमें मैं बात कर सकती हूँ कि एग्री एनिमल हस्बेंड्री की, डेयरिंग की, फिशरिंग की, सो जो हमारे जिस तरीके से हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो स्टार्टअप्स भी उसी क्षेत्र में उस साल ज्यादा एप्लीकेशन हम रिसीव करते हैं
1: जी.
3: और जहां तक बात है कि हम उनको वित्तीय सहायता तो देते ही हैं, जो मैंने कहा कि ग्रांटी नेट का सपोर्ट है, लेकिन उससे ज्यादा जो हम उनको तैयार करते हैं कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी वैलिडेशन का काम, उनकी टेक्नोलॉजी में अगर उनका कोई ग्लिच है तो उसके ऊपर काम, क्योंकि जब ये बच्चे ज्यादातर टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो कई बार वो टेक्नोलॉजी तो बना लेते हैं लेकिन उसको एग्रीकल्चर में खेत के अंदर वो मशीन चलेगी या नहीं चलेगी, तो ये सारी वैलिडेशन में हम उनकी काफी मदद करते हैं
1: जी.
3: फिर उसके बाद क्योंकि वो कभी बच्चे गए नहीं होते, ये स्टार्टअप्स कभी उन्होंने फार्मर से बात नहीं की होती, तो हम उनको फार्मर्स तक भी लेके जाते हैं ताकि वहां वो अपनी मशीन को या अपना जो भी प्रोडक्ट है वो फार्मर के सामने रख सके
1: जी.
3: और ताकि फार्मर ये देख सके तो वो बड़े अच्छे अच्छे उनसे प्रश्न पूछता है, तो जिससे स्टार्टअप अपना रिफाइंड करता है सोल्यूशन, और फार्मर्स को भी ये जानकारी हो जाती है कि 20 तरीके की मशीनें हैं, तो दोनों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा काम करता है। तीसरा जो एक बहुत हमारा ये तकरीबन 2 महीने का एग्रेसिव प्रोग्राम रहता है जब हम उनको लेते हैं, तो उसके अंदर पूरे 9 जो हफ्ते होते हैं तो हर हफ्ता एक टॉपिक पे डेडिकेटेड होता है कि एक में हम उनके लिए इंटेलेक्चुअल बौद्धिक संपदा के ऊपर बात करेंगे, फिर फाइनेंस पे बात करेंगे, फिर हम उनको इन्वेस्टर्स तक भी लेके जाएंगे, फिर हम मार्केटिंग पे भी बात करेंगे। तो इस तरीके से हर हफ्ते में फिर हम उनको गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ भी जोड़ते हैं, जैसे जेम की स्कीम पे आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर चूंकि रेगुलेशन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि कहीं जैसे बायोफर्टिलाइजर्स हैं या बायोस्टिमुलेंट्स हैं, तो अभी नया गजट नोटिफिकेशन लास्ट ईयर आया था तो उसके तहत उनको उसमें रजिस्ट्रेशन कराना है, तो या मतलब अगर किसी को सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है तो उससे पहले उनको किसी सेंटर में जाकर के उसका वैलिडेशन कराना होगा, टेस्टिंग रिपोर्ट लेनी होगी। तो इस तरीके से रेगुलेटरी कंप्लायंसेस पे भी हमारा काफी जोर रहता है। दूसरे हम अपने रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में जोड़ देते हैं ताकि वहां पे उनको वैलिडेशन में, फील्ड ट्रायल्स में। तीसरे जो एक बहुत ही अहम बात है वो कॉर्पोरेट्स के साथ, इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट। तो वो एक बहुत, क्योंकि एक तो जब हम इंडस्ट्री के साथ, उनकी जो फील्ड में है उस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करते हैं, जहां पर एक तो उन्हें उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में जानकारी मिलती है कि इंडस्ट्री कैसे सोच रही है, इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, या ये चलेगा या नहीं, या कुछ बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं तो कुछ इंडस्ट्री वाले उनको अपने मार्केट चैनल में स्कोप दे देते हैं कि ठीक है जी, आपकी ये मशीन बहुत अच्छी है तो हमारे इतने सेंटर्स में आप ये मशीन रखिए। तो इस तरीके से उन्हें मार्केटिंग पार्टनर भी मिल जाते हैं। हाँ, मतलब कोई एक ऐसा सेट पैटर्न नहीं है, जिस स्टार्टअप की जैसी नीड होती है और जो रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से हर एक की नीड कस्टमाइज्ड बेस्ड प्रोग्राम्स रहते हैं और उन्हीं की नीड के हिसाब से हम उनको कनेक्टिविटी करते हैं।
1: बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से एक महत्वपूर्ण माध्यम हम मान सकते हैं और लगातार जिसके जरिए कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो युवा हैं वो भी जुड़ते हैं। फिर उनका चयन करने के बाद कोशिश यही कि एक बार जो सफर शुरू हुआ वो खत्म नहीं होता, बल्कि उनको और लगातार ऊंची उड़ान जो है वो भरने के लिए यहाँ जो पंख है उनके और मजबूती लगातार मिलती है। नितिन जी, यहाँ आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने हमें बताया कि कोशिश आप पहले से कर रहे थे लेकिन उसके बाद जब आप खासतौर से पूसा कृषि से जुड़े उसके बाद और ज्यादा जानकारी आपको मिली, लेकिन आज के समय में शायद और भी कई ऐसे युवा होंगे जो आपसे जुड़ने की इच्छा रखते होंगे या आपके पास आते होंगे जानकारी लेने के लिए।
4: अभी हम रिसेंटली, हमने परसों एक एग्जीबिशन खत्म हुआ है हमारा, दिल्ली लैमिनेटरी में हमारा 2 दिन का एग्जीबिशन था। हमारे प्रोडक्ट के देखने के बाद हमारे एक्चुअली कॉन्सेप्ट, वहाँ प्रोडक्ट की बात नहीं हुई, वहाँ ज्यादा कॉन्सेप्ट की बात हुई, जिसके को देख के हमारे साथ बहुत सारे युवा जुड़ भी रहे हैं और आगे भी जुड़ना चाह रहे हैं। कॉन्स्टेंटली हमारे पास कॉल आ रहे हैं कि आप बताइए हम कैसे कर सकते हैं, मैं ये एक्सपर्टीज लेके आता हूँ या मैं ये एक्सपर्टीज लेके आती हूँ। और इवन बॉम्बे से, पौंडीचेरी से कुछ हमारे साथ युवा जो जुड़ना चाह रहे हैं और बहुत जल्दी हम एक उनके साथ बैठ के हम क्या आगे कर सकते हैं मिलके, वो हम इसको आगे डिसाइड करेंगे। फिर परसों ही एग्जीबिशन खत्म हुआ है। तो एक आपको एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा सर, यहाँ पे अभी जैसे जो कुलदीप जी ने कहा और नीरू जी ने कहा कि भी हम ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उसका एक जीता जागता उदाहरण हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही नीरू मैम से भी मैं क्लास में था इन्हीं की और अंडर मेंटरशिप एंड अंडर हर गाइडेंस, और 15 तारीख को कुलदीप जी भी हमारे यहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी कंज्यूमर एक्सपीरियंस सेंटर में विजिट करके गए हैं। तो सिर्फ सपोर्ट नहीं, बहुत अच्छा कॉन्स्टेंटली प्रोएक्शन है जिसके कारण में बहुत उड़ान की जो आपने बात की वो हमें देखने को मिल रही है बहुत जल्दी।
1: जी बिल्कुल, उड़ान और उसके साथ साथ एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो जाहिर तौर पर आपके जरिए मुझे देखने को यहाँ मिल रही है। कुलदीप जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे अभी यहाँ पर नितिन जी ने भी इस बात का जिक्र किया, लेकिन जब हम कोशिश करते हैं कि नई योजना या कोई आइडिया है उस पर हमें कार्य करना होगा, तब वहां कौन से ऐसे मुख्य बिंदु आपको नजर आते हैं कि जिन पर पहली कोशिश ये होती है कि यहां से एक जो पॉलिशिंग वर्क है वो शुरुआत हो जाए?
2: कोई भी एक्टिविटी है, चाहे एग्री स्टार्टअप है, उसको फील्ड तक ले जाने के लिए फाइनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और दूसरा कैपिटल, जो भी एग्री स्टार्टअप है कैपिटल इंटेंसिव चीजें हैं, और आम फार्मर, क्योंकि हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, छोटे फार्मर बहुत है, तो वहां तक वो पहुंचना बहुत ही एक चैलेंजिंग है। और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए नबार्ड इन एग्री स्टार्टअप को पूरा सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, और फार्मर्स को भी आपस में जोड़ता है ताकि एक दो फार्मर जो बड़े फार्मर है वो तो कर सकते हैं, परंतु जब स्मॉल फार्मर्स है 100,000 उनको जो इन एग्री जैसे ड्रोन है, अगर ड्रोन इंडिविजुअल फार्मर के बस का नहीं है अगर उसको पेस्टिसाइड स्प्रे करना है, परंतु अगर ग्रुप में करेंगे तो एफपीओ के माध्यम से और दूसरे माध्यम से जो है ये काफी इकोनॉमिकल बैठेगा। और इसमें जो है नबार्ड अपना जितना भी ग्रांट सपोर्ट है, जो भी कार्यक्रम है, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप का कार्यक्रम है, एफपीओ का कार्यक्रम है, उसके माध्यम से ये फार्मर्स तक एंड टू एंड ले जाएगा। और जो भी तकनीकें हैं, चाहे आप देख लीजिए मिट्टी का जो एक तरह से कितना न्यूट्रिएंट्स है उसके बारे में जो है थ्रू टेक्नोलॉजी बता सकते हैं, परंतु इंडिविजुअल फार्मर्स को शायद वो मुश्किल हो जाएगा, परंतु हम अपने ग्रांट सपोर्ट से सपोर्ट करते हैं कि वो इन चीजों के न्यूट्रिशन सॉयल न्यूट्रिशन के बारे में, क्रॉप हेल्थ के बारे में जाने, और कितना वो जैसे प्रिसीजन फार्मिंग जो है कितना उसको अमाउंट फर्टिलाइजर चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, और ऑटोमेटेड ये चीजें छोटे से छोटे फार्मर तक पहुंचे, और फ्यूचर इन्हीं चीजों का है, और इनको प्रमोट करने के लिए नबार्ड ने एक पहल की है, और फर्दर हम इस जो भी फंड क्रिएट करेंगे उस फंड के माध्यम से इस तरह के एग्री स्टार्टअप को फ्यूचर में और फार्मर्स तक दूर दूर तक ले जाएंगे, ताकि इन स्टार्टअप का रियली में फायदा पहुंचे और रोजगार भी हो ग्रामीण क्षेत्रों में, और जो युवा है उसको एग्रीकल्चर में दोबारा इंटरेस्ट जागे।
1: बिल्कुल, देखिए फायदा तो हो ही रहा है, ना सिर्फ नितिन जी हमारे सामने एक बेहतर उदाहरण है, बल्कि और भी कई ऐसे युवा हैं जो कि लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि ना सिर्फ उनका आर्थिक तौर पर विकास हो सके, बल्कि हमने देखा है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पूरी तरीके से जो बदलाव है वो देखा जा रहा है स्टार्टअप की वजह से। और खासतौर से डॉक्टर नीरू, अगर हम देखते हैं तो कृषि क्षेत्र में कई तरह की जो चुनौतियां हैं वो किसानों के सामने रहती थी, तो उन्हीं चुनौतियों को कोशिश अब की जा रही है कि एक मजबूत कड़ी जो है वो बना दिया जाए, अलग अलग कड़ियों को जोड़कर, और उसी में शायद एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है ऐसी ही हमारी एग्री स्टार्टअप की है।
3: जी बिल्कुल सही कहा कि जो तरीके की जिस तरीके की चुनौतियां किसान को आती हैं, जैसे सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं एक उदाहरण के तौर पे, जैसे हमारा एक स्टार्टअप है किसानों के खेतों में नील गायें या इस तरीके के जो फॉरेस्ट एरिया के आसपास तराई में, तो वहां पे काफी जो जंगली जानवर हैं वो आते हैं और फसल खराब करते हैं। तो इसी तरीके से एक स्टार्टअप ने ऐसा ही एक छोटा सा यंत्र बनाया है जो कि जानवरों को वो अलग अलग, मतलब रात में भी दिन में भी, वो ना तो जानवरों को हार्म करता है ना ही फसल को हार्म होने देता है, जिससे कि वो उसको सेंस कर लेता है कि जानवर आ रहा है, और फिर वो उस तरीके की साउंड सिस्टम और या लाइटिंग पैटर्न इस तरीके से करता है कि जो जानवर है वो दूर चला जाता है।
1: जी, यानी सजग करेगा
3: जी जी
1: हमें भी और जो जंगली जीव अगर आ रहे हैं,
3: हाँ जंगली जीव को भी वापस भेज देगा, क्योंकि जंगली जानवर भी लाइटिंग के पैटर्न से ये उसने आइडेंटिफाई किया, और फिर जो साउंड के पैटर्न से, और वो साउंड और लाइटिंग का पैटर्न बदलता रहता है बार बार ताकि वो अडेप्ट ना हो। तो इस तरीके से ये एक बड़ी छोटी सी बात करी, जैसे अभी हमने कोविड के दौरान देखा कि फार्म मैकेनाइजेशन जो लेबर की प्रॉब्लम थी, और फार्म मैकेनाइजेशन हमारी एक रिक्वायरमेंट है, तो हमने देखी कि डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स, जैसे अभी एक पोटैटो के हार्वेस्टर कंबाइनर जो उसको हार्वेस्टिंग भी करती है, फिर उसको साफ भी करती है, फिर उसको भौरी में भी भरती है, सो एक कंबाइंड मशीन है जो कि लो कॉस्ट है। इसी तरीके से जैसे एक जो शुगर केन की जब हम बिजाई करते हैं तो काफी एक एक फिट का हम लोग गन्ना काटते हैं, वो लगाते हैं, तो उन्होंने छोटे छोटे स्टॉक्स बनाए जिसमें कि काफी वो तकरीबन 4% ही गन्ना लगता है, तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या बीज की जो कॉस्ट है वो काफी कम हो जाती है, यूटिलाइजेशन हमारा ज्यादा
1: हमारी हो जाती है।
3: जी जी जी सो इस तरीके से ऐसे ही कई हैं, और उसके बाद जैसे पोस्ट हार्वेस्ट के दिशा में कुछ पोस्ट हार्वेस्ट की टेक्नोलॉजीज हैं, जो मशीनरीज हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज की लो कॉस्ट कोल्ड स्टोरेज है, ऑनियन के लिए एक स्पेशल कोल्ड स्टोरेज बनाया है जिसकी कॉस्ट तकरीबन 3-4 लाख है, और जैसे एफपीओ का हम कंसेप्ट जो लेकर के आए हैं, बेसिकली आने वाले दिनों में हम ये देख रहे हैं कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी जो स्टार्टअप्स बना रही हैं और एफपीओ का कनेक्ट, मीन्स एफपीओ को वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी चाहिए और स्टार्टअप के पास वो टेक्नोलॉजी है. तो आने वाले दिनों में ये दोनों का कनेक्शन, एफपीओ और स्टार्टअप का कनेक्शन, एक नया रूप लेगा और जिससे कि किसानों को बहुत कम लागत पर और नई तकनीकें मिलेंगी और तब हमारी खेती में भी हम खुशहाली की दिशा में आगे बढ़ेंगे. और जो हमारी गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि डबलिंग द फार्मर इनकम, तो मेरे ख्याल से जब ये दोनों लोग आपस में मिलेंगे जुड़ेंगे तो नई नई तकनीकों का आदान प्रदान होगा और जो फार्मर को जैसे लो कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, उसकी लागत भी कम होगी और जो पोस्ट हार्वेस्ट हार्वेस्टिंग के बाद जो उसकी लागत का अच्छा दाम भी मिलेगा,
1: ये सारे फायदे किसानों को हो सकेंगे. देखिए और सबसे बड़ा फायदा जो यहाँ नजर आता है, किसान को यही जरूरत होती है कि कैसे उसकी लागत कम हो सकती है. लागत जैसे ही कम होगी मुनाफा आपका अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा और जो हमारे एग्री स्टार्टअप है उनको एक समय में देखिए एफपीओ से जुड़ के कितने सारे जो किसान है वो मिल सकते हैं, यानी उनके लिए भी ये एक बेहतर अवसर हो सकता है. नितिन जी आप कितना सहमत हैं इस बात से कि जो हमारे एग्री स्टार्टअप्स हैं वो अगर एफपीओ से जुड़ेंगे या जो एफपीओ में जितनी भी अगर कुछ समस्याएं आती हैं उनके सामने जो चुनौती है अगर वो एग्री स्टार्टअप से जुड़ जाते हैं किसी तरह का वहां पर अगर उनका गठजोड़ होता है तो कितना बेहतर रहेगा ये कृषि के लिए?
4: सर मैं आपको छोटी सी बात इस तरीके से कहना चाहूंगा इसको कि आज की डेट में हम हर चीज की बात कर रहे हैं प्लेटफॉर्म
1: जी,
4: जिसकी भी में हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, हर चीज को आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए. तो एक जो एफपीओ का जो गठजोड़ है ये हमारे जैसे एग्री स्टार्टअप के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिनके साथ हम जुड़ के हम एक दूसरे को सशक्त कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए काम कर सकते हैं और जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज है, जो डबलिंग द फार्मर्स इनकम है उसके अंदर भी कर सकते हैं और डाइवर्सिफिकेशन भी की जा सकती है क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो द की थिंग अगर हमें फार्मर्स की इनकम को डबल करना है. तो जिसके अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का यूज करके एफपीओ को एज अ प्लेटफॉर्म यूज करके हम स्टार्टअप आगे बढ़ सकते हैं और जिसका फायदा एक चौतरफा विकास होगा इसके अंदर. सर
1: बिल्कुल चौतरफा विकास और साथ ही सबका साथ सबका विकास भी, लेकिन जो एक बात आपने कही विविधीकरण जो है वो काफी महत्वपूर्ण है. जिस तरीके से अभी आज का समय चल रहा है कई चुनौतियां भी रहती हैं, इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे और बताएंगे कि किस तरह का आने वाला जो भविष्य है वो और बेहतर नजर आ रहा है ना सिर्फ कृषि का बल्कि जो एग्री स्टार्टअप हैं उनका भी.
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM. आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें.

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: का जो फायदा है वो होने लगता है ना सिर्फ एक गांव में, एक ब्लॉक में, एक जिले में, बल्कि हमारे देश में भी अगर बात की जाए तो हजारों की संख्या में अलग अलग जो स्टार्टअप्स हैं वो काम कर रहे हैं बहुत बेहतरीन। और ये जो काम है सिर्फ घरेलू स्तर पर नहीं है बल्कि धीरे धीरे अपनी पहुंच बना रहा है वैश्विक बाजार में भी। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये स्टार्टअप जो है आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन यहां ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर नीरू जो नितिन जी उन्होंने जिक्र किया विविधीकरण का, सरकार का भी मानना यही है कि हमें कृषि में विविधीकरण को अपनाना होगा और उसके साथ साथ मूल्य संवर्धन जैसी जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनकी तरफ आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ क्या हम मान सकते हैं जो एक्टिव स्टार्टअप हैं उसी पर लगातार काम कर रहे हैं एक तरीके से?
2: जी बिल्कुल, विविधीकरण एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है जिसमें एग्री स्टार्टअप्स भी काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जैसे अगला साल इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट है, सो हम काफी स्टार्टअप मिलेट के देखते हैं जो ना केवल उनकी प्रोडक्शन और बायबैक की किसानों के साथ वो जुड़ते हैं, जहां पे वो उनकी एग्रो मींस की प्रैक्टिसेस की जिससे कि वो ज्यादा पैदावार ले सके। और पर उनसे वो ज्यादातर क्या होता था कि मिलेट धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था क्योंकि कोई खरीददार नहीं था। पर अब ये लोग स्टार्टअप्स ने चूंकि बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं मिलेट बेस्ड जो रेडी टू कुक हैं, रेडी टू ईट हैं, सो वो इनसे फार्मर से लेते हैं और फिर उनसे उनकी प्रोडक्शन भी कराते हैं और उनसे खरीदते भी हैं।
1: और इन दोनों तरह के उत्पादों का निर्यात हमने इस बार देखा है वो काफी बड़ा है।
2: जी जी, तो इस तरीके से एक आम आदमी की प्लेट में भी विविधीकरण हमें भी जो अच्छे जो मिलेट्स खाने के लिए तो अच्छे हैं ही और उनकी डाइजेस्टिबिलिटी और उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी काफी है और स्टार्टअप इसमें काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और साथ ही एक नया आ रहा है कि जैसे AI और ML की बात हम कर रहे हैं जिसमें फोरकास्टिंग कि कब ये अगर डिजीज का कोई अटैक होने वाला है, कुछ ऐसी तकनीकें सामने देखने में मिल रही हैं जो तकरीबन 10-15 दिन पहले फार्मर्स को अलर्ट कर देंगी कि इसमें ये अटैक होने वाला है या आसपास के एरिया में ब्रेक हो रहा है, तो उससे भी वो काफी समय रहते अपनी खेती का बचाव कर सकते हैं।
1: यानी आधुनिक कृषि की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे एग्री स्टार्टअप भी देखिए किस तरीके से उस आधुनिकता को और ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश में लगे हुए हैं, सिर्फ इसके लिए कि जो हमारे किसान हैं उनको फायदा हो सके, चौतरफा विकास हो सके कृषि क्षेत्र का और हमारे जो किसान हैं उनका आर्थिक विकास भी हो। यहाँ कुलदीप जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे आने वाले समय को अगर देखा जाए किस तरह का और बेहतर भविष्य जो है वो नजर आता है आपको इन एग्री स्टार्टअप्स का?
3: मुकुल जी, भविष्य टेक्नोलॉजी का है। जैसे कि आपको पता है हर किसान के पास स्मार्टफोन है और आज जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। इसी तरह एग्रीकल्चर में जो रिफॉर्म होना है जो कि 3 लॉ भारत सरकार ने लाए थे उसी में मार्केटिंग और दूसरी चीज़ें भी एग्रीकल्चर की वृद्धि के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और फ्यूचर एग्री स्टार्टअप का इसलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी एग्री स्टार्टअप के पास है और फार्मर्स को उसकी ज़रूरत है। सिर्फ हमें जो बीच का फासला है वो गवर्नमेंट एजेंसी, प्राइवेट इन्वेस्टर, उनको आके ये अंत तक इन एग्री स्टार्टअप को फार्मर्स तक ले जाना है ताकि ये जो स्टार्टअप है फ्यूचर में एक तो डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम करे और दूसरे उनका जो है फर्दर जो टेक्नोलॉजी एग्री स्टार्टअप को टेक्नोलॉजी प्रॉपर फार्मर्स को टेक्नोलॉजी मिले एंड जो भी फाइनेंसिंग नबार्ड देगा और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट देंगे और एग्री स्टार्टअप्स के माध्यम से एक तो रोजगार पैदा होगा क्षेत्रों में और दूसरे जो भी समस्याएं हैं एग्रीकल्चर की उन पे उनको भी हम काफी हद तक समाधान कर पाएंगे।
1: जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से जो समस्याएं हैं चुनौतियां हैं उनका समाधान अब हमारे जो एग्री स्टार्टअप्स हैं वो ढूंढने में लगे हुए हैं। और यहाँ नितिन जी आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, आप तो लगातार आगे बढ़ ही रहे हैं और आपके साथ और भी कई ऐसे युवा हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय को अगर देखा जाए आप किस तरह का बदलाव देखना चाहते हैं?
4: हमारी जिस तरीके से हमारी ईटिंग हैबिट्स बढ़ रही हैं, जो बदल रही हैं, लोग आज की डेट में ऑर्गेनिक फूड की तरफ बढ़ रहे हैं
1: जी,
4: तो एक मेरा मानना यह है कि अ डिजाइनर रिस्पॉन्स टू अ सोशल चेंज। अब हमारा वो सोशल चेंज आ गया है तो उसके लिए हर तरीके का डिजाइन बदलना पड़ेगा। डिजाइन में सिर्फ चीजों की शेप बदलना नहीं, डिजाइन हमारा एक टोटल डिजाइन है। तो इस ये जो आने वाली जो लहर है इसको देख के हमें ये लगता है कि आने वाला टाइम में जो हम जो एग्री स्टार्टअप्स और भी स्टार्टअप जो हैं, पर खासकर जो एग्री स्टार्टअप हैं, दे आर गोइंग टू बी अ पिवोटल पॉइंट, एक पिवट पॉइंट क्रिएट करेंगे और आगे सस्टेनेबिलिटी के अंदर एक हम बहुत ही बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो हम रोल प्ले करेंगे इस आने वाले टाइम में। और अब जिस तरीके से हमारी कांस्टेंट हेल्प हमें मिल रही है
5: जी,
4: उससे उससे हमारे को और भी हमारे और भी आयाम और रास्ते भी नए खुल रहे हैं सर।
1: जी बिल्कुल नितिन जी, और जैसा हमने आपको पहले भी कहा था, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जैसे आपने जानकारी दी, तो यहाँ एक मुस्कान डॉक्टर नीरू के चेहरे पर भी है कि देखिए जो कोशिश हमने की थी वो रंग लाती हुई नजर आ रही है डॉक्टर नीरू, लेकिन आने वाले समय को अगर देखें और किस तरीके से ऐसी जो कोशिश है वो और कितना रंग लाएंगी।
2: बिल्कुल, ये तो देखिये एक जो स्टार्टअप है वो केवल अपने आप को ही रोजगार नहीं देता है, बट के अपने आसपास के एरिया में भी एक बदलाव की लहर पैदा करता है और 10 से 11 लोग उसके स्टार्टअप में डायरेक्टली उसको वो एम्प्लॉय करता है। सो इसलिए, और ये स्टार्टअप ऐसा नहीं है कि ये शहरों में है, ये स्टार्टअप देश के हर कोने में है, टायर 2 टायर 3 सिटी में है, और चूंकि अगर इन्हें एग्रीकल्चर में काम करना है तो फार्मर के पास तक इनको जाना ही होगा। तो वो सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी के साथ ही नहीं जाते हैं, बल्कि उनके साथ इन्फॉर्मेशन के साथ जाते हैं।

0: स्टार्टअप है, कल को ये कॉर्पोरेट बनेंगे. जैसे अगर आप देखें तो पिछले एक साल के अंदर अभी हमारे डेका मतलब 10 बिलियन डॉलर्स की उनकी वर्थ यूनिकॉर्न नहीं है, वो डेका यूनिकॉर्न्स बन गए हैं. तो अगला यूनिकॉर्न हम देखना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आए और बहुत ही जल्दी आए. उसके लिए ये पूरा राष्ट्र जो है बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है. तो हम
1: इंतजार भी और उसके साथ साथ प्रयास भी किया जा रहा है.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: और खासतौर से जैसे कि आपने जिक्र किया था रफ्तार का या उपजा की हम बात करते हैं, और कृषि हैकाथॉन जैसे जो कार्यक्रम है वो लगातार संचालित
0: जी जी वो सारे ही, क्योंकि लास्ट ईयर हमें हैकाथॉन हम लोगों ने किया जिसमें तकरीबन बहुत हमने नई नई इनोवेशन देखे और उन इनोवेशन को फिर हमने अपने रेगुलर इंक्यूबेशन प्रोग्राम में लिया. वहां से हम लोगों ने उनको आइडेंटिफाई किया और अब हम उनको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और डिफरेंट उनके कनेक्शंस कर रहे हैं. और मैं उम्मीद करती हूं कि जल्दी ही ये रफ्तार ऑलरेडी रफ्तार पकड़ चुकी है, बट अब ये और आगे रफ्तार पकड़ेगी और इस देश के सोशल इंजीनियरिंग में और यहाँ की किसानों की आमदनी बढ़ाने में और बढ़ोतरी करने में चारों तरफ से हम लोग इसमें सहभागिता वो अपनी निभाएंगे.
1: तो देखिये, ना सिर्फ आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, एक सर्वांगीण विकास जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है हमें इन कृषि स्टार्टअप से. और जैसा कि यहाँ कुलदीप जी आपने शुरुआत में ही कहा था कि जो वित्तीय सहायता होती है वो काफी महत्वपूर्ण होती है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में इसका दायरा भी बढ़ाया जाएगा.
2: निश्चित रूप में, क्योंकि मैं बताऊं आपको कि 2004 में हमने वेंचर कैपिटल के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना शुरू कर दिया था. 2016 में नबार्ड वेंचर्स करके एक सब्सिडरी नबार्ड ने बनाई जो कि सिर्फ एग्री स्टार्टअप और इस तरह के वेंचर्स को फाइनेंस करती है. और इसी तरह फर्दर नबार्ड प्रपोज कर रहा है कि एक बड़ा फंड ऑफ फंड आए जो कि इनोवेशन और एग्री स्टार्टअप्स को प्रमोट करे, और फ्यूचर में जितने भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड और एग्री स्टार्टअप जैसे कि यूनिकॉर्न की बात हो रही है, तो एग्रीकल्चर ऐसी चीज है कि जिसमें यूनिकॉर्न बन सकता है, इतनी बड़ी मार्केट है.
1: बिल्कुल.
2: और यूनिकॉर्न बनाने के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए सभी प्लेयर्स हैं, और पेंडेमिक ने ये सिखा दिया कि सब कुछ बंद हो सकता है बट एग्रीकल्चर बंद नहीं हो सकता, और ये ऐसी चीज है जो कि फ्यूचर में भी रहेगी.
1: बिल्कुल, एक बहुत सही बात आपने आखिर में यहाँ कही कि हमने देखा कि किस तरीके से कोरोना कालखंड में भी लगातार सारे जब क्षेत्र बंद थे तो वहां पर अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ कही जाती है कृषि, वो मजबूती के तौर पर रही, और उसी मजबूती का फायदा हम देख पा रहे हैं कि अब भी कृषि क्षेत्र को लगातार मिल रहा है. फिर चाहे हम घरेलू स्तर पर देखें या वैश्विक बाजार की जब भी बात कही जाती है, तो जाना आपने कैसे हमारे जो एग्री स्टार्टअप हैं ना सिर्फ रोजगार सृजन कर रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं सामाजिक विकास की, एक ना सिर्फ क्षेत्र का विकास बल्कि पूरे जब देश के विकास की बात कही जाती है तो वहां भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और आने वाले समय में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे जब यही एग्री स्टार्टअप हमारे देश के अलग अलग जो FPO हैं उनसे जुड़ेंगे, तो एक नए भारत की नई कृषि जो है आत्मनिर्भर कृषि वो हमें जाहिर तौर पर दिखाई देगी. फिलहाल आज हमारे साथ आप सभी जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों ने यहां हमें दी, और हमारे साथ नितिन जी रहे, इनका अनुभव भी हमने यहां पर जाना. जी बिल्कुल, और साथ ही आप दोनों का भी बहुत बहुत आभार, यहां पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों ने हमारे दर्शकों के साथ साझा की.
3: सब दीपेल का आप बहुत बहुत धन्यवाद आलिए, आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, अने साथ ही आप रेडियो टांडिया भील 90.8 FM ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम ने भी धन्यवाद करिए, केम के घनी खरी घनी ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपके हाथे चर्चा थी है. आज आप विस्तृत में जानियो कि जो स्टार्टअप है तो कि कम आप कहीं पर निर्भर रहनी जरूरत नहीं मिले, आप खुद ना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकी, तो इनमें कई बातें आप जाणवी जो है तना बारा में भी आप विस्तार थी जाण्यू है, चर्चा करी है आज ने कार्यक्रम में. तो किसान भाई अमू आशा भी करी है कि आज ना कार्यक्रम थी तमन घणो लाभ थो है, तो इना जो भी लाभ आपन जो भी बात आपने गले उतरी है तेनी बात ने आपू अपना किसान भाइयों हाथे भी साझा करिए, अने अपना जीवन में उतारी आपू भी इनती ही क्लीन इना अपना जीवन में आपू इन बढ़ाए, अपनी खेती में आगाड़ी बढ़ाए. तो किसान भाइयों आजना इना कार्यक्रम में बस एतरूस हमने समय थी गयो है तमारती विदा लेवानो, तमारती फेर काल मुलाकात था है इना समय पर, एतरे बनेला रहो हमारी हाथे रेडियो टांडिया भील 90.8 FM नी हाथे झबवानी आवाज पर.
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें.
5: हंगला किसान भाइयों नो हूँ एक बार फिर थी बहुत बहुत स्वागत करूँ से रेडियो टांडिया भील 90.8 FM पर. रेडियो टांडिया भील 90.8 FM नो यू खेतीवाड़ी कार्यक्रम आपड़ हंगला किसान भाइयों हरू है, हंगला किसान भाइयों ने ખેતીવાડીની જો ભી સમસ્યા

0: आज के कार्यक्रम में चर्चा का विषय है पेड़, पैसा और पर्यावरण। जी हाँ, पैसे पेड़ पर लगना कभी कहावत रहा होगा, अब तो वास्तव में पैसे पेड़ पर लग रहे हैं और इससे पर्यावरण की रक्षा भी हो रही है। जब पेड़ पर पैसे लग सकते हो तो किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने में लगी सरकार इसे बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। खेती के साथ पेड़ पौधों का तालमेल बैठाकर किसानों को ज्यादा लाभ दिलाने के साथ प्रदूषण पर पहरा लगाने का प्रयास ही है कृषि वानिकी। वन प्रकृति के वस्त्र हैं और हमारी जीवन रेखा, साथ ही किसानों की आमदनी का अतिरिक्त स्रोत भी है। कृषि वानिकी में जमीन का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग कर किसानों, खासतौर से छोटे किसानों की आय किस तरह बढ़ाई जा सकती है, उस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आइए देखते हैं।
1: कृषि को तीन हिस्सों में बांट के चलना चाहिए। एक तिहाई जो आप परंपरागत रूप से करते हैं वो खेती, एक तिहाई एनिमल हस्बेंड्री, चाहे आप गाय रखे, भैंस रखे, दूध का उत्पादन करे, मुर्गी रखे, अंडे रखे, लेकिन एक तिहाई उसके लिए आपकी ताकत लगाइए और एक तिहाई आप अपने ही खेत में टिम्बर की खेती करें, पेड़ उगाए, जिससे फर्नीचर के लिए जो लकड़ी लगती है ना वो बने। आज हिंदुस्तान को टिम्बर इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जंगल हम काट नहीं सकते, तो उपाय यही है और उसके लिए भी जमीन खराब करने की जरूरत नहीं है। आज हमारे देश की हजारों लाखों हेक्टेयर भूमि कहां बर्बाद हो रही है। दो पड़ोसी किसान हो, एक तो हमारे देश में सब छोटे किसान है, बड़े किसान हमारे देश में नहीं है, छोटे किसान है, और हमारे देश का पेट भरने का काम भी छोटे किसान करते हैं, बड़े किसान नहीं करते, छोटे किसान करते हैं। दो तीन बीघा भूमि है पड़ोसी के पास, तीन बीघा दोनों भाई हैं, लेकिन बीच में ऐसी दीवार बना देते हैं, बाड़ लगा देते हैं कि दो तीन मीटर उसकी जमीन खराब होती है, दो तीन मीटर इसकी खराब होती है। सिर्फ इसी के लिए अगर एक बार बाढ़ में से हम बाहर आ जाएं और अगर पेड़ लगा दे, एक पेड़ इस वाले का, एक पेड़ उस वाले का, एक इसका एक उसका, और आधे उसके आधे इसके, आप मुझे बताइए जमीन बच जाए कि नहीं बच जाएगी। लाखों एकड़ भूमि आज बर्बाद हो रही है। मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि अड़ोस पड़ोस में अपने भाई हो या और कोई हो, दो खेतों के बीच जो बाढ़ में दो दो पांच पांच सात सात मीटर जमीन खराब होती है उसकी जगह पे पेड़ लगा दें, और वो भी टिम्बर, और सरकार आपको परमिशन दे, आपके घर में बेटी पैदा हुई हो पेड़ लगा दीजिए, बेटी की शादी हो पेड़ काट दीजिए, शादी उतने ही खर्चे में हो जाएगी।
0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस संदेश में मोटे तौर पर दो बातें कही हैं। खेती से बची लाखों एकड़ भूमि बर्बाद हो रही है, उस पर छोटे किसान पेड़ लगाकर उसका सदुपयोग करें और शादी जैसे बड़े खर्चों के लिए आमदनी बढ़ाएं। इसका देश को फायदा ये होगा कि हम लकड़ी के आयात पर होने वाला मोटा खर्च घटा पाएंगे, और यही कृषि वानिकी है।

0: देश के अधिकांश हिस्सों में खेती काफी हद तक बारिश पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश भी बेवफासी हो गई है, इसलिए खेती में किसानों को भारी जोखिम उठाना पड़ता है। कृषि वानिकी का मकसद यही है कि मौसम की मार से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई पूरी नहीं तो काफी हद तक खेत के चारों ओर या फसल के बीच में विधिवत लगाए गए पेड़ पौधों से हो सके। अगर फसल में कोई नुकसान नहीं हुआ है तब तो सोने पे सुहागा। पेड़ किस तरह के लगाए जाएं ये निर्भर करता है मौसम और मिट्टी की गुणवत्ता पर। कृषि वानिकी का मकसद यही पूरा नहीं होता, इसमें जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की भी क्षमता है। इंसान सांस के जरिए वही ऑक्सीजन लेता है जो दिन की रोशनी में पेड़ छोड़ते हैं। इंसान जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है उसे पेड़ ग्रहण कर लेते हैं और पर्यावरण को बिगड़ने नहीं देते। इसके अलावा पेड़ प्रदूषण फैलाने वाले कई तरह के तत्वों से हमारी हिफाजत करते हैं। वे हमें धूल, गंदगी और भौतिक वायु प्रदूषण से बचाते हैं, यानी पेड़ हवा को शुद्ध करने का काम करते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि एक हेक्टेयर घना वन करीब 50 टन धूल साफ कर देता है और उसके बुरे असर से हमारी हिफाजत करता है। पेड़ों से ध्वनि प्रदूषण भी नियंत्रित किया जा सकता है। पेड़ मिट्टी का क्षरण रोकते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार रखते हैं। फसलों के साथ लगाए गए पेड़ न केवल पर्यावरण सुधारने में अहम भूमिका निभाते हैं बल्कि देश में लकड़ी की करीब 65% जरूरत भी पूरी करते हैं। इन सारे फायदों को देखते हुए 1988 में बनाई गई राष्ट्रीय वन नीति में लक्ष्य तय किया गया वन क्षेत्र 33% तक बढ़ाया जाएगा, जो इस वक्त 25% से भी कम है। इस लक्ष्य को पूरा करने का एकमात्र विकल्प कृषि वानिकी है।
1: अभी आपने रिपोर्ट देखी, ये भी देखा कि कृषि वानिकी ऐसी औषधि है जो खेती और पर्यावरण की कई बीमारियों का इलाज करती है। और हालिया रिपोर्ट के अनुसार तो प्रदूषण की वजह से हर साल इस देश में 12 लाख लोगों की मौत हो जाती है। चलिए इस विषय को और भी बेहतर तरीके से समझते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। राकेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि पेड़ों की बात हो रही है और पेड़ तो हमारी परंपरा संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि जो आज की स्थिति है उसको देखते हुए आप हमें समझाएं कि इस पर जोर देना पड़ा कि जो कृषि वानिकी है उसे किसान अपनाए, उस पर एक नीति लानी पड़ी।
2: अगर हमें पूरे चीजों को एक पर्सपेक्टिव में देखना है तो देखना पड़ेगा कि हमारे देश का इतिहास में जाना पड़ेगा
1: जी।
2: जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए, उनके यहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तो जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता हुई उसमें ज्यादा से ज्यादा एक समझिए लकड़ी का यहाँ पर दोहन शुरू हुआ और काफी बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हुई, जिसको कि लकड़ी वो बाहर ले गए, अपने देशों में ले गए जहाँ उसका उपयोग हुआ। ग्रेजुअली हमारी जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है और बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से काफी कुछ जंगल तो जब 60s में ग्रो मोर फूड प्रोग्राम के अंदर भी डाइवर्ट किया गया, और फिर पॉपुलेशन बढ़ते हुए जो एनिमल पॉपुलेशन जो हमारा है, कैटल पॉपुलेशन और आदमी का, दोनों का दबाव लगातार वनों के ऊपर बढ़ता गया
1: जी।
2: उसका परिणाम यह हुआ कि जहां जंगल करीब करीब फॉरेस्ट एरिया हमारे आज जो है 21% के आसपास सीमित होकर रह गए, जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है उसका
1: जी।
2: उसमें तरह तरह की विसंगतियां भी आई और जो हमारे घने जंगल थे, घने जंगल से वो थोड़े से कम घने जंगलों में परिवर्तित हुए और जो और खराब जंगल थे उनकी स्थिति और खराब हुई
1: जी।
2: और जब जमींदारी का उन्मूलन हुआ और जमींदारी उन्मूलन के बाद सरकार ने पूरी जमीन जो बड़े जंगलों वाले जमीन थे उसका अधिग्रहण किया कई राज्यों में, तो उस समय भी अंधाधुंध वनों की कटाई हुई
1: जी।
2: ये 50 के दशक की बात है। उसका सबका परिणाम ये हुआ और लगातार हम 30 आजादी के समय 30 करोड़ थे, आज 125 करोड़ है
1: जी।
2: तो सभी का दबाव का जंगलों के ऊपर, वनों के ऊपर प्रभाव पड़ा और जिसके और हमारी मांग भी बढ़ती गई, जंगल के जो उत्पाद है उसकी मांग बढ़ती गई है। और उन
1: तो रज जी, मैं जानना चाहूंगी कि ये जो दबाव पड़ता गया जंगलों पर और वही मांग भी बढ़ती गई और वनों की जिस तरह से अंधाधुंध कटाई हुई उसका नुकसान किस तरह से हमें उठाना पड़ रहा है।
3: जो पेड़ जो होता है वो उसका पत्ते एंड मिट्टी में उर्वरकता बढ़ाता है और उसका जो बहुत सारे जंगल के किस्म जो प्रोडक्ट है उसी में बहुत सारे गुजारे करते हैं स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स। तो पेड़ जो कम होता है जंगल के साथ साथ इवन जो हमारा खेती में भी जो था पेड़ वो भी कटाई होना शुरू हो गया, तो उसका बहुत कुप्रभाव पड़ा है सॉयल के लिए एंड एग्रीकल्चर के लिए।
1: जी जी जी रिजवी जी, आप भी हमें समझाएं, विश्व पटल को ध्यान में रखते हुए हमें बताएं कि कितना जरूरी है जो कृषि वानिकी है उस पर जोर देना।
4: देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत सरकार और कृषि मंत्रालय को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि भारत दुनिया का पहला देश है जिसने इस तरह की पॉलिसी बनाई
1: जी।
4: और अब उस पॉलिसी का कार्यान्वयन हो रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात यह है कि जैसा कि सिन्हा साहब ने कहा कि जंगल कट गए हैं
1: जी।
4: और रथ साहब ने बताया कि मिट्टी खराब हो रही है और वनों की रक्षा करना बहुत जरूरी है
1: जी।
4: तो कृषि वानिकी ही एक ऐसा रास्ता है जिस पे चल के हम एक तरफ तो अपने वनों को बचा सकते हैं और दूसरी तरफ जो जनता वनों के ऊपर निर्भर करती है उनको भी हम उनके हक से वंचित नहीं करेंगे। वो चीजें वो जो वन से लेते थे वो अब कृषि वानिकी के तरह से उनको मिलेगा
1: जी।
4: दूसरी बात यह है कि भारत सरकार ने बहुत सारी अच्छी योजनाएं चलाई हैं और कृषि वानिकी भारत में मैं कह सकता हूं कि विश्व में अगर ऊपर से चार पांच देशों का हम नाम लें तो उनमें भारत पहले या दूसरे नंबर पे आएगा कई चीजों में। जहां पे अभी और थोड़ा काम करने की जरूरत है हमें, वो जो कि हम भारत सरकार की कृषि मंत्रालय के साथ मिलके उस पे काम कर रहे हैं
1: जी।
4: कि
1: हमने विस्तार से जानेंगे कि क्या कुछ काम इस दिशा में किए जा रहे हैं। सौजन्य जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, बहुत ही पैनी निगाह रखते हैं सौजन्य जी की किस तरह से कार्य हो रहे हैं। तो सौजन्य जी, हमें ये बताएं कि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो कृषि वानिकी के स्तर पर देश में क्या दशा है?
5: कृषि वानिकी का जो स्तर है अभी कुछ इलाकों में तो काफी अच्छा है, जैसे कि अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे और देखेंगे तो वहां पाएंगे कि यमुनानगर नाम का जो शहर है
1: जी।
5: वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है।

0: लकड़ी के लिए, लकड़ी का व्यापार बहुत है वहां पर। और आसपास के जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, वहां से बहुतायत में लकड़ी की वहां पे सप्लाई होती है। इसमें ज्यादातर पॉपुलर जो स्पीशीज है वो वहां पर सबसे ज्यादा सप्लाई होता है। और ये भी कहा जाता है कि यमुनानगर देश भर में करीब 80% लकड़ी प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए सप्लाई करने के लिए जिम्मेदार है। तो अगर इस इलाके में देखा जाए तो कृषि वानिकी काफी फल फूलित रही है पिछले कुछ समय में, लेकिन अगर बाकी जगह की बात करते हैं तो इतना ज्यादा हमें मार्केट नहीं दिखता है कृषि वानिकी के लिए। इसके कारण किसान अक्सर परेशान रहते हैं कि वो ठीक है लकड़ी तो उगाते हैं लेकिन उसे बेचे कहाँ। अब यमुनानगर में भी स्थिति ये बनी हुई है कि पिछले 2014 से वहां पर लकड़ी की कीमतों में भारी गिरावट महसूस की गई। अब वहां पर किसान ये सोच के परेशान है कि अभी उन्होंने करीब 5 साल पहले या 6 साल पहले जो पेड़ उगाए थे खासतौर से पॉपुलर के और कुछ हद तक यूकलिप्टस के भी, तो उसको अब बेचने के लिए वहां पर पर्याप्त उन्हें कीमत नहीं मिल पा रही है।
1: बिल्कुल, तो पर्याप्त कीमत नहीं मिल रही है और बाजार को लेकर भी एक समस्या है। राकेश जी हमें ये बताएं यहाँ पर कि ये जो राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति आई है इसके साथ किस तरह का जो लक्ष्य है वो रखा गया है और इतने दिनों में किस तरह की प्रगति हुई है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
2: नहीं, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति को लाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि कृषि वानिकी पे अभी किसी भी डिपार्टमेंट का स्पेसिफिक फोकस नहीं था भारत सरकार में
1: जी।
2: तो चूंकि कृषि वानिकी एक तरह का जो है वो फार्मिंग सिस्टम है, उसको देखते हुए केंद्र शासन ने निर्णय लिया कि कृषि मंत्रालय इसको आगे लेके चलेगा। और उस नीति के तहत सबसे पहले तो एक मुद्दा है कि कृषि वानिकी को एक प्लेटफॉर्म किस तरह दिया जाए, उसको आगे किसानों के बीच कैसे लोकप्रिय बनाया जाए, साथ साथ उसमें इस क्षेत्र में और जो भी विसंगतियां हैं, जैसे कई सारे नियम कायदे कानून ऐसे हैं जो काफी पुराने हैं और वो कृषि वानिकी को सीधा इफेक्ट करते हैं, सीधा किसानों को इफेक्ट करते हैं। जैसे काटने की, अगर पेड़ लगाया तो उसको काटने की अनुमति के लिए उन्हें हर राज्य में राजस्व अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है, उसके कारण उसमें समय लगता है कि और किसानों को परेशानी भी होती है। दूसरा, उस लकड़ी को कहीं ले भी जाना है तो वन विभाग से अधिकांश लकड़ियों में पूरे देश में एक ट्रांजिट पास लेना पड़ता है। अब ट्रांजिट पास में भी एक राज्य में से दूसरे राज्य जाने पर हर स्टेट में उसको पासेज को बदलना है, तो कई तरह की विसंगतियां आती गई हैं। उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाई गई है और पॉलिसी बना करके कोशिश किया जा रहा है कि ये सारी जो विसंगतियां हैं जो किसानों को परेशानी है उस परेशानी को दूर किया जाए।
1: जी बिल्कुल, तो विसंगतियों को दूर करने का लक्ष्य भी रखा गया है। साथ ही रथ जी 33% का भी लक्ष्य रखा गया है और अब तक जो प्रगति हुई है उसे देखते हुए आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कब तक इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा?
3: नहीं देखिए, इसमें लक्ष्य तो एक्चुअली 33% वो तो पूरा एनवायरमेंट फॉरेस्ट का, जो हमारा जो फॉरेस्ट एरिया भी है, नॉन फॉरेस्ट एरिया, वो तो लक्ष्य है, पूरा देश का लक्ष्य है। हमारा जो लक्ष्य है, हम कृषि के एरिया के अंतर्गत लैंड एग्रीकल्चर लैंड में कैसे उस टारगेट को कंट्रीब्यूट करेंगे
1: जी। क्या उसके लिए भी कोई खास लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि कृषि में कितने पेड़ों को लगाया जाना है?
3: अभी हमारा जो प्रोग्राम जो अप्रूव हुआ है इसमें करीब हम लोग लक्ष्य रखे हैं 4 लाख हेक्टेयर को अभी 4 साल के अंदर इसको कवर करना है
1: जी।
3: उसके अतिरिक्त इतना हो सकता है जैसे कुछ फैलो लैंड लगा है उसमें ब्लॉक प्लांटेशन वगैरह कुछ हो सकता है, दूसरे कोई योजना के साथ और कोई कन्वर्जेंस के साथ भी कुछ अतिरिक्त एरिया भी लाने के भी प्रयास की जा रही है
1: जी। तो ये जो 4 साल में 4 लाख पेड़ों का लक्ष्य रखा गया है उस दिशा में अब तक कहाँ तक हम पहुँच पाए?
3: 4 लाख हेक्टेयर का
1: जी जी, तो उस दिशा में कहाँ तक पहुँच पाए हैं
3: अभी? तो ये 16-17 में ही प्रोग्राम का अप्रूवल मिला है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
3: ये अभी हम प्रोग्राम प्लानिंग कर रहे हैं सारे स्टेट को, हमें नर्सरी बनाना, क्योंकि पेड़ को तैयार भी करना चाहिए, उसको सीडलिंग वगैरह नर्सरी तैयार करना है। अभी प्लानिंग प्रोसेस, एरिया सिलेक्शन ये सारे हो रहा है, ये प्रथम साल है, तो इस साल हम मोस्टली नर्सरी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे और कहाँ कहाँ एरिया में प्रायोरिटी एरिया जहाँ जहाँ प्लांटेशन किया जा सकता है उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए कोशिश करें। नेक्स्ट ईयर से प्लांटेशन का काम शुरू किया जाएगा
1: जी। बिल्कुल रिजवी जी, अभी हमें बताएं, आप बता रहे थे कि किस तरह से जो आपकी संस्था है वो क्या कार्य कर रही है, हम और विस्तार से जानना चाहेंगे कि भारत में कृषि वानिकी को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं।
4: देखिए, हमारे सभी साथियों ने अभी कहा कि पेड़ लगाने की ज्यादा जरूरत है
1: जी।
4: और लाख हेक्टेयर की बात हम कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
4: और उसके लिए रथ साहब ने कहा कि हमें नर्सरी बनानी होगी और पौधे बनाने होंगे लगाने के लिए। तो जो सबसे बड़ा काम होना है वो ये है कि ये जो नर्सरी है और पौधे हैं ये कौन बनाएगा और किस तरह के पौधे बनेंगे, क्योंकि जरूरी सिर्फ ये नहीं है कि आप पेड़ लगाएं, जरूरी ये है कि किस तरह के पेड़ लगा रहे हैं आप, उनकी क्वालिटी क्या है
1: जी।
4: तो ये धान गेहूं नहीं है कि हमने लगाया और छह महीने में काट लिया। पेड़ लगाएंगे किसान तीन साल चार साल वेट करेगा, फिर उसको पता लगेगा कि इसमें तो फल नहीं आ रहे
1: जी।
4: या उसने जिस काम के लिए लगाया था वो उसको नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि इसकी क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, इसका क्वालिटी कंट्रोल कैसे हो और कैसे क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जो है वो किसानों तक पहुंचाया जाए। तो एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है जो हो रहा है और इसको और बड़े स्केल पे करना है। दूसरी बात
1: जी, क्या आपने भी पाया किसानों में किसी तरह की झिझक है इस बात को लेकर?
0: किसानों में थोड़ा कंफ्यूजन जरूर है कि अगर पहली बात तो ये इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि उनको कीमत क्या मिलेगी।
1: अच्छा,
0: ये उनको मन में एक भय भी है कि हम पांच साल मेहनत करें, इतना इन्वेस्टमेंट करें उसमें, उसके बाद अगर हमें कीमत नहीं मिली तो फिर हम अपना जो हमने जो लगाई है, जो पैसा लगाया है वो कैसे वापस मिलेगा
1: जी।
0: ये सबसे बड़ा उनके सामने एक सवाल है। दूसरी चीज ये है कि जैसे कि मैंने शायद पहले भी कहा कि मंडी का ना होना, आसपास मार्केट का ना होना एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आया है
1: जी।
0: उसके अलावा सेना जी ने भी बताया कि जैसे कि ट्रांजिट पास का प्रॉब्लम है, यमुनानगर में मुझे खासतौर पर देखने को मिला जहां मुझे ये बताया गया कि पहले ट्रांजिट पास की जो वैल्यू थी उसे मंडी समिति शुल्क भी कहते हैं, वो पहले 35 रुपये पर टन था, अभी बढ़कर 75 रुपये पर टन हो चुका है। तो ये सारी समस्याओं से किसान अभी जूझ रहे हैं। दूसरी बात है पानी की समस्याएं भी होना, जैसे कि एक काफी अच्छा उदाहरण मुझे बुंदेलखंड में देखने को मिला। वहां पर करीब 33 एकड़ में एक किसान भाई ने यूकेलिप्टस की फार्मिंग की हुई है।
1: अच्छा।
0: और ये उनका खुद का इनिशिएटिव है, हालांकि उन्हें काफी मदद मिली, आर्थिक मदद अपने रिलेटिव्स से मिली।
1: अच्छा।
0: लेकिन उनका कहना था कि अगर यहाँ पर मार्केट होता तो और किसान भाई भी इससे इंस्पायर होते
1: जी।
0: और वो शुरू कर सकते थे कृषि वानिकी को।
1: बिल्कुल। तो सिद्धांत साहब, हम देख रहे हैं कि अलग अलग एजेंसियां जो है वो इस दिशा में काम कर रही है, उनके अपने कुछ परिणाम जो निकल कर आए हैं उसके बारे में भी वहां भी पता होता है, लेकिन क्या इस तरह से जो सभी एजेंसियां हैं उसके बीच एक तालमेल हो, क्या उसका भी कोई तंत्र है?
2: नहीं, समन्वय स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने एक अपना जो है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बना रखा है अपने स्तर पे, भारत सरकार के स्तर पर, जिसमें सचिव कृषि की अध्यक्षता में एक समिति है जिसमें जितने भी जो विभाग इसमें काम कर रहे हैं उनके प्रतिनिधि भी हैं, साथ में इकराफ के प्रतिनिधि हैं जो यहां विश्व वानिकी केंद्र के भी प्रतिनिधि हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के प्रतिनिधि हैं और एनजीओज के भी लोगों को रखा गया है, और जिससे कि एक समन्वय राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाए और एक दिशा, एक निर्देश कार्यक्रम को एक दिशा दी जा सके। जहां तक क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर व्यवस्था है तो वहां जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी है जिसमें, चूंकि जिलाध्यक्ष एक फोकल प्वाइंट है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में और सारे कार्यक्रम वहीं पर कन्वर्ज करते हैं, तो वहां पे किस योजना से कहां पर क्या लगाया जाना है इसकी पूरी की पूरी रणनीति तैयार करके उसको विभिन्न विभागों के माध्यम से, जिनके पास भी बजट उपलब्ध है और कृषि वानिकी की राशि भी राज्य सरकार डिसाइड करती है किस विभाग से कराना है, वहां पर जाकर के एक कन्वर्जेंस के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जाती
1: है जी। तो ये एक अच्छी पहल हो रही है कि तमाम तरह की एजेंसियां एक साथ काम कर रही है और एक तंत्र तैयार किया जा रहा है ताकि सभी अपनी जानकारियों को साझा कर सके और उसी के आधार पर आगे की भी रणनीति तैयार करें।
5: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
6: आज ये कोहड़े लेन कई सालियो भाई
7: लाकड़ा वाटवान का हो भाई
6: उबर थोड़ी बार मारे बात हम ले पंच दस दे।
7: अरे नहीं नहीं नहीं भैया वाट दे रोटा हमने कर लिया बालवानो गरीबी ने मलाई
6: हो

0: है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: दुष्प्रभावों से निपटने के लिए एक ही रास्ता है, पेड़ लगाना। कृषि वानिकी यानी खेती के साथ साथ पेड़ पौधे लगाना इसका सबसे अच्छा रास्ता है। केंद्र सरकार कृषि वानिकी को बढ़ावा देने की पुरजोर कोशिश कर रही है। 10 फरवरी 2014 को केंद्र सरकार ने दुनिया में सबसे पहले राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति लागू कर बढ़ते तापमान की समस्या से निपटने की अपनी प्राथमिकता जाहिर की। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति लागू होने से किसानों की कई दिक्कतों का समाधान हुआ है। कृषि वानिकी पर व्यवस्थित तरीके से काम 1983 में शुरू हुआ, जब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बाकायदा इस पर रिसर्च शुरू की, और फिर 1988 में झांसी में कृषि वानिकी के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। कृषि वानिकी में आमतौर पर इमारती लकड़ी या दूसरे कामों में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी के पौधे लगाए जाते हैं। इनमें यूकेलिप्टस और पॉपुलर काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन किसान आंवला, अमरूद, नीम या फिर दूसरे पेड़ भी लगा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में मौसम अलग अलग है, मिट्टी की गुणवत्ता भी अलग अलग है, इसलिए वैज्ञानिकों की राय पर किसान पेड़ भी अलग अलग लगाते हैं। आंवला, अमरूद, नीम या फिर दूसरे पेड़ों को बहुत ज्यादा देखभाल की भी जरूरत नहीं होती और अतिरिक्त आमदनी भी अच्छी हो जाती है। एक हेक्टेयर खेत की मेड़ पर आंवले के पेड़ लगा दिए जाएं तो इनसे हर साल 30 से 60 हजार रुपए की अतिरिक्त आमदनी ली जा सकती है। इसी तरह अमरूद से 6 हजार तक और नींबू से 10 से 12 हजार रुपए तक की आमदनी हो सकती है।
2: तो अब ये आपने ये रिपोर्ट देखी, दुनिया में भारत पहला देश है जिसने राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति लागू की है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दुगनी करने के लिए कृषि वानिकी को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। सिन्हा जी, ऐसे में हमें ये बताएं कि पिछले 2.5 सालों में पहले की तुलना में किस तरह के परिवर्तन आए हैं?
3: पिछले 2.5 सालों में अभी अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस काफी आ रहे हैं, जैसे कि कई राज्यों ने अपने जो है ट्रांजिट रूल्स में काफी सारा सुधार किया है। जैसे मध्य प्रदेश में जहां पहले सिर्फ 6 प्रजाति के वृक्षों की लकड़ी को आप बिना किसी ट्रांजिट पास के ले जा सकते थे, आज की स्थिति में उन्होंने 58 प्रजाति को बाहर कर दिया है। तमिलनाडु ने इसी तरह 36 प्रजातियों को बाहर किया, गुजरात ने करीब 78 प्रजातियों को बाहर कर दिया है, और इस तरह कई राज्य लगातार जो है उनके साथ बातचीत करके

0: जिससे किसानों को लकड़ी के ट्रांजिट पास के लिए कहीं भटकना ना पड़े, सीधा वो लकड़ी अपना काटे और जहां जिस मंडी में उनको बेहतर मूल्य मिले वहां जाके बेच सकते हैं। तो ये तो एक मुद्दा है। दूसरा है कि सभी लोग जो है अब ये बात करने लगे हैं कि इसको किस तरीका से अधिक फ्रीडम दिया जाए, फ्री करके, ताकि इसका जो हम इम्पोर्ट बहुत बड़ी मात्रा में लकड़ी का इम्पोर्ट हमारे यहाँ बढ़ते जा रहा है
1: जी, जी।
0: तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए इसका यूज कैसे किया जाए। आज भी आप देखिए कि जो यहाँ की डिमांड है लकड़ी की, उसके 65% डिमांड जो है वो कृषि वानिकी आउटसाइड फॉरेस्ट से ही मीट आउट कर रहा है और इम्पोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके लिए स्कोप बहुत ज्यादा है
1: जी।
0: और इसे देखते हुए और इसी को देखते हुए मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमने अभी विश्व समुदाय के सामने जो अपना लक्ष्य बताया है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, उसमें हमने कहा है कि 2030 तक हम 3.2 बिलियन टन कार्बन सिक्वेस्ट करेंगे और उसके तहत कृषि वानिकी एक बहुत बड़े उसका एक कंट्रीब्यूट करने जा रहा है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए।
1: बिल्कुल, और किसानों के फायदे की बात आपने कही है कि किस तरह से आयात बड़े पैमाने पर हो रहा है लकड़ियों का, लेकिन अगर यहीं पर घर में ही अगर वो लकड़ियां उपलब्ध हो जाए तो यहां के जो किसान हैं उनको भी एक बड़ा बाजार मिल जाएगा। तो रत जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि किसानों को ये बात कहां तक समझ में आई है कि दरअसल जो पैसे हैं वो पेड़ पर उगते हैं उनको मिलेंगे।
2: देखिए, आप जो पहले सिन्हा साहब को जो पूछे थे 2-2.5 साल में क्या क्या काम हुआ है, इस संदर्भ में बताना चाहूंगी कि आपके एक नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है।
1: अच्छा।
2: जो क्लाइमेट चेंज का को रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करने के लिए प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हमारा एकीकृत कृषि रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा दे जाता है। तो 2-2.5 साल में हम एक, जब से हमारा ये पॉलिसी आया है नेशनल एग्रोफॉरेस्ट्री पॉलिसी, हम उसके अंतर्गत भी ये इसको प्रमोट करने के लिए काफी प्रयास किए हैं। लास्ट 2-2.5 साल में करीब 30,000-40,000 हेक्टेयर इसके अंतर्गत आया, जिसमें हॉर्टिकल्चर भी है, कुछ मेडिसिनल प्लांटेशन भी है, वुड बेस्ड प्लांटेशन भी है, वो सब शुरू किया गया है
1: जी।
2: बाकी जो आप ये कर रहे थे, जो किसान का इनकम के बारे में जो है, क्योंकि मेन जो समस्या जो है बारिश का, आजकल इतना परिवर्तन हो रहा है, कभी टेम्परेचर का वृद्धि हो रहा है, कभी बीच में ड्राई स्पेल बहुत हो रहा है, तो कभी कभी छोटा किसान का जब खेत क्रॉप जब डैमेज हो जाता है उसको कुछ नहीं मिलता है
1: जी।
2: ये जब खेत में कुछ बाकी कुछ हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन हो या ट्री बेस्ड कुछ है, उसको एटलीस्ट कुछ तो इनकम मिल जाता है उसके अंतर्गत, तो ये उसका सहायक होता है। एंड उसके अंदर सॉइल में भी जो ऑर्गेनिक मैटर का वृद्धि होता है, कार्बन कंटेंट वृद्धि होता है, उसका पोरोसिटी इंप्रूव होता है, वो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी जो बढ़ावा करता है क्रॉप के लिए, वो उस प्रोडक्शन वृद्धि करने में भी सहायक होता है।
1: बिल्कुल, यानी कि कई तरह से ये किसानों के लिए लाभदायक है। तो सिन्हा जी, ये बताएं कि ऐसे में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि वो पेड़ लगाए, पैसे बनाए, इसके लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं?
0: अभी सबसे पहले तो हम लोगों ने अभी एक जो है स्कीम, कृषि वानिकी पर स्कीम लेके आए हैं, और कृषि वानिकी स्कीम के तहत ये प्रावधान है कि अगर किसान अपने पेड़ लगाता है, या मेड़ पे पेड़ लगाए, या फिर वो अपनी कृषि के साथ बीच में पेड़ लगाए, या फिर पूरे सिर्फ पेड़ ही पेड़ लगाए, जहां वेस्टलैंड है, जहां खेती नहीं हो सकती है, वैसी भी जमीन लोगों के पास है उसमें लगाए, तो सबके लिए अलग अलग इंसेंटिव्स दिए गए हैं, और ये इंसेंटिव हर साल के ऊपर है, और एक पेड़ के ऊपर समझिए कम से कम 4 साल में एक किसान को ₹35 सरकार अपनी ओर से प्रदाय करेगी, और ये अगर ब्लॉक प्लांटेशन करेगा तो करीब उसमें 25,000-30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक उसको जो है सरकार की ओर से देने का प्रावधान किया गया है। तो ये सिर्फ ये हुआ, आप लगाएं और पैसा पाएं, जो आप काट करके बेचेंगे वो अलग से आपको मिलेगा, वो आपका तो है ही है, उस पर किसी का दूसरे का राइट नहीं है, उससे आमदनी अलग होगी, लेकिन ये अपने आप में एक आमदनी का एक और स्रोत हो गया स्कीम जो है।
1: तो सौजन्य जी, आपको क्या लगता है कि इस तरह से जब सरकार की तरफ से भी प्रोत्साहन मिलेगा तो उसका कितना फायदा उठाएंगे किसान?
3: सरकार की तरफ से अगर प्रोत्साहन मिलेगा तब तो कोई शक नहीं है कि किसान इसका बहुत फायदा उठा सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मैसेज किसानों तक पहुंचेगा कैसे
1: जी।
3: और एक और चीज, अगर आप एक पेपर की तरफ ध्यान दें, नेशनल एग्रोफॉरेस्ट्री पॉलिसी के ऊपर ही निकला है, उसमें एक खास बात निकल कर आई है कि CPR जो होता है, कॉमन पूल रिसोर्सेज या कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, उसके ऊपर नेशनल एग्रोफॉरेस्ट्री पॉलिसी में, उसमें कोई ज्यादा जिक्र उसका है नहीं, जबकि CPR मैनेजमेंट किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत ही अच्छा जरिया होता है। तो अगर सरकार इस विषय पे भी ध्यान दे और सीपीआर को भी प्रोत्साहित करे और उसके थ्रू पब्लिक प्राइवेट मॉडल्स को लेकर आए तो इसमें किसानों को बहुत फायदा हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा किसान कृषि वानिकी से जुड़ सकते हैं।
1: सिन्हा जी, सुझाव पर क्या कहना चाहेंगे आप?
0: कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जो हैं इसके कई सारे यूजेज हैं गाँव में, लेकिन जहां अगर किसान लगाना चाहते हैं वहां पे दूसरी योजनाएं हैं जिससे वो लग सकता है। जैसे अभी मनरेगा के अंदर भी पेड़ लगाने के लिए पूरा का पूरा प्रावधान है, आईडब्ल्यूएमपी के अंदर प्रावधान है, तो ये अगर उस स्कीम के तहत वो वहां पे लगाए जा सकते हैं और लग रहे हैं, इनफैक्ट हर साल लग रहे हैं। अगर हम देखें प्रोग्रेस देखें तो ट्री प्लांटिंग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स पे हो रहा है। हम वहां इंसेंटिव्स इस तरह के नहीं है कि आपको सीधा मतलब पेड़ लगाएं और पैसा मिले, वहां पे आपको रोजगार उपलब्ध हो रहा है, उस रोजगार के थ्रू आपका एडिशनल इनकम प्राप्त हो रहा है
1: जी। और साथ ही पेड़ लगाने की बात हो रही है तो पेड़ों के जुड़ाव की बात भी हो। रिजवी साहब, अगर इस देश में हम देखें तो हमने देखा है चिपको आंदोलन, पेड़ों को बचाने के लिए किस तरह की मुहिम चली है, तो पेड़ों से जुड़ाव रहा है लोगों का, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वन माफिया भी है जो पेड़ों को काटते हैं, आग लगाते हैं, इस तरह की स्थिति भी बनी हुई है। तो ऐसे में लोगों को जागरूक करना और उनको इस दिशा में प्रोत्साहित करना ये कितना मुश्किल काम है?
4: देखिए, भारत जैसे मुल्क में ये बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए
1: जी।
4: क्योंकि एक तो ये बहुत पुरानी परंपरा है और यहाँ के जो किसान हैं वो सदियों से पेड़ उगाते चले आ रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, वो उगाते चले आ रहे हैं। ये जो कृषि वानिकी की पॉलिसी है या जो शोध हो रहा है, ये ट्रेडिशनल नॉलेज और साइंटिफिक नॉलेज को मिला के उसको हम और इफेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई चीज है। दूसरा, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं कहूंगा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों को देखिए, उसमें पेड़ों की कितनी चर्चा हुई है। और अगर मैं कहूं कि कृष्ण भगवान कदम के पेड़ के नीचे ही बैठ के बंसी क्यों बजाते थे, तो उसमें एक मैसेज है और वो मैसेज लोगों के दिलों में है, वो ऐसा नहीं है कि लोग भूल गए हैं। और जो आपने चिपको आंदोलन की बात की, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ की स्थिति को अफ्रीका की स्थिति से, वहां क्या हो रहा है कि वनों को काट के और खेती करने के योग्य बनाया जा रहा है
1: जी।
4: लोग वनों के अंदर रहते हैं और वो वनों को साफ करके खेती करते हैं, तो खेती वन के अंदर जा रही है। हम यहाँ भारतवर्ष में क्या हो रहा है, खेती के अंदर वन आ रहे हैं, तो बिल्कुल उल्टा है यहाँ पे। और ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि लोगों का लगाव पेड़ों से कितना ज्यादा है, क्योंकि न सिर्फ अपने खेतों में बल्कि अपने घरों के चारों तरफ भी वो पेड़ उगाते हैं। और अगर मैं बात करूं कि किसानों की इनकम की, तो एक चीज उसमें ऐड करना चाहूंगा जो सिन्हा साहब ने कहा और रथ साहब ने कहा कि एक कार्बन मैकेनिज्म है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलता है, और वो कारखाने और इंडस्ट्री जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं उनको दिखाना होता है कि उन्होंने क्या ऐसा काम किया कि उनके द्वारा जो प्रदूषण हुआ है उसको उन्होंने कंट्रोल करने के लिए कोई स्टेप लिया। तो वो कार्बन बैंकिंग होती है और भारत सरकार ने भी उस पर काम किया है, जिसमें एक किसान तो नहीं जा सकता कि मेरे पास 10 पेड़ हैं, मैं इतना कार्बन उसमें ले आ जाता है, उसके लिए मुझे पैसे दो। लेकिन अगर एक ग्रुप हो, एक कोऑपरेटिव हो और उसको सपोर्ट मिले, जैसे कि संस्था को हमारे मित्र रिप्रेजेंट कर रहे हैं
1: जी, जी,
4: तो बहुत सारे लोग उनको हेल्प करते हैं और वो उसके बदले में भी उनकी इनकम बढ़ सकती है
1: जी। तो ये इनकम बढ़ाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए रज्जी क्या कुछ सुझाव आप भी किसानों को देना चाहेंगे कि टिम्बर तो ठीक है, वो भी एक विकल्प है, लेकिन कई बार किसान इसलिए नहीं लगाना चाहते इमारती वृक्षों को क्योंकि उसमें कई साल लग जाते हैं, तो क्या कुछ और भी विकल्प हैं किसानों के पास?
2: नहीं, केवल टिम्बर नहीं है हमारा, इसके साथ फलदार वृक्ष लगाते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स भी है, बहुत सारे फॉडर है, क्योंकि आजकल जो लोग खेती के साथ साथ लाइफ स्टॉक, फिशरी, बाकी सारे कार्य भी करना चाहते हैं, अगर डायरी करने हैं तो उसके लिए भी आपको फॉडर चाहिए
1: जी।
2: तो बहुत सारे जो फॉडर प्लांट ट्रीज भी इसमें खेती लगाते हैं खेत में, वो सारे और बहुत सारे चीज जो फार्मर जो पहले बाड़ी के कंसेप्ट में जो बाड़ी प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ लगाते थे वो पेड़, वो भी वो भी आजकल हम प्रमोट कर रहे हैं
1: जी।
0: मैं यहाँ एक इंटरप्ट करके एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा। एक राजस्थान में एक पेड़ है खेजड़ी।
1: अच्छा।
0: खेजड़ी का पेड़ जो है वो आपका उसकी इतनी ज्यादा उपयोगिता सेमी एरिड जोन में है कि अगर आप 400 पेड़ प्रति हेक्टेयर करीब करीब उसमें लगाया जाता है। और खेजड़ी मल्टीपर्पज ट्री है।
1: अच्छा।
0: एक तरफ वो जमीन के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करता है, दूसरी तरफ वो जैसे बड़ा होता है 3-4 साल का उससे फॉडर बहुत बढ़िया होता है। एक पेड़ बताते हैं वहां के लोग कि प्रति वर्ष लॉपिंग करने के लिए मतलब सिर्फ चारा काटने के लिए 400 रुपए में बिकता है।
1: अच्छा।
0: तो 400 × 400 ये तो सीधा पेड़ की सिर्फ डगाल काट कर उसको मिल गए। उसके अलावा उसके जो पॉड होते हैं वो वहां की सब्जी में एक डेलिकेसी मानी जाती है। और दिल्ली के बाजार में एक सांसद महोदय बता रहे थे एक पार्लियामेंट्री कमेटी में कि दिल्ली के बाजार में वो पॉड 300 रुपए किलो बिकता है।
1: जी।
0: तो ये जो है। और अगर आप देखें सेमी एरिड एरियाज में कहीं भी अक्रॉस द वर्ल्ड तो जो मेन लाइवलीहुड का सोर्स है वो आपका पैस्टोरल है। छोटे स्मॉल रूमिनेंट जैसे बकरी भेड़ इत्यादि पालते हैं उनके लिए चारा
1: जी,
0: तो उस तरह तो वृक्ष जो है न सिर्फ आपके भूमि की उर्वरता को बढ़ा रहे हैं आपको लगातार इनकम दे रहे हैं। तो इस तरह के मॉडल्स को हमें आगे बढ़ाने की बड़े पैमाने पर आवश्यकता है।
1: रिजवी जी, यहाँ पे कुछ सजेशन कुछ सुझाव आप भी देना चाहेंगे किसानों को कि वो किस तरह के पेड़ लगाएं कि ताकि उनकी जो आय है वो और बेहतर हो जाए।
4: जो पेड़ लगाने का मसला है ये बहुत लोकल है
1: जी।
4: कोई जनरल
1: और जलवायु सब चीजों
4: कोई जनरल प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जा सकता। इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो किसान क्या चाहता है। तो अगर उसको फलों की जरूरत है तो हम उसको टिम्बर नहीं लगवा सकते चाहे वहां पे कितनी अच्छी भी मार्केट हो। तो एक तो जो जरूरत है लोकल वो हमें देखना होगा। दूसरे ये देखना होगा कि वहां की जलवायु क्या है। अगर हम किसी ऐसी जगह पे जहां पानी कम होता है ऐसे पेड़ लगवाएं जिसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। और तीसरी चीज ये है जैसा कि रथ साहब ने कहा कि मिट्टी किस तरह की है। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिनको देख के उसके बाद डिसाइड किया जाता है। और अभी कृषि वानिकी बहुत पुराना कला है
1: जी।
4: और अब उसमें साइंस मिलाई जा रही है। तो ये वही चीजें हैं जिसको कि सारी चीजों की एनालिसिस करके और एक सिस्टम हम लोग डेवलप करते हैं जिसमें ये ना हो जो आपने कहा कि भाई 4 साल वेट करना पड़ता है। तो पहले ही साल में पहले 6 महीनों से किसान को आमदनी हो और वो पेड़ से आए या वो कृषि से आए लेकिन आमदनी उसकी होनी चाहिए। और एक बात सिन्हा साहब ने खेजड़ी के बारे में कही तो मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ कि ये एक ऐसा पेड़ है कि जितनी गर्मी पड़ती है उतना ज्यादा हरा होता है ये।
1: अच्छा, बिल्कुल। तो ऐसे कई पेड़ हैं हमारे देश में जिनकी अपनी कई सारी खूबियां हैं, बस उन्हें थोड़ा सा तलाश कीजिए, वो अपने आसपास ही आपको मिल जाएंगे और देखिए कि किस तरह से उससे लाभ आपको मिलता है और कई तरह के फायदे हैं अगर आप खेती के साथ साथ पेड़ भी लगाते हैं। तो चर्चा में और आगे बढ़ती हूँ। और सिन्हा जी, आपने बात की थी चर्चा के दौरान किस तरह से जो नियम कायदे हैं वो भी है जो कभी कभी अड़चन बन जाते हैं। नीति आयोग ने कृषि सुधार सूचकांक जारी किया है, उसमें एक फैक्टर किसानों को अपने पेड़ बेचने के लिए आजादी भी है। तो ये बताएं कि ये जो अड़ंगे आते हैं पेड़ बेचने के सामने, तो नियम कानूनों में बदलाव के लिए राज्य सरकारें इस दिशा में क्या कर रही हैं?
0: नहीं, देखिए, सभी कोई भी नियम कानून बनता है, सरकार जब भी कोई नियम कायदा कानून लाती है तो उसका कोई ना कोई परिप्रेक्ष्य होता है। वो परिप्रेक्ष्य समय के साथ कालांतर में बदलते रहते हैं।
1: ठीक है।
0: तो आज की जिस समय ये नियम कायदा कानून बनाए गए थे संभवतः उस समय इनकी आवश्यकता रही होगी, लेकिन आज के बदलते हुए परिवेश में जहां की हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जहां हम ओपननेस की बात कर रहे हैं, तो संभवतः हमें अपने नियम कायदा कानूनों में देखने की आवश्यकता है फिर से। और इसमें केंद्र सरकार लगातार राज्यों से बात कर रही है। जैसे मैंने पहले ही बताया, कई राज्यों ने रिलैक्स किए हैं, कई राज्य इसमें आगे बढ़े हुए हैं, कुछ राज्यों में अभी रिलक्टेंस है, उनको उनके साथ हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये कृषि जो मुद्दा है अगर हम संविधान को देखें तो संविधान के तहत वो जो है राज्य क्षेत्र का मुद्दा है।
1: जी।
0: तो राज्यों के साथ सहमति बनाकर ही हम उसमें कहीं आगे बढ़ सकते हैं। और इवन आपका जो ट्रांजिट रेगुलेशन वगैरह जो है, ये फॉरेस्ट एक्ट वो सेंट्रल एक्ट है लेकिन उसमें यह अधिकार राज्यों को दिया गया है कि वो राज्य बनाए कि वो किस किस को फ्री करेंगे किसको नहीं फ्री करेंगे। तो जब तक एक सहमति तैयार करके हम आगे नहीं बढ़ते हैं, और जब तक सहमति जब तक नहीं बनेगी तब तक सभी एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे नहीं।
1: बिल्कुल, तो लेकिन ये अच्छी बात है कि कुछ राज्य हैं जो इस दिशा में आगे आ रहे हैं और उन्होंने कई सारी छूट जो है वो किसानों को दी है, किसानों के हितों में फैसले लिए जा रहे हैं। बहरहाल इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा बात संवाद पेट।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: लाखों लोगों को रोजगार देने वाली लकड़ी आधारित 26,000 औद्योगिक इकाइयां आयातित कच्चे माल पर निर्भर करती है। अरबों की विदेशी मुद्रा आयात पर खर्च करनी पड़ती है। लोगों का न केवल रोजगार बचाने बल्कि रोजगार के नए अवसर पैदा करने और विदेशी मुद्रा बचाने का एक ही जवाब है, कृषि वानिकी। इस पर चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।

0: देश में 26,000 औद्योगिक इकाइयां लकड़ी पर आधारित हैं। ये इकाइयां लाखों लोगों को रोजगार दे रही हैं। घरेलू बाजार इनकी कच्चा माल मांग पूरी नहीं कर पाता, इसलिए लकड़ी आयात करनी पड़ती है। पिछले साल 48,000 करोड़ रुपए की लकड़ी आयात की गई। कृषि वानिकी में उन पेड़ों को लगाने पर जोर दिया जा रहा है जिनसे इन इकाइयों की कच्चे माल की भारी मांग पूरी हो सके और आयात का मोटा बिल कम कर अरबों की विदेशी मुद्रा बचाई जा सके। 10 राज्यों के 26 जिलों में एक अध्ययन किया गया है जिसमें पता लगा है कि प्रति हेक्टेयर औसतन 18 वृक्ष हैं। पंजाब में 217 वृक्ष प्रति हेक्टेयर तक पाए गए हैं। इस हिसाब से 18 का औसत बहुत कम है। इमारती लकड़ी के पेड़ कृषि वानिकी में कम लोकप्रिय है क्योंकि इनसे आमदनी लेने में किसान को बड़ा लंबा समय लगता है। सागौन के पेड़ पर शोध के बाद वैज्ञानिकों ने जो किस्म तैयार की है उसे भी 25 साल लग जाते हैं। किसान इतनी लंबी प्रतीक्षा नहीं कर सकता, उसे जल्दी आमदनी देने वाले पेड़ चाहिए। इस नजरिए से किसानों में यूकेलिप्टस और पॉपुलर के पेड़ ज्यादा लोकप्रिय हैं। लेकिन पिछले 3 साल में दामों में भारी गिरावट के कारण किसानों का पॉपुलर के प्रति रुझान कम हो रहा है। हालांकि विशेषज्ञ इस गिरावट को अस्थायी मान रहे हैं। उनका मानना है कि 2004 से 2006 तक ऐसी ही गिरावट आई थी, उसके बाद किसानों को फिर अच्छे दाम मिलने लगे।
1: आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रिजवी जी, 26,000 औद्योग

0: जो कैपेसिटी है सोइंग की वो बढ़ी नहीं है, बढ़ी नहीं और सप्लाई बढ़ गया, पेड़ मैच्योर हो गए, तो नेचुरली ये डिमांड सप्लाई के कारण प्राइसेज में गिरावट इधर आई है। बट एक ये खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर अब जो एक भी सॉमिल खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता था, उस चीज को थोड़ा भी रिलैक्स करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट को यह डायरेक्शन दिया था कि वो एक गाइडलाइन जारी करे जिसमें अधिकार राज्यों को नए सॉमिल एस्टैब्लिश करने के लिए दे दिए जाए। भारत सरकार की कृषि ये पर्यावरण मंत्रालय ने इस संबंध में एक दिशा निर्देश राज्यों को जारी भी किया है। ये अभी कुछ दिन पहले ही जारी हुआ है, उसको क्या है? उससे मुझे उम्मीद है कुछ नए नए जो बंदिशें थी वो बंदिशें थोड़ी कम होगी, नए इंडस्ट्रीज आने शुरू होंगे, जैसे जैसे नए इंडस्ट्रीज आएंगे तो लकड़ी का जो है जो अभी डिमांड कैपेसिटी कारण जो बॉटलनेक था वो दूर होगा और फिर से प्राइसेस अपवर्ड लेंगे। दूसरी चीज ये है कि हमारा मंत्रालय जो वो गाइडलाइन जारी किया है उसका भी परीक्षण कर रहा है, और अगर हम उसमें पाएंगे कहीं भी कि ऐसी कोई विसंगति है जो कि इंडस्ट्री को आगे बढ़ने में प्रॉब्लम करेगा, तो हम अपने मंत्रालय से इस बात को लेकर के पर्यावरण मंत्रालय से चर्चा करेंगे और उसको और रिलैक्स कराने की कोशिश करेंगे।
1: बिल्कुल, तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई का अर्थशास्त्र है वो तो है ही, वो बाजार के साथ लगा ही रहेगा, तो ऐसे में किसानों को ये उचित भाव मिले इसके लिए क्या कुछ और करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं?
0: नहीं, अभी किसानों को सबसे पहले तो जो बाहर से इम्पोर्ट ज्यादा है तो हम लोग अपने मंत्रालय की ओर से ये भी सोच रहे हैं कि वाणिज्य मंत्रालय को हम अप्रोच करें कि जो टैरिफ है
1: जी,
0: उसको इम्पोर्टेड टिम्बर पे टैरिफ को बढ़ाया जाए ताकि इम्पोर्ट थोड़ा कॉस्टली हो और हमारा जो है प्रोडक्शन जो है वो उसके इजीली वो बिक सके लोकल मार्केट में। तो इसमें एक तरफ तो मतलब दो तीन इश्यूज हो सकते हैं जिनको एग्जामिन करना पड़ेगा इसके पहले कोई निर्णय हो, बाहर से इम्पोर्ट क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है, इतना सस्ता कैसे है, और अगर क्या क्वालिटी का कोई इश्यू है क्या, जहां खपत पॉइंट है वहां क्वालिटी का अगर इश्यू है तो उस तरह के पहले हमें प्लांट लाने लगवा कम से कम उस तरह की क्वालिटी का प्लांटिंग मटेरियल हमें पैदा करना पड़ेगा
1: जी,
0: तब जाके ताकि वो इंडस्ट्री जो ऑलरेडी चल रही है उस इंडस्ट्री को मतलब हम बंद नहीं कर दें,
1: ठीक है, उसको सहारा दे सके। रज ये बताएं कि कृषि वानिकी में प्रति हेक्टेयर औसत 18 वृक्ष है, पंजाब में 217 वृक्ष प्रति हेक्टेयर तक है और इस हिसाब से औसत जो है वो बहुत कम है, तो 1983 में इस दिशा में अनुसंधान हो रहे हैं और फिर भी ये इतना कम क्यों है?
2: प्लांटिंग इंटेंसिटी जो है हमारा जो 625 सब हाई इंटेंसिटी प्लांटेशन है, 625 पेड़ जो है वो तो होता है जहाँ ओनली प्लांटेशन करना है, हमारा लक्ष्य वो नहीं है। हमारा लक्ष्य है जो कृषि के साथ साथ, क्योंकि हमारा किसान का लैंड बहुत छोटा है वो बहुत ज्यादा प्लांटेशन कर नहीं सकता है, वो छोटा फार्म के अंदर उसका पेरीफेरी में प्लांट करना है, कोई इंटरमीडिएट प्लांटेशन करना है, तो हमारा लक्ष्य ज्यादा रेट ऑफ प्लांटेशन या इंटेंसिटी बढ़ाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कृषि के साथ साथ वो जो उसका जो क्रॉप वगैरह लेता है उसमें कोई विघ्न ना आए, उसका एरिया प्लांटेशन वगैरह कुछ कम ना हो, क्रॉप जैसा वो कर रहा था वो करे, उसके साथ साथ पेड़ लगा के उसमें उसका कुछ अतिरिक्त इनकम हो और वो सस्टेनेबल भी हो, यहीं कई जैसे मैंने पहले बताया था उसका कोई क्रॉप वगैरह फेल हो जाता है तो उसको कुछ अतिरिक्त इनकम फल से फलाधार वृक्ष से मिले या जो फडर के जरिए उसका जो डायरी है छोटा पोल्ट्री यूनिट वगैरह जो करेंगे उसके कुछ इनकम मिले, ये सब सहायक होगा।
1: जी जी जी सौजन्य जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपने इतने दिनों में कृषि वानिकी में जो कुछ भी हो रहा है और जमीनी स्तर पर जो हो रहा है उसे देखते हुए क्या पाया है, किस तरह की समस्याएं किसानों के सामने आ रही है और पर्यावरण की दृष्टि से भी हमें बताएं कि क्या कुछ अंतर भी पड़ा है?
3: पर्यावरण की दृष्टि से तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कृषि वानिकी भी अगर हम देखें तो हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एग्रोफॉरेस्ट इज नॉट द नेचुरल फॉरेस्ट, मतलब वो प्राकृतिक वन नहीं है, तो इकोसिस्टम सर्विस जिसे कहते हैं जो प्रकृति खुद से देती है उसमें फर्क तो आता है।
1: अच्छा,
3: दूसरी बात ये भी है कि किस किस्म के पौधे लगाए जाए, जैसे कि रिजी सर ने कहा कि ये कृषि वानिकी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम टिम्बर प्रोड्यूस करें, इसका मतलब ये भी है कि दूसरे फलदार पौधे कई किस्म के पौधे होने चाहिए, कई किस्म के पेड़ होने चाहिए, तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एक लोकल जो इकोलॉजिकल सर्विसेज हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज हैं वो मेंटेन रहें, वो वैसी की वैसी बनी रहें।
1: बिल्कुल। और कार्यक्रम के इस अंतिम क्षणों में हम अपने चारों मेहमानों से बहुत ही संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि वे किसानों को क्या

संगीत की इस महकती हुई शाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त समीर, और चलिए मिलते हैं एक और उभरते हुए कलाकार से, एक नए टैलेंट से। कौन है ये, क्या है ये, इनके बारे में जानते हैं और इनके गीतों का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आपके ही आज के कलाकार प्रोग्राम को।

आइए दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही आज के कलाकार प्रोग्राम में। और जाहिर सी बात है, जो टैलेंट, जो सिंगर, जो प्रतिभा आज हमारे साथ है, उसको सुनकर आपको बहुत बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। तो आज हमारे प्रोग्राम में है अपूर्वा ठाकुर जी, और बहुत ही मजेदार बात यह है कि आज अपूर्वा ठाकुर जी का जन्मदिन भी है। अपूर्वा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, आप आगे बढ़ते रहें, ऊपर वाला अपनी सारी खुशियां आपको दे दे। बाकी की बातचीत जैसा हम हमेशा करते हैं अपूर्वा से ही करेंगे, लेकिन सुनते हैं अपूर्वा के ही आवाज में ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी गायकी अपूर्वा, थैंक यू सो मच आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत आभार है।
1: तो थैंक यू सो मच सर।
0: अपूर्वा, प्रोग्राम को शुरू करते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिससे कि हमारे सुनने वाले, हमारे श्रोता आपको थोड़ा सा जान सकें तो उनको जरा आपसे कनेक्ट करने में आसानी होगी और वो ज्यादा आनंद ले पाएंगे आपके प्रोग्राम का, कि आप कहाँ रहती हैं और उस जगह के बारे में कुछ बताइए।
1: जी सर, मैं छत्तीसगढ़ कोरबा हूँ।
0: जी कहाँ?
1: मेरा जो जिला है कोरबा छत्तीसगढ़।
0: जी,
1: और जो मेरा जिला है ना, वो कोयले के बहुत जाना जाता है, एल्युमिनियम प्लांट्स भी बहुत हैं, जिसकी वजह से हमारा कोरबा ना बहुत प्रसिद्ध है।
0: बहुत
1: और हमारे
0: बढ़िया।
1: कोरबा को प्यार से ये भी बोला जाता है, ऊर्जा नगरी के नाम से भी उनको जाना जाता है।
0: तो दोस्तों, आपने सुना कि अपूर्वा कोरबा जिले में रहती हैं, जो छत्तीसगढ़ में है, और वो इलाका कोयले के लिए और एल्युमिनियम प्लांट्स के लिए, एल्युमिनियम ओर्स के लिए बहुत फेमस है। बहुत बढ़िया, तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत अपूर्वा की ही आवाज में।

0: बहुत प्यारा गीता पूर्वा, थैंक यू सो मच। आप बचपन में क्या बनना चाहती थी अपूर्वा?
1: मैं बचपन से ही ना प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी, शुरू से कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में मेरे गाने भी हो, मतलब मैं भी गा सकूं उसमें।
0: बहुत खूब, बहुत प्यारी बात। आप बचपन से ही प्लेबैक सिंगर बनना चाहते थे और आप चाहते थे कि आप बॉलीवुड सिंगिंग करें। उसके अलावा मतलब आपने बचपन से लेकर बड़े होने तक कोई और चीज नहीं सोची कि मेरे को और कुछ बनना है, करेक्ट?
1: नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
0: वाह, क्या बात है, बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच, बिल्कुल एक पॉइंट एजेंडा कि बस मेरे को यही करना है, यही करना है। बहुत सुंदर। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत अपूर्वा की ही आवाज में।

0: अपूर्वा, हम लोग बचपन की बातें कर रहे हैं, तो अपने बचपन की कोई प्यारी सी याद के बारे में हमें बताइए।
1: हाँ, यादें तो बहुत ही याद है जो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। जब भी मैं 9 साल की थी तब तो मैंने सिंगिंग कंपटीशन में अपना पहला ऑडिशन दिया था, तो वो जो पल था वो मेरे बचपन का सबसे यादगार पल है।
0: ओके, ये ऑडिशन आपने कहाँ दिया था?
1: ये ऑडिशन मैंने कोरबा में ही दिया था।
0: अच्छा, तो किसी रेडियो स्टेशन पर या कोई मतलब कोई एक्टिविटी हुई थी कहीं पर?
1: हाँ, रियलिटी शो था, मतलब लिटिल चैंप्स करके था, कोरबा का ही था वो शुरू में, तो वहां पे मैंने सबसे पहला ऑडिशन दिया था।
0: वेरी नाइस, बहुत खूब बहुत खूब, बड़ी ही प्यारी सी याद। जाहिर सी बात है, उस याद के बारे में आप जब भी सोचते होंगे आपको बहुत बहुत अच्छा लगता होगा। क्या बात है
1: जी सर।
0: आइए दोस्तों सुने एक प्यारा सा गीत अपूर्वा की ही आवाज में।

0: बहुत बढ़िया। तो अपूर्वा, जैसा आपने कहा कि आप गीतकार बनना चाहते थे बचपन से ही, तो कोई ऐसा गीत हमें बताइए जो आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता हो, आपके ऊपर पूरा सूट करता हो, मतलब उस गाने को अगर हम सुने तो आपकी याद आए, ऐसा कोई गीत बताइए।
1: हाँ, एक गीत है लता जी का, है जाएगा
0: जी, कौन सा?
1: नाम गुम जाएगा।
0: नाम गुम जाएगा, ओके।
1: हाँ,
0: बहुत सुंदर।
1: क्योंकि मेरी पहचान ही मेरे आवाज से ही है, लोग मुझे मेरे आवाज से ही जानते हैं।
0: क्या बात है,
1: मुझे लगता है कि ये गीत मेरे पर्सनालिटी को पूरा पूरा सूट करता है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक आपको पता है, और बहुत ही प्यारा गीत। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक और प्यारा गीत अपूर्वा की ही आवाज में।

0: अपूर्वा चलिए थोड़ा सा हंसते हैं, आपसे एक सवाल पूछूंगा, आराम से बताइएगा कि फर्ज कीजिए, अगर आप फर्ज कीजिए, ओनली इमेजिन कीजिए कि अगर आप 24 घंटों के लिए भूत बन जाएं, तो किस तरह का भूत, किस तरह का भूत बनना चाहेंगे, और आप क्या किसी को डराएंगे?
1: नहीं, डराना तो हाँ ये कि इंडस्ट्री पे घुसना है, बस देखना है कि वहाँ क्या होता है,
0: ओके
1: ये सब चीज जानने का बहुत इंटरेस्ट है मेरे को सिंगिंग से रिलेटेड।
0: तो भूत बन के क्या करेंगे आप?
1: भूत बन के वहां जाके रिकॉर्ड करने
0: ओके भूत बन के जाके आप अलग अलग स्टूडियो में जाएंगे और रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप बहुत ज्यादा पैशनेट हैं अपनी सिंगिंग को लेकर, आपको हर समय यही लगता है कि आपको रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है, बहुत खूब। और दोस्तों आपने सुना, अपूर्वा बिल्कुल फोकस्ड हैं अपनी सिंगिंग को लेकर, तो सुनिए एक और प्यारा सा गीत अपूर्वा की ही आवाज में।

0: बहुत बढ़िया अपूर्वा, बहुत ही प्यारा गीत। आगे बढ़ते हुए आपसे थैंक यू, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका सबसे पसंदीदा खाना क्या है और क्यों?
1: मुझे चटपटी चीजें खाना बहुत पसंद है, तो छोले भटूरे मेरा फेवरेट है बहुत।
0: क्या बात है, छोले भटूरे, वाह वाह वाह। अब देखिए 9 बजे से 10 बजे की बात है, सभी लोग या तो खाना खा चुके होंगे या खाना खाने जा रहे होंगे। आपने छोले भटूरे खा के सब लोगों के मुंह में पानी ला दिया। अब सब लोग जुट जाएंगे, या तो बाहर जाके छोले भटूरे लाए जाएं या बनाए जाएं। क्या बात है, अमेजिंग। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, तो हो जाए इसी बात पर एक प्यारा सा गीत अपूर्वा की ही आवाज में।

0: अपूर्वा, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने किसी अच्छे से दोस्त के बारे में हमें बताइए कि वो आपका सबसे अच्छा दोस्त क्यों है।
1: जी, मेरी जो सबसे अच्छी दोस्त है ना, वो मेरी ही बड़ी बहन है, जिनका नाम ख्याति है।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस।
1: मेरे घर में ऐसा है कि घर पे किसी को पसंद नहीं है, तो वो इतनी सपोर्टिव नेचर की हैं कि वो हर चीज में, मेरे को सिंगिंग से रिलेटेड हर चीज में सपोर्ट करती हैं।
0: ओके ओके।
1: और उन्हीं के वजह से है कि मेरे दिमाग में ऐसा कर सकती हूँ वो चीज।
0: बहुत बढ़िया। ओके, तो आपकी सिस्टर के अलावा, दीदी के अलावा और कोई है जो आपका फ्रेंड है या सिर्फ वो ही है?
1: सिर्फ वही है।
0: तो दोस्तों, आपने सुना कि अपूर्वा की बड़ी सिस्टर ही उनकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। तो चलिए, अगला गीत हम अपूर्वा की बड़ी सिस्टर के लिए ही डेडिकेट करते हैं, उन्हीं के लिए समर्पित है ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा गीत। आगे बढ़ते हैं। अपूर्वा, क्या आपका कोई निक नेम है, ऐसा नाम जो आपके परिवार वाले या आपके दोस्त आपको बहुत प्यार से बुलाते हो?
1: जी है ना, सब मेरे को प्यार से नेहा बुलाते हैं।
0: अरे वाह, दैट्स नाइस। आपका ओरिजिनल नाम अपूर्वा है और वैसे आपका निक नेम नेहा है, बहुत हाँ। सुंदर। और ऐसा क्यों है वैसे, कुछ आइडिया?
1: हाँ, सब बोलते हैं कि मेरी आंखें सुंदर हैं और नेहा का मीनिंग ही होता है सुंदर आंखें।
0: अच्छा, ओके ओके, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल उसके पीछे कारण है कि आपका नाम नेहा है, बहुत प्यारी बात है। दोस्तों, आपने सुना कि अपूर्वा का एक निक नेम है जो कि नेहा है, बहुत बढ़िया। तो चलिए एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं अपूर्वा की आवाज में ही।

0: अपूर्वा, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जो नाम है अपूर्वा, उसका मतलब क्या है आपको पता है?
1: हाँ,
0: उसका क्या मतलब है?
1: एक तो ये है कि जो पूर्व दिशा से जो हवा आती है ना, उसका वो एक मीनिंग है, और एक है यूनिक, सबसे यूनिक जो होता है ना, वो एक
0: वाओ,
1: मीनिंग है।
0: बहुत बढ़िया, अपूर्व, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो वैसे अगर आपको आपका नाम बदलने के लिए एक चांस दिया जाए तो आप बदलेंगे?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: मन नहीं है कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो अपना नाम बदलने की कोशिश करें? उन्हें अपना नाम बहुत पसंद है और उसका मतलब भी उन्हें पता है। बहुत खूब। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत अपूर्वा की, बहुत ही प्यारी आवाज में।

0: बहुत बढ़िया अपूर्वा, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि कभी अभी तक की जिंदगी में आपने कोई छोटी मोटी चीटिंग की है? जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन किसी बगल वाले में से देख के लिख लिया हो, या मिठाई जो है एक लड्डू की जगह दो लड्डू खा गए हो, ऐसा कुछ कभी किया है आपने?
1: के साथ बहुत किया है ये,
0: क्या
1: अभी भी
0: चीज़?
1: करती हूँ।
0: क्या क्या क्या
1: मिठाइयों के साथ चीटिंग करते रहती हूँ मैं घर पे, अभी भी करती हूँ ये।
0: ऑल राइट। उसके अलावा और कोई चीटिंग की हो आपने जिंदगी में?
1: और दोस्तों के साथ कभी बचपन में खेला है तो उस टाइम किए हैं चीटिंग बहुत।
0: अच्छा, वेरी नाइस, उसके बारे में बताइए।
1: हाँ दोस्तों के साथ जब हम लोग हाइड एंड सीख खेलते थे ना, हम लोग के उनको छुपा छुपाई बोलते हैं,
0: जी हाँ जी हाँ
1: तो जब आगे वाला जब दाम देता था, मतलब उसका जब चांस होता था ढूंढने का, तो वो हमको पहचान लेता था पर हम तुरंत जगह चेंज कर लेते थे और फिर हम बोलते थे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं ऐसा नहीं है।
0: वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी क्यूट, छोटी सी शैतानी, छोटी सी शैतानी, बहुत प्यारी बात। तो चलिए दोस्तों, इसी छोटी सी शैतानी से प्रभावित होकर खुश होकर एक प्यारा सा गीत सुनते हैं अपूर्वा का।

0: अपूर्वा, अब हम लोग अपने प्रोग्राम के उस जगह आ गए हैं, उस पादान पर आ गए हैं जहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नए सिंगर्स के लिए और हमारे सुनने वालों के लिए कोई संदेश दीजिए।
1: हाँ जी, मेरे सुनने वालों के लिए सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके स्वस्थ सेहत की कामना करते हुए मैं यही संदेश दूंगी कि आप हमेशा सही रास्ते पर चलें और हमेशा सही निर्णय लें और अच्छे और मधुर गाने सुनते रहें।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बहुत ही प्यारा छोटा सा संदेश, लेकिन सारी मतलब सारी मीनिंग रखते हुए, जो कि नए सिंगर्स को चाहिए होगा और उनके आपके सुनने वालों को चाहिए होगा। अपूर्वा, बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू सो मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपके गीत सचमुच, आपके गीत हमें सचमुच बहुत बहुत दिनों तक याद रहेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे दूसरे प्रोग्राम्स में भी आप पार्टिसिपेट करेंगी, आएंगी।
1: जरूर जरूर आऊंगी,
0: बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच अपूर्वा
1: जी।
0: दोस्तों, अगर आप भी आज के कलाकार प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, नए टैलेंट्स के इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो हमें कॉन्टैक्ट करें। नंबर है 9656517317। ये है 9656517317। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेहद शानदार गायकी, बेहद शानदार टैलेंट, एक और हसीन संगीत और गीत से भरी हुई शाम के लिए कल फिर हाजिर हो जाऊंगा एक नए टैलेंट के साथ। सुनना ना भूलिएगा।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। आइए दोस्तों, आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं मैं। जैसा हम हमेशा करते हैं, हम अपने प्रतिभा का, अपने टैलेंट का, अपने गायकों का स्वागत करते हैं और उन्हीं से गुजारिश करते हैं कि वो अपने बारे में हमें बताएं, जिससे कि हमें बिल्कुल ट्रू इन्फॉर्मेशन मिले। करने को मैं भी उनको इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, लेकिन उनको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिलता है तो वो सुनते हैं कि वो कौन है। तो आज हमारी गायिका, हमारे टैलेंट जो है वो है सुवर्णा पंडित मैम। सुवर्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए यही रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, अपने आप के बारे में हमें बताइए, कहाँ हैं आप, क्या करती हैं आप, कौन हैं आप?
1: समीर जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैं तो 15 साल टीचर थी, उसके बाद आई केम टू द ब्यूटी लाइन एंड हैड अ पार्लर ऑफ माय ओन फॉर 15 इयर्स एंड नाउ आई एम अ हैप्पी होममेकर।
0: वाओ, तो आप लेकिन कहाँ पर हो? वेयर आर यू? आर यू इन बॉम्बे? आर यू इन हैदराबाद? वेयर आर यू?
1: आई एम फ्रॉम बैंगलोर। नहीं, आई एम फ्रॉम बैंगलोर बट आई हैव रोम्ड ऑल ओवर इंडिया, आई हैव टू से, बिकॉज़ आई एम अ आर्मी ऑफिसर्स वाइफ। तो मैं पहले से ही, बिफोर माय मैरिज आई वाज अ टीचर, सो मुझे तो विन विन सिचुएशन थी बीइंग अ आर्मी ऑफिसर्स वाइफ। कहीं भी जाओ तो स्कूल्स तो होते ही है, and with my kids only I used to go to the school and be as a teacher.
0: Amazing, beautiful.
1: उसी स्कूल में, उसी स्कूल में मैं काम करती थी।
0: बहुत बहुत खूब। तो चलिए इसी चीज के आगे बढ़ते हुए मुझे ये बताइए, आपकी ये जो म्यूजिक की, गाना गाने की, गीत की, संगीत की ये जो यात्रा शुरू हुई, ये जो जर्नी शुरू हुई, ये कहाँ से शुरू हुई? कब से आपने ये महसूस किया कि मुझे गाना चाहिए और फिर बस आप गाने लगे?
1: नहीं, मैं एक टेंपल के कॉम्पाउंड में पली बड़ी हूँ, जो टेंपल मेरे ग्रैंडफादर ने स्थापित किया था इन 1938। इस मंदिर में हम सभी सिस्टर्स भजन गाते थे और एक ट्रेडिशन बन गया था कि हमको गाना सीखना है और गाना गाना पड़ेगा। मैं तो ट्रेन सिंगर नहीं हूँ, बट मेरे सिस्टर्स जो गाते थे, आई यूज टू लिसन टू देम एंड देन पिक अप दोस सॉन्ग्स। वैसा मेरा जर्नी हो गया।
0: तो बचपन से ही एक्चुअली संगीत आपके आपकी
1: गानों में था, गूंजता था। या बिकॉज हम तो वी वर नॉट एक्सपोज टू एनी फिल्म सॉन्ग्स, वी वर ओनली सिंगिंग ओनली भजन्स। And ours was a Radha Krishna temple. Now it has become Durga Radha Krishna temple in Malleshwaram in Bangalore.
0: Okay, all right.
1: Yeah.
0: Beautiful. So, जाहिर से बात है दोस्तों, आपने सुना कि बहुत ही संगीत की जो नींव पड़ी वो पवित्रता के साथ पड़ी, मंदिर में भजन गाते हुए, भजन सुनते हुए इन्हीं की नींव आई। बहुत सुंदर। तो वही चीज आपको सुवर्णा जी के गीतों में सुनाई देगी। आइए शुरू करें इस प्रोग्राम को और सुनते हैं ये गीत, उसके बाद सुवर्णा जी के पास हम वापस आएंगे।

0: बहुत खूबसूरत गीत, बहुत ही प्यारी शुरुआत। चलिए सुवर्णा जी, आगे बढ़ते हुए आपके संगीत के बारे में ही थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आपने कहा कि आप भजन गाते थे, अपनी बहनों को सुनते थे, भजन का ही आनंद उठाते थे, आपके चारों तरफ भजन ही होते थे, और फिर इसके बाद जब आप आगे बढ़े तो वो भजन धीरे से दूसरे संगीत में भी बदला, जैसे कि शायद सोलफुल म्यूजिक ऑफ बॉलीवुड में भी, क्लासिकल में भी, और जो विधाएं होती हैं संगीत के उसमें गए आप। लेकिन आपका पर्सनल चॉइस कौन सी है? अगर आपको कहा जाए कि आप भजन, फोक म्यूजिक, गजल, बॉलीवुड म्यूजिक, क्लासिकल, इनमें से कोई एक विधा चुनकर गीत गाने हैं, तो आप कौन सा चुनेंगी?
1: मेरा पहला चॉइस तो भजन ही है, पर मैं तो सभी टाइप के गाने सुनती हूँ, पर मुझे तो लाइट क्लासिकल गाने अच्छे लगते हैं, एंड सोबर सॉन्ग्स लाइक एनी इमोशनल सॉन्ग्स। अभी जो बॉलीवुड में गाती हूँ, तो आई हैव अ चॉइस ऑफ ओनली सोबर सॉन्ग्स, नो दैट पेपी पेपी सॉन्ग्स मुझे तो आता ही नहीं, नॉर फास्ट सॉन्ग्स भी मैं ट्राई नहीं करती, बिकॉज आई एम यूज टू सिंगिंग भजन्स प्रॉबेबली, आई नेवर ट्राइड, सो आई रियली लव ओनली सोबर सॉन्ग्स।
0: मैम, सोबर सॉन्ग्स का क्या डेफिनेशन मानती हैं आप? व्हाट डू यू मीन बाय सोबर सॉन्ग्स?
1: व्हिच हैज अ लॉट ऑफ ट्यून और वॉइस मॉड्यूलेशन, एंड जो उनके गानों में म्यूजिक बहुत अच्छा है, वेरी सोबर है।
0: एग्जांपल दीजिए।
1: जैसे एग्जांपल कौन सा दे दूं मैं, जैसे मैं गाती हूँ अभी

0: बहुत खूब बहुत खूब,
1: बोथ टाइप ऑफ सॉन्ग।
0: चलिए ऐसा करो सुवर्णा मैम, ये जो गीत आपने हमें गुनगुना के बताया, उसमें से तीन चीजें मुझे ऐसी बताओ जो आपको बेहद पसंद आती हैं। आप ही ने कहा ना आपको म्यूजिक पसंद आता है, लय और ताल समझ में आता है, ट्यून अच्छी लगती है, मे बी लिरिक्स अच्छी लगती हैं। तो इसी गाने में तीन चीजें, क्या चीज आपको अच्छी लगी तभी आपने हमें सुनाया उसको?
1: दैट इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट दिस वन, बिकॉज उसमें तो मुझे म्यूजिक भी पसंद है, ट्यून और लिरिक्स भी पसंद है, एंड द वे इट मॉड्यूलेट्स, द वॉइस कैन मॉड्यूलेट ना, दैट इज लाइक सोबर। वैसे तो जैसे क्या बोलते हैं कि पेपी सॉन्ग्स जो होते हैं वो एकदम फास्ट फास्ट और वेरी हैप्पी हैप्पी सॉन्ग्स होते हैं ना, वैसे तो आई डोंट प्रेफर इट। दैट्स द ओनली थिंग आई कैन सी।
0: ओके, बहुत खूब। मैंने इसलिए पूछा मैम कि देखिए आप तो कलाकार हैं, एक साधारण मनुष्य, एक साधारण इंसान से ऊपर हैं, तो हम किसी भी चीज को बेहतर महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये सवाल पूछा था। जैसे कि कुछ गाने होते हैं, अब एग्जांपल मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि प्रोग्राम आपका है, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनको मैं जब सुनता हूं पर्सनली तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं अपने आप, मैं रोक ही नहीं पाता, मेरा गला भर जाता है। बहुत सारे सिंगर्स के साथ ऐसा होता है, मैंने कई लोगों से बातचीत की है, तो बस वही भावना मैं जानने की आपसे कोशिश कर रहा था। चलिए,
1: अच्छा,
0: अमेजिंगली ब्यूटीफुल, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों लीजिए, मैं पेश करता हूं सुवर्णा जी का ये गीत, और फिर इसके बाद हम वापस आते हैं।

0: बहुत खूब, अमेजिंगली ब्यूटिफुली संग, बहुत ही प्यारे गीत। तो सुमना जी, जैसे कि हमें एक्सपीरियंस रहा कि आप आपके हस्बैंड के साथ भी डुएट सॉन्ग्स गाती हैं,
1: yes.
0: ये कैसे हुआ? मतलब आपको कोई जरूरी तो नहीं होता है कि दोनों में से दोनों ही सिंगर्स हों। कई बार ये हो जाता है तो बड़ी मजेदार बात हो जाती है, लेकिन आप दोनों लोगों ने ये डिसाइड कब किया, कैसे डिसाइड किया, क्यों डिसाइड किया कि हम लोग डुएट गाएंगे?
1: एक्चुअली आई डिडंट इवन नो दैट माय हस्बैंड सिंग्स। हाँ, मुझे पता भी नहीं था,
0: ये गलत बिकॉज
1: वो गुनगुनाते थे। हाँ, नहीं, वो गुनगुनाते थे बाथरूम में, बट देन ही नेवर यूज्ड टू कम ऑन अ स्टेज। और जैसे हमारा, आपको पता है कि आर्मी ऑफिसर्स में पार्टीज बहुत होते हैं, तो दे यूज टू आस्क मी टू सिंग, बिकॉज मैं तो आर्मी स्कूल में ही काम करती थी। तो एटलीस्ट सीओ का या ब्रिगेडियर का वाइफ भी मेरे साथ काम करते थे, तो उनको पता था कि मैं गाती हूँ, तो दे यूज टू आस्क मी टू सिंग सम इनोकेशन और वॉट एवर इट इज। बट ये तो आते ही नहीं थे। अभी दो साल के पहले जब बीएसएस में मैं ज्वाइन किया ना, बैंगलोर संगीत सरिता, तब हमने मैं तो ज्वाइन किया, मेरे हस्बैंड भी ज्वाइन किया, तो मैं एकदम हैरान हो गई। फिर उन्होंने बोला हम सोलो सॉन्ग गाएंगे, तो वो गाना शुरू किया। उसके बाद मैंने सोचा अरे ये अच्छा गाते हैं, तो लेट अस स्टार्ट विद द ड्यूएट आल्सो। उनसे हमारा जर्नी शुरू हो गया दो साल के पहले से। उसके पहले तो पता भी नहीं था, बिकॉज प्रोबेबली ही वॉज वेरी बिजी विथ हिज करियर, सो ही वॉज नॉट गेटिंग टाइम टू सिंग और प्रैक्टिस और वॉट एवर इट इज। अभी तो रिटायर्ड हो गए ना, तो घर में इतना कुछ म्यूजिक हो रहा है हमारे घर में, अभी बहुत अच्छा लगता है।
0: ओके, ऑलराइट ऑलराइट, ये बड़ी खूबसूरत बात है। तो जाहिर सी बात है अब आप लोग एक दूसरे की कंपनी ज्यादा इंजॉय कर पा रहे होंगे, ज्यादा मजे ले पा रहे होंगे, है ना?
1: डेफिनेटली।
0: चलिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हुए मैं पेश करना चाहूंगा सुमरला मैम के ही गाए हुए ये गीत, और उसके बाद हम लोग वापस आएंगे और कुछ गुफ्तगू करने के लिए।

0: बहुत सुंदर गीत, बहुत ही प्यारे गीत। सुमड़ा मैम, चलिए ये तो बात हो गई आपकी सर के साथ ड्यूएट की, आपके संगीत की शुरुआत की, आपके पसंदगी की। चलिए अब अपने बारे में कुछ बताइए। कुछ मतलब जिस तरीके की भी जिंदगी आपने गुजारी है, बहुत रिच जिंदगी गुजारी है, मतलब एक इनएक्सपीरियंस, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। कुछ कलेक्शन का शौक है मैम? देखिए, कलेक्शन का शौक से मतलब आप फिलैटली की बात नहीं कर रहा हूँ कि सिक्के इकट्ठे करते हों, स्टैम्प्स इकट्ठे करते हों, वो सब गए दिनों की बातें हो गई, वो भी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के कोई ना कोई ऐसी पैशन होता है जो वो चुपचाप करता है, वो रियलाइज़ भी नहीं करता। जैसे दो तीन दिन पहले ही मैंने रियलाइज़ किया, मेरा बेटा जो है वो एक हेडफोन्स की जिद कर रहा था कि अमेजोन से लेना है, तो मैंने कहा यार तुम देखो ना, तुम्हारे पास 6-7 तो हेडफोन्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, विच आर वर्किंग। सडनली ही ऑल्सो रियलाइज्ड एंड आई ऑल्सो रियलाइज्ड दैट ही हैज अ पैशन ऑफ कलेक्टिंग हेडफोन्स।
1: अच्छा।
0: एंड देन मैं बैठ गया सोचने के लिए व्हाट पैशन आई हैव, तो मुझे महसूस हुआ कि जूते इकट्ठे करने का शौक है मुझे। तो उसी तरीके से आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपको कुछ ऐसा पैशन है, कुछ इकट्ठा करने का पैशन है, उसके बारे में हमें बताइए ना।
1: या आई ऑलवेज बाय अ लॉट ऑफ बैग्स।
0: बैग्स,
1: मुझे तो बैग बहुत पसंद होता है।
0: ओके ओके, मतलब कैरी बैग,
1: कहीं भी जाओ या कहीं भी जाओ, एक पर्स या एक बैग या कोई भी विथ हैंड के, विथ शोल्डर हैंड के, कुछ भी हो, मैं तो वो ही बाय करती हूँ। कहीं भी जाओ, किसी प्लेस में जाओ, तो फर्स्ट माई आईज विल गो ओनली ऑन द बैग्स।
0: तो एक अंदाजा बताइए, मैग अंदाजा बताइए कितने बैग्स होंगे आपके पास?
1: ओ बहुत होगा, आई हैड नो काउंट ऑफ इट एट ऑल।
0: 30-40?
1: ओ मोर देन दैट, मोर देन
0: 100?
1: नो इतना नहीं है शायद।
0: ऑलराइट ऑलराइट, देखिए आपसे ना ये सवाल पूछने के दो मतलब थे। एक तो ये कि आपको आपका पैशन पता चले कि क्या कलेक्ट करती हैं आप, है ना, आप कॉन्शियसली बैग्स परचेज करेंगी, कॉन्शियसली सोच के कि अरे यार मेरा पैशन है, सो स्ट्रेंज टू स्ट्रेंज, अमेजिंग से अमेजिंग बैग्स लेंगी आप, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कॉस्ट। ओके,
1: बट इतना एक्सपेंसिव नहीं लेती, बिकॉज आई नो दैट आई डिस्कार्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो मैं जैसे डिस्कार्ड करती हूँ, अभी 5 डिस्कार्ड किया, तो मैं 5 जरूर ले लूंगी।
0: कूल,
1: उसके हिसाब से
0: बहुत बढ़िया। दूसरा पर्पज मेरा था कि जो भी हमारे सुनने वाले हैं वो भी अपने कॉलर के अंदर झांकें और देखें कि हम क्या कलेक्ट करते हैं, और अगर करते हैं अनकॉन्शियसली तो अब कॉन्शियसली करें तो बड़ा मजा आएगा, है ना। सिमिलरली जैसे मैंने कल परसों ही रियलाइज किया, क्योंकि मेरे दिमाग में घूमने लगा कि लोग क्या क्या कलेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले अपने घर में ही देख लो ना। अमेजिंगली मैंने पाया कि मेरी वाइफ को की रिंग्स इकट्ठा करने का शौक है।
1: अच्छा।
0: अरे वाह, मैंने कहा यार ये तो बड़ी बढ़िया बात होगी, तो इट इज वेरी इजी ना, मैं कहीं पर भी जाऊंगा, 2 की रिंग सस्ते कितने भी, क्या 50 रुपए, 60 रुपए, मे बी 100 रुपीज के 2 की रिंग्स लेकर आऊंगा, तो हाउ हैप्पी शी विल बी थिंक।
1: करेक्ट,
0: बस ये सवाल इसलिए पूछा था मैंने आपसे। चलिए तो दोस्तों आप विचार करिए कि आप क्या कलेक्ट करते हैं, तब तक हम सुमड़ा मैम के इन गीतों का आनंद उठाएं, एंड देन विल कम बैक।

बहुत खूब बहुत खूब। सुमना मैम, आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा अपने बारे में हमें और बताइए। कुछ ऐसी क्वालिटी, कोई ऐसे गुण हो आपके अंदर जो सिर्फ आपको लगता हो कि आपको पता है, वो आज आप सब लोगों को बताना चाहें तो जरूर बता सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं तो आपका काम आसान हो जाएगा। मैं आई एम नॉट अ कुक, ठीक है, आई एम नॉट अ सिंगर, मैं सिंगर भी नहीं हूं, मैं कुक भी नहीं हूं, माई वाइफ इज अमेजिंग कुक, लेकिन एक डिश मैं बनाता हूं जो मेरा बेटा भी और मेरी वाइफ भी मेरे को महीने में कभी एक बार घेर लेते हैं कि आज आप वो बना के खिलाओगे। ओके,

0: anything. They say that, yeah, you are a good cook. It was excellent. So probably मेरे इसमें वो गुण होगा, but I don't know.
1: अरे नहीं, मैं मजा नहीं आया.
0: प्यार से मैं बनाती हूँ, तो probably they like it. I don't know what it is.
1: लेकिन नहीं, ठीक है, आप अच्छी कुक हैं, that's beautiful, but आप क्या चीज अच्छा बनाती हैं वो बताइए.
0: पुलाव तो बहुत अच्छा बनाती हूँ शायद.
1: ओके,
0: बिकॉज एवरीवन सेज दैट पुलाव बना लो.
1: ऑलराइट, ओके.
0: वो कैसे बनाती हूँ वो मुझे भी नहीं पता. आई जस्ट मेक वन ग्रीन मसाला एंड आई पुट अ लॉट ऑफ खड़ा मसाला एंड देन पुट दैट ग्रीन मसाला एंड आई कुक इट. बट वो कितना डालते हैं, कितना ये करते हैं वो ही नहीं पता. तुम कैसे बनाते हो, दे आस्क मी, बट देन आई वुडंट बी एबल टू टेल दैट.
1: डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट. वो आपकी उंगलियां हैं, वो उंगलियों का टेस्ट है. डोंट वरी अबाउट इट, आप उसके बारे में चिंता मत करो. तो चलो दोस्तों, आप भी याद करो क्या अच्छा बनाते हो. इस बात से सुवर्णा, मैं मुझे एक जोक याद आ रहा है. एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति की वाइफ मायके चली गई. अब वो बंदे ने अपने एक फ्रेंड को फोन किया, अपने एक दोस्त को फोन किया, अरे भाई सुनना यार, चाय बनानी है यार, तो क्या नाम है, कुकर में कितनी सीटी मारूं? तो उसके दोस्त ने कहा, तेरा दिमाग खराब है क्या, चाय कभी कुकर में चढ़ाई बनाई जाती है पागल, कढ़ाई चढ़ाओ. तो उसके दोस्त ने तो और उल्टी सलाह दी उसको कि कुकर छोड़ कढ़ाई चढ़ाओ. सो दोस्तों, ऐसा मत करिएगा, आप सोच के बताइए, सोचिए, हमें बताइए प्लीज मैसेज में, जब ये प्रोग्राम आप सुन रहे होंगे, कि आप क्या अच्छा बनाते हैं. ये मत बोलिएगा कि ठंडा पानी बहुत अच्छा बनाता हूं, ऐसा मत बोलिएगा. चलिए आगे बढ़ते हुए इन प्यारे से गीतों का आनंद उठाएं एंड देन वी विल कम बैक.

0: नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को
1: दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को शेयर करें।